FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज वीरवार है, शक संबत 1948 के श्रावण मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 6 अगस्त सन 2026। प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज का प्रसारण आरंभ होता है।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 6 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे। रिले के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणाली के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉ. वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रुपए की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार नमस्ते स्कीम के अंतर्गत ऐसे लोगों को टिकाऊ आजीविका के अवसर देना जारी रखे हुए है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का ढहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें भारत के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए की जा रही पहलों की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पर श्री जोशी ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता और सुलभता को बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत एट 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। ईरान ने कहा है कि ओमान के साथ हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर समझौते की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस सप्ताह समझौते की घोषणा का अंदेशा जताया है। संभावित समझौते से इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को फिर से खोलने में मदद मिल सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो सकता है। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयंबटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। कोयंबटूर में आज खेले जाने वाले सेमीफाइनल में ओडिशा का मुकाबला पंजाब से और झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, ओडिशा, महाराष्ट्र के भीतरी हिस्सों, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: चिंतन।

ज्ञान और भक्ति आध्यात्मिक जीवन के दो ऐसे आधार हैं जो मनुष्य को सत्य, शांति और ईश्वर के समीप ले जाते हैं। ज्ञान हमें सही और गलत का विवेक देता है, जबकि भक्ति हमारे हृदय को प्रेम, समर्पण और विनम्रता से भर देती है। जब ज्ञान और भक्ति का सुंदर संगम होता है, तब मनुष्य का जीवन सार्थक बन जाता है। जब ज्ञान हमारे कर्मों को दिशा देता है और भक्ति हमारे हृदय को पवित्र बनाती है, तभी जीवन में आनंद, संतोष और आत्मिक शांति का अनुभव होता है।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। आइए प्रभु का नाम स्मरण करते हुए इस संगीतमय यात्रा में आगे बढ़ते हैं, इस भक्तिमय रचना के साथ।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। जी श्रोताओ, जब मन प्रभु नाम में रम जाता है तब हर स्वर प्रार्थना बन जाता है और हर धुन आराधना।

जी श्रोताओं, जब स्वरों में श्रद्धा हो, शब्दों में प्रेम हो और हृदय में प्रभु का वास हो, तो ईश्वर की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है।

इसी भक्ति में रचना के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:40 हुए हैं, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान का भाग 170।

निषाद राज को अनेक प्रकार से समझा बुझाकर श्री रामचंद्र ने अपने घर लौट जाने को सहमत किया तथा स्वयं सीता और लक्ष्मण समेत वन की राह ली। राह में मिलने वाले वनवासियों को उन्हें तापस वेश में देखकर अत्यधिक चिंता होती है। श्री राम, सीता और लक्ष्मण के प्रति उनके हृदय में ऐसा अनुराग उमड़ पड़ता है जिसके वशीभूत वे उनके साथ साथ चल पड़ते हैं। वट वृक्ष की शीतल छांह देख कोई नरम घास और पत्ते बिछाकर वहां उनसे थोड़ी देर विश्राम कर लेने को कहता है, तो कोई कलश भर पानी लाकर प्रभु से आचमन कर लेने का आग्रह करता है। ऋषि कुमारों के वेश में श्री राम लक्ष्मण का अनुपम रूप देख गांव के स्त्री पुरुष इस प्रकार स्तब्ध रह जाते हैं जैसे दीपक का प्रकाश देख हिरणों का जोड़ा निस्तब्ध हो जाता है। गांव की स्त्रियां अपनी अल्प बुद्धि की विवशता बताकर सीता जी से दोनों कुमारों का परिचय जानना चाहती हैं।

FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। प्रातः के 6:50 हुए हैं। आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज तीनों सभाओं में प्रसारित वरीले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे जानकारी और गीत संगीत का कार्यक्रम सुबह सुहानी। सुबह 7:40 पर हिमाचली गीतों का कार्यक्रम रहेगा शुभ भ्याग। सुबह 8:30 पर कार्यक्रम सुनवाया जाएगा गाने सुहाने। 9:00 सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन सकेंगे। दस बजे कार्यक्रम गीतों का कारवां पेश किया जाएगा। 10:30 पर हिमाचली लोकगीतों का कार्यक्रम पहाड़ों के सुर प्रस्तुत किया जाएगा। 11:05 पर आप सुनेंगे पंजाबी गीतों का कार्यक्रम महक पंजाब दी। 11:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग आप सुनेंगे। 12:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। 12:30 पर सखियों के लिए कार्यक्रम मिंजरा प्रस्तुत किया जाएगा। 1:10 से आप सुनेंगे हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम। 5:10 पर आप सुनेंगे फिल्मी भजन। 5:30 पर युवाओं के लिए कार्यक्रम रहेगा युवा मंच। 5:55 पर ये समय रहेगा कार्यक्रम विवरण का। 6:06 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुरमई सांझ। 6:30 जी हाँ, ये समय रहेगा कार्यक्रम मौजा ग्राइंडिया का। 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। 8:00 सुनिएगा कार्यक्रम सबरस, जो विविध संगीत पर आधारित रहेगा। 8:30 पर देशभक्ति गीत सुनवाए जाएंगे। 9:15 पर कार्यक्रम सुनवाया जाएगा एक ही कलाकार। 9:30 पर कार्यक्रम रंगे गजल सुनवाया जाएगा। 10:00 आप सुनेंगे हिमाचली लोकगीत। 10:30 पर कार्यक्रम सुनिएगा चित्रपट संगीत। 9:20 से प्रादेशिक समाचारों का समय रहेगा प्रातः 9:20। दिन में 11:00, 3:00, 6:00 और 7:45 पर। आकाशवाणी दिल्ली से सुबह 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, दिन में 1:00 हिंदी में समाचार, 5:00 हिंदी में समाचार, 7:00 और 11:00 हिंदी में समाचार ही रिले किए जाएंगे। 1:05 पर, 5:05 पर, 7:05 पर, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। 8:45 पर समाचार संध्या और 9:00 News@9 आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किए जाएंगे। ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित हो रिले होने वाले कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सेरेंडोस के साथ कल नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को सामग्री सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकते हैं। श्री मोदी ने श्री टेड के साथ मीडिया और मनोरंजन केंद्र पर चर्चा की। नेटफ्लिक्स के अनुसार दोनों पक्षों के बीच भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा की गई। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की भी घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है।
1: India is proud to be one of Africa's
2: भारत अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापार और निवेश साझेदार होने पर गर्व महसूस करता है। पिछले साल हमारा द्विपक्षीय व्यापार 93 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। ये निवेश दूर संचार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, बुनियादी ढांचे, कृषि और डिजिटल सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के संबंध 10 सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में युगांडा की संसद में की थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिल्क्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिल्क्यारा सुरंग का ढहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखी और फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए सभी संभव संसाधनों जुटाना सुनिश्चित किया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें भारत के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए की जा रही पहलों की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पर श्री जोशी ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता और सुलभता को बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। इस अवसर पर आयोग के उपाध्यक्ष डॉ अशोक कुमार लाहड़ी ने कहा कि ध्यान चिकित्सा उपचार पर नहीं बल्कि देखभाल पर केंद्रित है और देखभाल उपचार से कहीं अधिक व्यापक है। रेलवे ने आदर्श रियायत करार में सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देश भर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। इस मंजूरी के साथ ही अलग अलग मार्गों के लिए अलग अलग पंजीकरण कराने की व्यवस्था बंद हो गई है। नई व्यवस्था के तहत ऑपरेटरों को 20 वर्ष तक के लिए अनुमति दी जा सकेगी। मंत्रालय के अनुसार कंटेनरों की रेल ढुलाई से सड़क यातायात की भीड़ कम होगी, ईंधन की खपत में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। महाराष्ट्र में डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है। डॉक्टर सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसके तहत होम्योपैथ को महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद ने पंजीकरण कराने और 6 महीने का प्रमाण पत्र लेने के बाद एलोपैथिक दवाएं लिखने की अनुमति दी गई है। महाराष्ट्र में डॉक्टर एसोसिएशन ने आगाह किया है कि अगर सरकार बातचीत शुरू नहीं करती तो 24 घंटे बाद आपातकालीन सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। हालांकि बेहद गंभीर मामलों में इलाज जारी रहेगा। ईरान ने कहा है कि होर्मुज़ जलडमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ एक समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसी सप्ताह ये समझौता हो सकता है। इससे होर्मुज़ जलडमरू मध्य फिर से खुल जाएगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा और युद्ध को समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि समझौता इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाता है या नहीं। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन

0: हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। प्रातः के 7:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी।
1: सुबह सुहानी।

सुबह सुहानी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। जी श्रोताओं, सुबह की पहली किरण नई उम्मीद, नए सपनों का संदेश लेकर आती है। पक्षियों की मधुर चहचहाहट, ठंडी हवाओं का स्पर्श और उगते सूरज की सुनहरी रोशनी मन को नई ऊर्जा से भर देती है। तो इसी स्फूर्ति, इसी ऊर्जा के साथ करते हैं कार्यक्रम का आगाज आज के सुविचार के साथ। श्रोताओं, हार केवल वही मानता है जो प्रयास करना छोड़ देता है। कोशिश करने वाला एक दिन अवश्य सफल होता है। तो कोशिश करते रहिए, क्योंकि हमारी हर छोटी कोशिश बड़े सपनों की नींव रखती है और हर असंभव कार्य को संभव बना देती है।

जी श्रोताओं, जीवन चलने का नाम और हंसकर बढ़ने का नाम। चलिए अब हम भी बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आपको बता दें कि आज 6 अगस्त, जी हाँ, और आज के ही दिन घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में अब जानकारी साझा करते हैं आप सभी श्रोताओं के साथ। श्रोताओं, आज ही के दिन सन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नाम का पहला परमाणु बम गिराया था, इसलिए आज के दिन को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1825 में दक्षिणी अमेरिका देश बेलीविया ने स्पेन से आज ही के दिन स्वतंत्रता प्राप्त की। 1862 में भारत के प्रमुख मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सन 1906 में भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी चितरंजन दास और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने मिलकर वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया था आज ही के दिन। ६५ में अमेरिका में नागरिक अधिकारों की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने वोटिंग राइट्स एक्ट पर हस्ताक्षर किए आज ही के दिन। बात करें 1996 की तो आज ही के दिन नासा के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह से आए एक उल्कापिंड में प्राचीन सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म होने की संभावना जताई थी। और 1962 में कैरेबियाई देश जमैका ने

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और श्रोताओं, अब जान लेते हैं उन महान हस्तियों के नाम जिनके जन्म हुए आज ही के दिन। महान वैज्ञानिक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेंसिलिन की खोज की, आज ही के दिन जन्मे। महान स्वतंत्रता सेनानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इनका जन्म 6 अगस्त 1848 को हुआ। इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। एम नाइट श्यामलन 6 अगस्त 1970 को जन्मे। विश्व प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक हैं ये। ये सिक्स सेंस और साइंस जैसे मशहूर सस्पेंस फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। मशहूर फुटबॉलर रॉबिन वैन पर्सी, इनका जन्म नीदरलैंड में आज ही के दिन हुआ। मशहूर शास्त्रीय तबला वादिका अदिति कल्याणपुर, इनका जन्म 6 अगस्त 1980 को आज ही के दिन हुआ।

जी, और अब जान लेते हैं उन हस्तियों के नाम जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज ही के दिन भारत की पूर्व विदेश मंत्री, दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री और बेहद लोकप्रिय और प्रखर नेता सुषमा स्वराज का आज ही के दिन निधन हुआ। भारत के महान कवि, दार्शनिक, नोबेल पुरस्कार विजेता और महान साहित्यकार गुरु रविंद्रनाथ टैगोर आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कह गए। राष्ट्रगुरु कहे जाने वाले महान भारतीय सेनानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी का निधन आज ही के दिन हुआ। वे भारत के इतिहास में उन चुनिंदा महान व्यक्तित्वों में शामिल हैं जिनका जन्म और निधन एक ही तारीख यानी 6 अगस्त को हुआ था।

0: Bring home the bold Baleno today.
1: Hurry, offer still stocks last. TNC apply.
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी और अब रुख करते हैं आज के ताजा तरीन समाचारों की ओर। जी श्रोताओ, राज्यसभा ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाकर 38 करने का महत्वपूर्ण विधेयक पारित कर दिया है। लोकसभा ने देश के बैंकिंग वित्तीय ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए बैंकिंग एविडेंस लॉ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसे डिजिटल लेन देन से जुड़े साक्ष्यों को कानूनी रूप देने से अधिक मजबूती मिलेगी। जलवायु परिवर्तन और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे युद्धों के कारण संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में वैश्विक खाद्य कीमतों में भारी बढ़ोतरी की चेतावनी जारी की। बात करें खेल समाचारों की तो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में टेस्ट सीरीज खेलने के लिए श्रीलंका पहुंच चुकी है भारतीय टीम।

और इसके साथ ही मौसम की बात कर लें तो बरसात का मौसम पूरे यौवन पर है और अधिकांश हिस्सों में रह रहे के बारिश हो रही है। हिमाचल पर की बात करें तो आज अधिकतर स्थानों पर हल्के मध्यम दर्जे की बारिश और बादल छाए रहने का अनुमान है। कुछ क्षेत्रों में तेज़ हवाएं और हल्की बौछारें पड़ने की चेतावनी भी मौसम विभाग ने जारी की है, इसलिए आप सभी यात्रा करते समय सावधानी बरतें।

0: इसी गीत के साथ आज का सुबह सुहानी कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुहानी।
1: सुबह सुहानी।
0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103।

0: you play for the rush or do you play it smooth? Lead every play with the new Brezza. Now available with the exciting turbo booster jet, refined K15C engine and underbody SCNG. With 5-star safety rating, superior performance and features like ventilated seats. New 10.1-inch infotainment screen with premium audio. Every road is your playground. The new Brezza, now available at an introductory starting price of 7.39 lakh rupees. Book a test drive today at your nearest Maruti Suzuki Arena showroom.
1: MCA, MBA, MA History, Economics, Political Science 100% ऑनलाइन कोर्सेज के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे परीक्षा।
2: हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र जो कि UGC DAB से मान्यता प्राप्त है, घर बैठे शिक्षा प्राप्त करने का सुनहरा मौका।
1: नए सत्र के लिए प्रवेश आरंभ, आवेदन की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2026।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9418335203, 9218700111।

शेर सिंह जरियाल के गाए इसी गीत के साथ थे। आज का ये कार्यक्रम शोप्याग अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 7:55 हुए हैं, आइए सुनते हैं देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 8 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर बाद आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर।

0: 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है जिसका उपयोग देश को वैश्विक स्तर पर सामग्री सृजन के केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सरेंडोस के साथ कल नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को सामग्री सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं।
2: हम एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत के संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते।
1: नेटफ्लिक्स के अनुसार दोनों पक्षों के बीच भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा हुई। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की भी घोषणा की है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव डॉ टीवी सोमनाथन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने कल इसकी मंजूरी दी। डॉ सोमनाथन का कार्यकाल इस महीने की 30 तारीख को समाप्त हो रहा था। समिति ने गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल भी एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है।
3: इंडिया इज प्राउड टू बी वन ऑफ अफ्रीकास।
4: भारत अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापार और निवेश साझेदार होने पर गर्व महसूस करता है। पिछले साल हमारा द्विपक्षीय व्यापार 93 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। ये निवेश दूर संचार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, बुनियादी ढांचे, कृषि और डिजिटल सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के संबंध 10 सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में युगांडा की संसद में की थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का रहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। संसद में आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। राज्यसभा में विनियोजन विधेयक पर चर्चा निर्धारित है। इस विधेयक में मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है। ये विनियोजन उस वर्ष सेवाओं के निर्धारित से अधिक राशि के भुगतान के लिए किया जा रहा है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई थी जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉ. वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रुपये की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए

0: जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। राज्य में विधानसभा का वर्षाकालीन सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। पिछले चार दिनों से भूख हड़ताल कर रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा नेता देवेंद्रनाथ महतो के साथ 5 प्रदर्शनकारी शामिल हो गए हैं। इनमें 2 महिलाएं भी हैं। ब्लड शुगर और रक्तचाप कम हो जाने के कारण श्री महतो के स्वास्थ्य को लेकर चिंता पैदा हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए संकल्पित है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर राजधानी रांची में 25 जुलाई से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। प्रदर्शनकारी विद्यार्थी 14वें झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटेजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत एट 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। रेलवे ने आदर्श रियायत करार में सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देश भर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। इस मंजूरी के साथ ही अलग अलग मार्गों के लिए अलग अलग पंजीकरण कराने की व्यवस्था बंद हो गई है। नई व्यवस्था के तहत ऑपरेटरों को 20 वर्ष तक के लिए अनुमति दी जा सकेगी। मंत्रालय के अनुसार कंटेनरों की रेल ढुलाई से सड़क यातायात की भीड़ कम होगी, ईंधन की खपत में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में गंभीर सुरक्षा स्थिति के बावजूद हुर्मुज जलडमरू मध्य से होकर 60 व्यापारिक जहाज सुरक्षित निकाल आए हैं। संसद में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह भी बताया कि खाड़ी क्षेत्र से 3972 भारतीय नाविकों को स्वदेश भेजा गया है और 2400 घंटे काम कर रही आपदा प्रबंधन प्रणाली के पास हजारों फोन और ईमेल प्राप्त हो रहे हैं। हुर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ऊर्जा आपूर्ति के लिए यह दुनिया का एक प्रमुख जलमार्ग है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। विक्रम मिश्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके, प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या, विदेश मंत्री विजेता हेरात और विदेश सचिव अरुणी रणराजा से मुलाकात की। ईरान ने कहा है कि हुर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ एक समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसी सप्ताह ये समझौता हो सकता है। एक रिपोर्ट।
1: इस संभावित समझौते से हुर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खुल जाएगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा और युद्ध समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि समझौता इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाता है या नहीं। ईरान ने कहा कि वह हुर्मुज जलडमरू मध्य पर एक हद तक नियंत्रण चाहता है और इस मार्ग से आवाजाही वैसी नहीं रहेगी जैसी युद्ध से पहले थी। ईरान हुर्मुज जलडमरू मध्य के उत्तरी हिस्से को जबकि ओमान दक्षिणी हिस्से को नियंत्रण करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ईरान युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हुर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण चाहता है। ईरान ने आगाह किया कि अमेरिका के किसी और हमले की स्थिति में वह खाड़ी देशों को निशाना बनाएगा। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: जापान के हिरोशिमा में आज परमाणु बम गिराए जाने की बरसी है। सन 1945 में हुई इस घटना में 140,000 लोग मारे गए थे। आज सुबह घटनास्थल पर पीस मेमोरियल पार्क में मौन रखा गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नेताओं ने परमाणु हथियारों को खत्म किए जाने की अपील की। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए जाने के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने SDRF, NDRF, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों को घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव अभियान सुनिश्चित करने को कहा है। उत्तराखंड आपदा विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया गया है।
2: उत्तराखंड के लिए अभी जो अलर्ट आया है वो देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड के शेष जनपदों के लिए येलो अलर्ट है। 3 जनपद जहाँ पे ऑरेंज अलर्ट है वहाँ पर ज्यादा बरसात की संभावना है और बाकी जनपदों में नॉर्मल बरसात होगी। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी जनपदों को निर्देश जारी किए गए हैं विभिन्न माध्यमों से और SMS के माध्यम से हम लोगों को

0: करते हैं।
1: राज्य में मौसम के बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारे संवाददाता।
2: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभावित आपदा की किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य की सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों और नदी नालों की निगरानी रखने पर भी जोर दिया है। उन्होंने आपातकालीन परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रखने और प्रत्येक घटने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में जनहानि को रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: मौसम विभाग ने आज झारखंड, गांगेय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार आज दोपहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि अपनी तीक्ष्ण वाक्पटुता, संवेदनशील नेतृत्व और राष्ट्रीय हित के प्रति अटूट समर्पण के बल पर सुषमा स्वराज ने भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया। खेलों में जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में उड़ीसा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कोयम्बटूर में आज सेमीफाइनल में उड़ीसा का मुकाबला पंजाब से जबकि झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: संसद में जारी गतिरोध समाप्त करने के प्रयास के तहत संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, संसद गतिरोध, राहुल गांधी से मिले रिजिजू, परिसीमन और FCRA पर राहत तलाशने की कोशिश। जकरबर्ग ने भारत से मांगी माफी, फेसबुक से पीएम मोदी की पोस्ट हटाने पर आखिर झुके मेटा प्रमुख, अमर उजाला सहित कई अखबारों की सुर्खी है। पत्र लिखता है, मेटा ने माना, खास तरह का कंटेंट बढ़ाने के लिए मिली थी मोटी रकम। दैनिक जागरण ने अपने आर्थिक पन्ने पर आरबीआई गवर्नर के शब्द प्रकाशित किए हैं, लगातार चौथी बार रेपो रेट 5.25% पर स्थिर। गवर्नर ने कहा, पश्चिम एशिया में संघर्ष जारी रहा तो ईंधन और खाने पीने की चीजें हो सकती हैं महंगी। नीट होगी फुल प्रूफ, जेईई तर्ज पर परीक्षा की तैयारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दिया हलफनामा। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर युवाओं के नशे में गिरफ्त होने का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, ताकि नशे की गिरफ्त में ना आए युवा। पत्र लिखता है, भारत में करीब 75% युवा 21 साल की उम्र तक किसी न किसी नशे का शिकार हो चुके हैं। परिवार और शिक्षक संजीदगी से संवाद करें तो उन्हें नशे से बचाया जा सकता है। ईरान और ओमान होर्मुज खोलने पर हुए सहमत, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, ईरान को होर्मुज पर मिल सकता है कंट्रोल। दैनिक भास्कर ने कोटा में नोनेरा एब्रा डैम के बंद होने के बाद काली सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से चारों तरफ छाई हरियाली का चित्र प्रकाशित किया है, जिसमें पानी के ठहराव से नदी किनारे बसी कराइयों और हरी भरी वादियों का सौंदर्य चरम पर है।
1: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज इंडियाज एक्स्ट्रॉर्डिनरी पूल ऑफ क्रिएटिव टैलेंट कैन बी लीवरेज टू स्ट्रेंथन नेशंस पोजीशन एज ग्लोबल हब फॉर कंटेंट क्रिएशन। Government extends 10 years of Cabinet Secretary T.V. Somnathan and Union Home Secretary Govind Mohan by 1 year. Students intensify their protest over irregular

कार्यक्रम की अगली पेशकश अलका याग्निक, कुमार सानू और सपना अवस्थी के मिले जुले स्वर में समीर के बोलों को संगीत में ढाला है नदीम श्रवण ने, और ये फिल्म है दिल का रिश्ता।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने सुहाने। मस्ती फिल्म का गीत आपके लिए रिसर्च कर।

0: BCA, MBA, MA History, Economics, Political Science 100% ऑनलाइन कोर्सेज के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे परीक्षा।
1: हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र जो कि UGC DAB से मान्यता प्राप्त है, घर बैठे शिक्षा प्राप्त करने का सुनहरा मौका।
0: नए सत्र के लिए प्रवेश आरंभ, आवेदन की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2026।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 94183-35203, 92187-00111।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है,
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
8: Experience Grand Vitara with strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.67 lakh rupees.
7: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 31st August.
8: Own the style icon at an EMI of just 899 rupees per month.
7: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbag as standard.
8: Hurry, limited stock available.
7: Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
0: Nexa.

गीत आपकी रेडियो सेट्स पर। इस गीत को गाया है रूप कुमार राठौड़ ने, संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने और बोल हैं जयदीप

मैंने दिल तुझको दिया। इस फिल्म के इसी गीत के साथ थे गाने सुहाने। ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9 बज चुके हैं और ये समय है सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि का।

सजीव फोनिंग कार्यक्रम गीतांजलि सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। जी हाँ श्रोताओं, वीरवार का ये सुहाना सा कार्यक्रम लेकर हाजिर हो चुके हैं हम, और कार्यक्रम में गीतों और बातों का ये सिलसिला चलेगा ठीक 10 बजे तक। और ये सफर हम अकेले नहीं तय करेंगे, बल्कि श्रोताओं की बातें, उनके अनुभव, उनके विचारों का रहेगा साथ इस कार्यक्रम में। तो 0892224391 ये है हमारा फोन नंबर। और बता दें श्रोताओं को आज की बातचीत का विषय, आज का विषय बहुत ही मजेदार और रोचक है श्रोताओं। कहते हैं जो खुद पर हंसना सीख गया, समझो जिंदगी जीना सीख गया। तो कुछ समझे, जी हाँ, आज का विषय है कि क्या आप कभी हंसी के पात्र बने हैं? कोई ऐसा वाक्या, कोई ऐसा किस्सा जो आप सुनाना चाहते हैं हमें, तो जुड़ जाइए हमारे साथ 0892224391 और अपनी प्यारी सी कोई बात, हंसी भरी बात साझा कीजिए हमारे साथ।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार
0: जी। नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं
1: जी? मैं राजकुमार बोल रहा हूँ, कांगड़ा गुरकड़ी गांव से।
0: जी, तो विषय आपने सुन लिया?
1: हाँ जी।
0: आज का विषय आपने सुन लिया?
1: मैं तो फोन लगाने में बिजी था।
0: चलिए,
1: कभी फोन नहीं लगता, आज पहली बार लगा।
0: बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आपका फोन लग गया। और आज, जी हाँ, आज की बातचीत का विषय है कि क्या आप कभी हंसी के पात्र बने हैं?
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: तो साझा कीजिए हमारे साथ।
1: हाँ जी
0: जी, कभी कोई ऐसा किस्सा आपके साथ हुआ हो, कोई बात आपने ऐसी कह दी हो जो नहीं कहनी चाहिए थी और बाद में आपको बहुत शर्म महसूस हुई हो?
1: हाँ जी, ये जी। एक बार मेरे पास, मेरी फूलों की नर्सरी है
0: जी, जी।
1: यहाँ कांगड़ा में
0: जी।
1: तो फूल लेने के लिए आए
0: जी
1: एक लड़का और लड़की।
0: हम्म,
1: हाँ जी। तो उसने, लड़के ने बोला कि बुके देना है मैंने। हाँ जी, तो उसने बोला कि एक फूल का बुके बना दो, मेरी गर्लफ्रेंड मतलब खुश हो जाए। तो मैं बोला यार एक का दे दे, चाहे दस का दे दे, दे। दस फूलों का बुके दे दे तू, जिसने खुश होना होगा तो एक का ही होना है, एक में हो जाएंगे।
0: जी जी जी।
1: तो लड़की साथ में थी और मैंने उसको देखा नहीं था
0: जी जी,
1: और वो इतनी हंसी और हम भी इतने हंसे भी, अनजाने में मैंने फिर मैं शर्म भी महसूस की
0: जी जी,
1: कि यार
0: जी।
1: मैंने गलत बोल दिया उसको
0: जी।
1: हाँ हाँ जी, तो ये हुआ था।
0: चलिए, बहुत बढ़िया। और अभी भी उस किस्से को जब आप याद करते हैं तो एक मुस्कुराहट तो चेहरे पर आती होगी।
1: हाँ जी, हाँ जी, जब भी कोई बुके लेने के लिए आता है हमारे पास तो एकदम से याद आ जाती है
0: आपको वो बात याद आती है।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: चलिए, बहुत बढ़िया। और यूं ही जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के संग। कार्यक्रम में कॉल की इसके लिए शुक्रिया।
1: धन्यवाद जी
0: जी।

0: जी श्रोताओ, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 01892-224391। और कोई एक बात ऐसी हुई हो जब आप हंसी के पात्र बने हो, साझा कीजिए हमारे साथ। हेलो
1: जी, नमस्ते
0: जी। नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: प्रेम से सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागपुर, जिला उज्जैन से।
0: जी, क्या कहना चाहेंगे आज के विषय के बारे में?
1: जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, मैं एक बार हंसी का पात्र बना था जी। उसके लिए मैं आपको बताऊँ, जैसे कि मैं पहले 2008 में वीडियोग्राफी का काम कर रहा था जी। तो ऐसे मैं शादी में वीडियो करने के लिए गया, और वहाँ पर जैसे

0: कि आपको बताऊं कि वीडियो चल रहा था, शादी का शूट कर रहा था मैं, उस समय पे पता नहीं पीछे से कैसे मेरा शर्ट फट गया
1: जी।
0: और मुझे पता भी नहीं चला कि पीछे से मेरा शर्ट फटा हुआ है। और वहाँ पे जितने भी सारे शादी वाले मतलब लोग थे ना, वो देख के पीछे से मेरे पे हंस रहे थे। बस मुझे पता नहीं चला कि ये लोग क्यों हंस रहे हैं, बार बार मेरी तरफ देख रहे हैं, हंस रहे हैं, देख रहे हैं, हंस रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा मेरे साथ में, मैं कहीं शूट गलत कर रहा हूँ या फिर कुछ कैमरा गलत पकड़ रखा है या फिर ऐसे, मतलब कंफ्यूजन हो रहा था मुझे।
1: बात क्या हो गई, क्यों हंस रहे हैं?
0: हाँ, बात क्या हो रही है, सब मेरी तरफ देख के हंस रहे हैं। बट फिर मैंने कहा कि मेरे साथी में एक और था मतलब काम करने वाला, तो मैंने पूछा कि भैया देखिए आप ये मेरी तरफ देखकर क्यों हंस रहे हैं, तो उन्होंने भी बताया बिना वो भी देखकर हंसने लगे। फिर मैंने कहा कि आप बताइए तो सही क्या हुआ, क्योंकि पीछे मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि मेरा शर्ट फटा हुआ है।
1: जी जी।
0: फिर उन्होंने कहा कि आपका पीछे से किसी ने शर्ट फाड़ दिया है।
1: जी।
0: फिर मैंने देखा कि ऐसा हो गया वैसा, फिर जल्दी से मैंने कैमरा उनको पकड़ाया और नया शर्ट खरीद के फिर नया शर्ट पहना मैंने।
1: जी, और उस समय आपको बहुत शर्म महसूस हुई होगी, लेकिन आज जब वो किस्सा आपको याद आता होगा।
0: जी, फिर मैंने क्या सोचा कि चलो ये तो हंसी मजाक हुआ मेरे साथ में, बट फिर मुझे ऐसा लगा कि कहीं पर भी जाए तो अच्छे कपड़े पहन के जाए या फिर ऐसे मतलब ध्यान रखा जाए कि अपने कपड़े ना फटे, जूते ना टूटे और जो भी काम करे वो मतलब ध्यान से किया जाए।
1: जी बिल्कुल, और ध्यान रखते होंगे आप हमेशा।
0: जी बिल्कुल। फिर मैं आपको बताऊँ, 2008 से 2015 तक मैंने वीडियोग्राफी का काम किया। उसके बाद में फिर मैंने कुछ समय के लिए काम छोड़ने के बाद में फिर मैं 2019 से भजन गायकी में गया और अभी मैं एक भजन गायक हूँ।
1: चलिए बहुत बढ़िया, और यूं ही जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के संग और साथ ही साथ संगीत के साथ भी यूं ही जुड़े रहिए। कार्यक्रम में कॉल किया इसके लिए शुक्रिया।
0: जी, थैंक यू सो मच।
1: जी।

0: हेलो हेलो जी
1: हेलो, गुड
0: जी, कौन बात कर रही हैं?
1: मॉर्निंग. मैं
0: गुड
1: सोनू
0: मॉर्निंग जी.
1: पठानिया बोल रही हूँ मैम.
0: जी, क्या करती हैं?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ. मैं रहन से बोल रही हूँ.
0: जी, तो
1: मैम बड़ा ट्राई किया, आज जाके कहीं नंबर लगाए.
0: चलिए, तो बताइए हमें कि कौन सा पल था जब आपको लगा, अरे ये क्या हो गया? कोई ऐसी बात आपके मुंह से निकली हो?
1: हाँ मैम, वैसे बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक बात मेरे बचपन की है. शायद मैं फोर्थ फिफ्थ में पढ़ती थी उस टाइम की,
0: जी.
1: और यही बरसात के दिन चल रहे थे. और एक आम का पेड़ था, तो मैं और मेरी फ्रेंड लोग, हम सब इकट्ठे होके आ रहे थे. तो मेरे को बोलती है मेरी फ्रेंड कि मैंने केरी खानी है, खट्टी वाली. और मैं बड़ी फुर्तीली थी, फटाफट से आम के पेड़ पे चढ़ गई
0: जी.
1: और आम तोड़े. और रिटर्न में जब वापस आने लगी, तो रोड का काम चला हुआ था ना, वहां पे कुछ लेबर लोग थी. तो जाते बार मेरे को उन्होंने बोला, बोलते बेटा आप गिर जाओगे यहाँ पे. मैं कहाँ मानने वाली. और जब रिटर्न में वापस आम तोड़ के आ रही थी, जहाँ पे उन लोगों ने बोला, ठीक वहीं पे मैं ना एकदम से उल्टी हो गई, मेरी टांगे ऊपर और फिर नीचे की तरफ.
0: जी.
1: तो कभी कभी अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले मेरी फ्रेंड से, जो क्लासमेट थी, उसी से बात हुई थी.
0: जी.
1: तो मैं मतलब हंस रही थी कि मैं ना मतलब अपने बचपन में बहुत ज्यादा शरारती थी. तो
0: और देखिए ना, बचपन है और बचपन में शरारतें नहीं की, फिर तो क्या ही बचपन,
1: हाँ मैम, वो तो है,
0: है ना? और
1: लेकिन
0: आज
1: कभी कभी
0: भी
1: यादें आती है ना मैम, पिछली बातें, तो बड़ी हंसी आती है और सोचते हैं
0: बिल्कुल
1: कि क्या था और क्या. वो जमाना मैम बहुत ही अच्छा था,
0: जी
1: लेकिन चलो वक्त के साथ बदलना पड़ता है,
0: जी
1: ऐसे ही
0: जी
1: है.
0: और कहा है ना कि, है ना, परिवर्तन समय का नियम है और हर परिवर्तन के अनुसार खुद को ढालना है हमें. जी, चलिए, कार्यक्रम में
1: और
0: कॉल
1: आपसे
0: की.
1: बात करके मैम बहुत अच्छा लगा. थैंक यू वेरी मच.
0: जी, हमें भी बहुत अच्छा लगा
1: और
0: और
1: मेरे दिल की
0: इतना
1: धड़कन बड़ी
0: अच्छा
1: तेज से
0: किस्सा
1: दौड़
0: आपने
1: रही है.
0: सुनाया, वो भी बहुत बढ़िया लगा.
1: मैं बोल रही हूँ मेरे दिल की धड़कन एकदम से इतनी फास्ट फास्ट चल रही है ना, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा है, सो एक्साइटेड.
0: चलिए, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया हमें. और इसी तरह जुड़ी रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के संग और
1: ओके,
0: प्रोग्राम
1: थैंक
0: सुनते
1: यू.
0: रहिए.
1: थैंक यू
0: जी
1: मैम, थैंक यू
0: ओके
1: सो
0: जी
1: मच.
0: ओके जी. श्रोताओं, तो आप भी हमें कॉल करें और बताएं आज के विषय के बारे में.

0: सच कहे श्रोताओं तो जिंदगी हम सभी को कभी ना कभी कुछ ऐसा दिखा ही देती है जब हमें लगता है कि अरे हमारे मुंह से ये क्या निकल गया, ये हमारे साथ क्या हो गया। हेलो।
1: हेलो, नमस्ते
0: जी। नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: योगेश जांगड़े, बेमेतरा, छत्तीसगढ़ से।
0: जी, तो बताएं आज के विषय के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: अब ये तो ऐसे है, बचपन में कुछ कुछ किस्से हैं, जहाँ पढ़ने लिखने जाया करते थे 3-4 किलोमीटर दूर कीचड़ में
0: जी।
1: तो वहाँ पर कई बार तो गिर जाया भी करते थे। तो ये कुछ ऐसी ऐसी यादें हैं जो थोड़ा बचपने की झलक और जो थोड़ा बहुत हंसने का मित्रों को एक मौका भी मिल जाता था।
0: तो हंसने का मौका हमें भी दीजिए, श्रोताओं को भी दीजिए और साझा कीजिए कोई बात ऐसी।
1: वही तो बता रहा हूँ, स्कूल जाने के समय ना हमारी तो स्थिति ऐसी थी कि चप्पल भी नहीं चलता था, पूरा कीचड़ में जाना होता था और कई बार फिसल कर गिर जाना भी होता था, कपड़े वगैरह खराब हो जाते थे
0: जी।
1: तो वो बचपने का दौर था और मित्र लोग काफी हंसते भी थे और सभी के साथ होता था ऐसा, कहीं किसी एक व्यक्तिगत

0: सजीव फोन इन कार्यक्रम जारी रहेगा 9:20 के बाद भी। ले चलते हैं आपको आकाशवाणी शिमला प्रादेशिक समाचारों के लिए।
1: तो ये रहेंगे।

0: हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR व DTH पर भी उपलब्ध है।
1: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
2: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
1: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
2: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
1: जानकारी लें, अधिकार जाने।
2: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश हित राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर सत्ता का दुरुपयोग कर भाजपा नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करने का लगाया आरोप। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बदले की भावना से कार्रवाई करने के भाजपा के आरोपों को किया खारिज। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत कांगड़ा जिले में बीते वित्त वर्ष के दौरान 7 करोड़ से अधिक की राशि की गई खर्च। और प्रदेश में भारी वर्षा से 112 सड़क मार्ग अवरुद्ध। मौसम विभाग का आज 3 जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश हित राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इससे कभी भी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। एक बयान में उन्होंने कहा कि BBMB के वित्तीय बकाया, बिजली के हिस्से और शानन जल विद्युत परियोजना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान पर प्रयास निरंतर जारी है। उन्होंने कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड से प्रदेश के लगभग 4,200 करोड़ रुपये के वित्तीय बकाया और 13,066 मिलियन यूनिट बिजली के राज्य के अधिकार की मजबूती से पैरवी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शानन जल विद्युत परियोजना की लीज अवधि समाप्त होने के बावजूद पंजाब सरकार ने इसे हिमाचल को अभी तक वापस नहीं किया है। राज्य सरकार इस मुद्दे को भी विभिन्न स्तरों पर प्रभावी ढंग से उठा रही है और यह मामला सर्वोच्च न्यायालय

0: बांटने में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दीर्घकालिक हितों की रक्षा और संसाधनों पर हिमाचल के वैध अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला के मशोबरा में खंड विकास अधिकारी के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। उनका वेस्ट कलेक्शन ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाने का भी कार्यक्रम है। इसके अलावा मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर सत्ता का दुरुपयोग कर भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करने का आरोप लगाया है। शिमला में राज्य सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारियों पर दबाव बनाकर भाजपा नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी खतरे में है। जयराम ठाकुर ने कहा कि 21 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में पार्टी इन सभी मुद्दों को सदन में उठाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपनी कार्यशैली नहीं बदली तो भाजपा का जन आंदोलन और अधिक व्यापक होगा। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में जनता सरकार की जन विरोधी नीतियों का जवाब देगी।
1: जिस तरह से जोई पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों के दम का गरीब जनता के ऊपर आपने औने 4 साल के इस कार्यकाल में कुछ कर दिया यहाँ की जनता को उन जुर्म को सहने के लिए, उसका जवाब तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश की जनता आपको दे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता ने संदेश दे दिया है कि वर्तमान कांग्रेस की सरकार को इनकार फेंकना।
0: राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भाजपा के बदले की भावना से कार्रवाई के आरोपों को खारिज किया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कानून के मुताबिक भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई कर रही है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि यदि भाजपा को कोई कार्रवाई न्यायसंगत नहीं लगती है तो पार्टी को अदालत का रुख करना चाहिए।
2: यहाँ बदले की भावना की तो कोई बात ही नहीं है। जिन लोगों के खिलाफ अगर कोई FIR हो रहा है, अगर उनको लगता है ये FIR जो गलत है, FIR को क्वेश करने के लिए हाईकोर्ट में जो है प्रावधान है, वहाँ पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये बदले की भावना से हो रही है या वाकई ये भ्रष्टाचार में लिप्त। आप अगर अपने लोगों को भ्रष्टाचार से कानूनी कार्रवाई के तहत को रोकने के लिए इस किस्म के हथकंडे अपनाकर लोगों का ध्यान बटोरना चाहते हैं, उसमें आपको जो है सफलता नहीं मिलने वाला है।
0: राजस्व मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपनी गारंटियों को पूरा करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हिमाचल के हितों को अनदेखा करने का आरोप भी लगाया। राज्य सरकार ने प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद कुल्लू जिला उपायुक्त अनुराग चंद्र शर्मा व पुलिस अधीक्षक मदन लाल का तबादला कर दिया है। सरकार ने IPS अधिकारी अभिषेक एस को कुल्लू का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया है, जबकि ADM सुरजीत सिंह को उपायुक्त का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत कांगड़ा जिले में बीते वित्त वर्ष के दौरान 7,33,00,000 रुपए की राशि खर्च की गई। हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता ने बताया कि जिले के 746 बच्चों को इस योजना का लाभ मिल रहा है।
3: कांगड़ा जिले में अनाथ, निराश्रित, परित्यक और उपेक्षित बच्चों को सुरक्षित भविष्य देने की दिशा में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना प्रभावी साबित हो रही है। बीते वित्त वर्ष के दौरान जिले के 746 बच्चों के कल्याण के लिए 7.33 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिससे उन्हें शिक्षा, आवास, विवाह, स्वरोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसी विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं बल्कि इन बच्चों को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन के लिए तैयार करना है। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि बच्चों को सामाजिक सुरक्षा, गृह निर्माण, उच्च शिक्षा, विवाह सहायता, प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग और स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई। निश्चित तौर से ये पहल केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है बल्कि कांगड़ा के सैकड़ों जरूरतमंद बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा, सम्मानजनक जीवन और आत्मनिर्भर भविष्य की मजबूत नींव तैयार कर रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: चंबा जिला प्रशासन ने मणिमहेश यात्रा के दौरान यात्रा मार्ग पर संचालित विभिन्न दुकानों के दुकानदारों से पर्यावरण संरक्षण के लिए सहयोग का आह्वान किया है। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने यात्रा मार्ग के निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को क्षेत्र के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र व मणिमहेश घाटी की प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण के दृष्टिगत प्रतिबंधित सामग्री की बिक्री न करने के निर्देश

0: निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग में छोटी क्षमता युक्त पानी की बोतलों व नमकीन आदि के छोटे पैकेट की बिक्री प्रतिबंधित है। हमीरपुर जिला में सुजानपुर नगर परिषद के 9 वार्डों में बरसात के दौरान भी लोगों को पेयजल संकट से राहत मिलेगी। शहरवासियों की सुविधा के लिए जल शक्ति विभाग ने ऐतिहासिक प्राकृतिक जल स्रोत नौण से पेयजल आपूर्ति शुरू कर दी है। अधिक जानकारी के साथ हमारे हमीरपुर जिला संवाददाता।
1: नगर परिषद सुजानपुर में जल शक्ति विभाग ने ऐतिहासिक प्रकृति जल स्रोत नौण से पेयजल आपूर्ति शुरू कर दी है। पहले शहर में ब्यास नदी से जल आपूर्ति होती थी, लेकिन बरसात में गाद बढ़ने से पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो जाती थी। इस समस्या के समाधान के लिए विभाग ने ऐतिहासिक नौण से उठाऊ पेयजल योजना शुरू की है, जिससे शहर में नियमित जल आपूर्ति होने लगी है। बताया जाता है कि वर्षों पहले महाराजा संसार चंद के समय इस प्रकृति जल स्रोत का निर्माण करवाया गया था। करीब 1.5 वर्ष पहले नगर परिषद सुजानपुर ने नौण के कायाकल्प पर लगभग 15 लाख रुपए खर्च किए थे। अब जल शक्ति विभाग ने इस जल स्रोत का उपयोग पेयजल आपूर्ति के लिए शुरू कर दिया है। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
0: प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं। हालांकि राज्य के कई स्थानों पर बीती रात वर्षा का समाचार है। प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के कारण हुए भूस्खलन के चलते 112 सड़क मार्ग अवरुद्ध हैं। इसके अलावा 189 विद्युत ट्रांसफार्मर और 61 पेयजल आपूर्ति योजनाएं भी प्रभावित हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज बिलासपुर, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 9 अगस्त तक प्रदेश के अन्य स्थानों पर मानसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी रहने की संभावना जताई है। शिमला जिला में आपदा से प्रभावित पेयजल योजनाओं के मुरम्मत व जीर्णोद्धार कार्यों के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से प्रति योजना 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। जिला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने जल जीवन मिशन के तहत आयोजित एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उन्हीं पेयजल योजनाओं के लिए बजट स्वीकृत किया जाएगा जिनकी क्षति संबंधी रिपोर्ट राजस्व विभाग में दर्ज होगी। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, जॉब ट्रेनी डॉक्टरों के वेतन में 78% की बढ़ोतरी। दैनिक भास्कर की एक खबर है, विधानसभा सत्र तक उच्च शिक्षा विभाग में छुट्टियों पर रोक, छुट्टी के दिन भी ड्यूटी संभव। शिपकीला मार्ग से 6 साल बाद बहाल हुआ चीन के साथ व्यापार ठप, दैनिक सवेरा टाइम्स की खबर है। मौसम पर दिव्य हिमाचल की सुर्खी है, भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, मणिमहेश जा रहे श्रद्धालु की मौत, प्रदेश भर में 11 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश हित राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर सत्ता का दुरुपयोग कर भाजपा नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करने का लगाया आरोप। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बदले की भावना से कार्रवाई करने के भाजपा के आरोपों को किया खारिज। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत कांगड़ा जिले में बीते वित्त वर्ष के दौरान 7 करोड़ से अधिक की राशि की गई खर्च। और प्रदेश में भारी वर्षा से 112 सड़क मार्ग अवरुद्ध, मौसम विभाग का आज 3 जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
2: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
3: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
4: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।
5: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 9:30 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि का शेष भाग।

जी श्रोताओ, सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला के संग। 01892243 91 ये है हमारे स्टूडियोज का नंबर। बातचीत का विषय

0: वहीं कि क्या कभी आप किसी की हंसी का पात्र बने हैं? हेलो जी, नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी, कौन बात कर रही हैं?
1: मैं शिवेन बोल रहा हूँ लंच में।
0: जी शिवेन, क्या करते हैं?
1: मैं स्कूल में पढ़ता हूँ अभी तो।
0: जी शिवेन, तो बताओ, क्या कभी कुछ हुआ है आपके साथ ऐसा कि आपको लगा कि अरे ये क्या हो गया?
1: मेरे साथ तो मतलब जब भी कुछ बोलूँ तो सारे हंसने लग पड़ते हैं, तो मेरे को कुछ पछतावा नहीं होता।
0: क्यों?
1: हंसने मतलब ऐसे जोक वगैरह मारता हूँ तो वही सारे हंसने लग पड़ते तब।
0: चलिए तो कोई किस्सा हमें भी बताएं।
1: एक बार क्या हुआ, तब मैं सेवेंथ में था, लंच टाइम था और सारे बच्चे आपस में ऐसे लड़ रहे थे। उस टाइम सारे जब लड़ रहे थे, मैं चुपचाप पीछे बैठा हुआ था, मेरे आसपास भी बच्चे चुपचाप बैठे हुए थे। मैंने बोला बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस, उस टाइम सारे बच्चे हंसने लग पड़े, जो लड़ रहे थे वो भी, साइड में बैठे थे वो भी।
0: जी
1: एक लड़की थी पागल जैसी, उसने मैम को जाके बता दिया, पर मैम भी हंसने लग पड़ी थी, तो वो थोड़ा पछतावा हुआ था मेरे को
0: कि मैम को किसने बता दिया।
1: मैम को, मेरे को पता था किसने बताया था, पर वो पछतावा हुआ था कि मैम को क्यों बताया।
0: बिल्कुल। और अब जब उस बात को आप याद करते हैं तो हंसी आती है?
1: हंसी तो आती है।
0: और अब आपने अपनी वही आदत बरकरार रखी है या उसको बदल लिया?
1: उसको तो मैंने बदल लिया, बोलना होता तो किसी दोस्तों के साथ ही बोलता हूँ मतलब।
0: जी जी, चलिए एक सीख आपने ली उससे। और शिवेन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और कार्यक्रम में यूं ही जुड़े रहिए और साथ ही साथ सुनते रहिए आकाशवाणी धर्मशाला।

0: जी श्रोता, तो जिंदगी हम सभी को कभी ना कभी जोकर बनने का मौका दे ही देती है, चाहे हम ना भी चाहें। कभी कोई ऐसी बात हमारे मुंह से निकल जाती है या कभी कोई ऐसा कुछ हो जाता है हमारे साथ कि उस समय हमें बहुत एम्बेरेसिंग लगता है, लेकिन बाद में जब वो बात हमें याद आती है तो हमारी हंसी रोके नहीं रुकती। तो आप भी क्यों रुके हैं श्रोताओं, जल्दी से नंबर मिलाइए 01892224391 और अपने साथ साथ सभी श्रोताओं के चेहरे पर भी लाइए वो हंसी उस बात के माध्यम से जिसने बनाया था आपको हंसी का पात्र। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: पहले तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इतनी सुहानी सुबह में अपने बहुत बढ़िया मधुर जो सुबह है उसमें मधुर वाणी आप किसकी सुन रहा हूँ मैं?
0: जी आज मैं हूँ आपके साथ या सभी श्रोताओं के साथ सीमा।
1: सीमा जी नमस्कार, आप तो मेरी बहुत पुरानी फेवरेट अनाउंसर हैं।
0: जी धन्यवाद।
1: तो आपने आवाज मेरी पहचान ली होगी।
0: जी हमने तो पहचान ही ली, और हमेशा आप कॉल करते हैं, हमारे श्रोताओं को बता दीजिए अपना नाम।
1: चलो बाद में बताता हूँ। देखिए आपने बहुत बढ़िया टॉपिक रखा है। जीवन में कभी भी देखिए हंसी का पात्र कभी भी नहीं बनना चाहिए। हम हंसी का पात्र कब बनते हैं? जब हम कुछ नादानी करते हैं या हम कुछ अपने काम ऐसा कर देते हैं जिसका कि दूसरे को अच्छा ना लगे।
0: जी, और उसी नादानी की आज बात हो रही है सर।
1: हाँ जी वही ना
0: जी,
1: कि हम ऐसी बात काम कर देते हैं जिससे हमको दूसरा हंसी का पात्र हम खुद बन जाते हैं।
0: जी जी।
1: तो जीवन में हमेशा ही ऐसे सावधान होकर चलना चाहिए कि हमेशा ठीक है हंसी देनी चाहिए दूसरों को, ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे हम कोई काम करें कि दूसरे हंसे और कुछ होए।
0: जी।
1: तो हमारा काम करने का पर्पस जो है वो दूसरों को हंसी दे, ये ना हो कि हम खुद हंसी के पात्र बन जाएं।
0: जी कोशिश तो हम सभी की यही होती है कि हम हंसी के पात्र ना बने, लेकिन कभी बाई चांस ऐसे हो जाता है कि हम कुछ और कहना चाहते हैं और निकल जाता है कुछ और मुंह से।
1: हाँ जी वही ना, हम कुछ ऐसी बात कर देते हैं, कोई कहीं कोई चार आदमी

0: बैठे हों, हम ऐसी बात कर देते हैं जिसको कोई वो उसका कोई मतलब नहीं होता, बिना बेमतलब की बात कर देते हैं, तो उसके पर हम हंसी के पात्र बन जाते हैं।
1: जी,
0: और हम कोई ऐसा कोई पहरावा पहन लेते हैं जिसका भी दूसरे को पसंद नहीं होता, तो
1: जी
0: हम तब भी हंसी के पात्र बन जाते हैं।
1: बन जाते हैं। कभी कोई घटना हमारे साथ ऐसी हो जाती है, हम है ना, कुछ भी हो जाता है। देखिए जिंदगी है, और जिंदगी में कब हमारा मजाक बन जाए नहीं पता चलता।
0: हाँ
1: जी
0: जी हाँ जी, ठीक है, ये तो बात सही है आपकी का, हमारे कोई जीवन का कोई पता नहीं होता कब हम हंसी के पात्र बन जाए,
1: जी
0: लेकिन फिर भी हमको बड़ी सावधानी से ऐसा बोल बोलना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा पहरावा पहनना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए, कोई कुछ भी कोई काम करना है तो पूरी सावधानी के साथ, जिससे हमको बाद में ये ना सहना पड़े कि मैं हंसी का पात्र बन गया हूँ।
1: जी चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाम नहीं बताया आपने।
0: चलो मैं बता देता हूँ, मैं बोल रहा हूँ जी पंजाब के जिला होशियारपुर तहसील मुकेरियां के गांव मेहतापुर से महेंद्र सिंह
1: महेंद्र सिंह
0: राणा।
1: राणा जी, धन्यवाद कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, और साथ ही साथ इतनी अच्छी बातें साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: ठीक है सीमा जी, नमस्कार।
1: जी धन्यवाद।

0: Step into the world of Nexa.
1: Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
0: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
1: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
0: And now it's yours at an effective price of just 6.75 lakh rupees.
1: Yes, rupees 6.75 lakh. Valid till 31st August.
0: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
4: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

0: जी श्रोताओ, हर समय हम खुद को परफेक्ट, पढ़ा लिखा और कूल दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी प्यारी सी जिंदगी पीछे से आती है और अनजाने में कुछ ऐसा हमसे करवा जाती है जिसे सोचकर हम भी कहते हैं, अरे ये क्या हो गया।
1: हेलो हेलो जी।
2: हेलो जी, नमस्कार, सुप्रभात
0: जी। नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं?
2: मैं रेशमी कुलेरिया बोल रही हूँ, यो टिकरी से।
0: जी रेशमी जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। बताएं आज के विषय के बारे में क्या कहना चाहेंगी?
2: बस मैंने यही सुना था आज का विषय कि खूबसूरत लम्हे जिंदगी के, जो कौन सा आपका स्पेशल मोमेंट था
0: जी। और साथ ही साथ इसी को मैं थोड़ा और जोड़ना चाहेंगी कि क्या आप कभी हंसी के पात्र बने हैं?
2: मैं हाँ।
0: साझा कीजिए
2: जी। हॉस्टल में पढ़ते थे तो कई शरारतें करनी, मतलब लड़कियों ने आपस में एक दूसरे को बुद्धू बना देना। अप्रैल फूल में इलायची में उन्होंने हरे हरे छोटे दाने कलर के भर दिए। जब हम लोगों ने इलायची खाई तो सारे के ऊँट नीले थे। जब हम लोग हॉल में आए, मैम ने रोल कॉल लेनी थी, मुदिता मैडम थी हमारी, तो सबके ऊँट नीले थे। तो बस छोटे छोटे कई लम्हे मैं भी खुद हंसी मजाक करती हूँ
0: जी। और मुझे लगता है इसी तरह से जिंदगी जीनी चाहिए हमें, और कभी हम बन भी जाएं हंसी के पात्र तो दिल पर नहीं लेना है, यही सोचना है कि इसी बहाने किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई।
2: बिल्कुल, अभी कपिल शो किस लिए देखते हैं
0: जी? जी,
2: और आप पॉजिटिवली लो ना मजाक को, कोई पर्सनल भी नहीं होना चाहिए कि जिससे आपको हर्ट हो, बट जो किसी ने मजाक किया कभी उसके साथ भी करो, वो बुरा भी नहीं लगता है। और बाकी ये जो आपका था कोई एक टॉपिक की स्पेशल मोमेंट आपका लाइफ का?
0: जी ये टॉपिक नहीं है, टॉपिक यही है।
2: अच्छा
0: जी जी,
2: अच्छा
0: जी,
2: तो
0: जी।
2: मैं किचन में थी, रेडियो बाहर था ना, इसलिए नहीं। हंसी के पात्र तो आप कभी भी कहीं बैठे उठे हो। अब एक बार क्या, मैं डीएवी स्कूल में थी तो हम लोग सारे वहाँ बैठे हुए, छुट्टी होने वाली थी तो आम लेकर आया था हमारे टीचर। हमारे प्रिंसिपल सर ने कहा मैंगो इज ए वेरी पर्सनल फ्रूट, बड़ा प्राइवेट फ्रूट होता है, एंड हम बड़े स्लीके से सारे खा रहे हैं, और वहाँ जो सर ने आम लिया उसमें एक छेद था। जैसे ही सर ने आम दबाया, पूरा आम की धार रस उनकी कॉलर पर, मुंह देखने लायक, नोबडी कैन, मतलब हंस भी नहीं सक रहे थे।
0: जी जी,
2: तो एक बार ऐसे ऐसे सिचुएशंस आती है लाइफ में, ये है कि ठीक है जिंदगी में हंसते खेल

0: से उतार चढ़ाव करके जीवन निकलता है।
1: चलिए बहुत बढ़िया और बहुत ही हम ये कह सकते हैं रोचक किस्से आपने साझा किए हमारे साथ कार्यक्रम में कॉल की, इसके लिए शुक्रिया और जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के संग। जी जी श्रोताओ, तो 01-892-224-391 ये है हमारे स्टूडियोज का फोन नंबर। हेलो
2: हेलो
1: हेलो जी नमस्कार।
2: हाँ जी नमस्कार मैडम
1: जी, कौन बात कर रहे हैं?
2: मैडम जी लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। मैडम
1: जी बताइए क्या कहना चाहेंगे आज के विषय पर?
2: विषय में तो मैडम ये कहना चाहूंगा कि हंसना जिंदगी में बहुत जरूरी है और हंसते मुस्कुराते ही अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। और कहना ऐसा मेडिकल साइंस का भी कहना ऐसा है कि अगर हंसते रहेंगे मुस्कुराते रहेंगे तो आप जीवन में सुखी रहेंगे और किसी भी तनाव से मुक्त रहेंगे। आप तनाव आपके जीवन में कभी भी नहीं आएगा अगर हंसते रहे मुस्कुराते रहे तो।
1: चलिए ये सब तो आपने बता दिया, लेकिन जो हंसने का जो कारण है, जो हमारी हंसी का भी कारण बनेगा, वो किस्सा तो साझा कीजिए हमारे साथ।
2: हाँ जी मैडम जी, ये तो ऐसे बहुत से किस्से हैं। जैसे बचपन में हम जब स्कूल जाते थे, आठवीं क्लास में पढ़ते थे
1: जी,
2: तो जैसे कि टेबल पर बैठते थे ना, तो हम हंसी का पात्र किसी को भी बना देते थे या हम बन जाते थे कभी कभी, क्योंकि पीछे जो आगे जो बच्चा बैठता था ना, उसके पीछे शर्ट पर हम एक कुछ कागज पर लिख कर उसको चस्पा कर देते थे पीठ पर
1: जी, जी,
2: ताकि वो उसको मालूम नहीं देता था कि मेरी पीठ पर कुछ लिखा है। जैसा कुछ भी लिख देते कि मैं गधा हूँ, मैं ये हूँ क्या, ऐसा कुछ चिपका के छोड़ देते थे। और फिर सब स्कूल के बच्चे उसको देखकर हंसते थे, वो उससे मालूम नहीं देता कि मेरी पीठ पर कुछ चिपका रखा है या कुछ लिख रखा है।
1: जी जी जी, तो ये तो बात हुई कि आपने किसी को हंसी का पात्र बनाया, आप खुद नहीं बने कभी हंसी के पात्र?
2: हाँ नहीं, बनते हैं कभी कभी हमारे, इसके जैसे शाही छिड़ देता था कोई पीछे मतलब शर्ट के ऊपर, और कभी कोई मतलब बच्चा जैसे साइकिल से जा रहे हैं तो उनको मतलब गिरा भी देते थे साइकिल से, मतलब दूसरी साइकिल साथ में अड़ा के। वो बचपन की कुछ बहुत सारी यादें हैं मैडम।
1: चलिए,
2: स्कूल में जब जाते थे, और मैं तो स्कूल करीब मेरा 3 किलोमीटर दूर था, तो मैं तो पैदल ही जाता था और पैदल ही आता था, तो उसके बीच में बहुत से ऐसे हंसी वाले कभी खड़े हो गए कहीं पे। जो पुराने दौर में मदारी वो जादू का खेल दिखाते थे तो वो भी खेलने के लिए खड़े हो जाते थे, देखने के लिए खड़े हो जाते थे।
1: चलिए बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी यादें साझा की आपने हमारे साथ कार्यक्रम में कॉल की, इसके लिए शुक्रिया
2: जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी श्रोताओ, तो बहुत कम समय रह गया है और आप भी 01-892-224-391 ये नंबर मिला लीजिए और साझा कीजिए अपनी बातें हमारे साथ। हेलो हेलो जी,
3: हेलो
1: जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
3: मैं अमर सिंह बोल रहा हूँ पंजाब से, कपूरथला से। हाँ जी
1: जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे विषय के बारे में?
3: तो मैं मैडम जी कहना चाहता हूँ, जितने भी प्रांत है ना, सबकी बोलियाँ जो है ना अलग अलग हैं
1: जी।
3: हाँ जी
1: जी,
3: जितने भी प्रांत है ना हमारे हिंदुस्तान के, सबकी बोलियाँ जो है ना अलग अलग है। आपकी हिमाचल की बोली अलग है, हमारी अलग है, पंजाब की। हाँ जी
1: जी,
3: एक बार ना मेरी हमारे घर में लड़का पैदा हुआ था
1: जी,
3: तो मेरी फैमिली की लड़की यहाँ पर अपनी मासी की सेवा के लिए आई थी
1: जी। जी,
3: हमारे पास ना अपनी भैंस को, मैं छुट्टी आया था तो मैंने पिताजी से कहा कि आप बैठे मैं करता हूँ काम। मैं बाहर से ना भैंस अपनी खोल के तो पानी पिलाने के लिए लाड़ में लाया घर में, तो मैं लड़की से बोला मैं बेटा डबड़ा पिलाई दे रहा है। अब लड़की दौड़ी, बहुत आंगन पे दौड़ी के डबड़ा किसको कहते
1: हैं जी जी जी,
3: तो दौड़ी तो फिर उसको समझ नहीं आया कि बाबला किसी को कहते हैं। फिर बोली तो मेरी मासी, हाँ जी, ए मासर क्या है तेल गला दे पोते, इन्होंने कहते हैं कि की पूछ रहे हो तेरे गलती मांग ले। मैं कहा मैं बाबला मांग लगे जी, इधर मासी बोली पोते कराटला फरा दे कराटला,

0: भी दे रहा होगा, मेरे घर वाले भी दे रहा है, बहुत ज्यादा सोच के दे रहे होंगे मैडम
1: जी। जी, और ये बोली और भाषा का परिवर्तन है, ये बोलियों का परिवर्तन है ना, जो थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमें देखने को मिलता है, कुछ क्षेत्र के बाद जो बोली में परिवर्तन आ जाता है, तो उसी का ही एक
0: दिन मैंने बोला किस्सा था। तो मेरे को डंडा पकड़ाना, जरा बोर्ड पीछे पड़ा है
1: जी,
0: काम है ना जो परेशान कर रहे हैं, तो वो दौड़ी फिर दौड़ी बोली बुआ किसे कहते हैं, दौड़ी इधर, फिर मासी से पूछा कि मासी मासड़ के ही गला दे
1: जी,
0: और बोली के कंगे मैंने पूछ ली की कंगे, मैं क्या डंडा इन्हें क्या फड़ा दे बुए पीछे, फिर उन्होंने कहा कि पिछे पिछे डंडा सोठा पे आया वो पत्थर फड़ा दे, उधर भी दोहरे हो गए, मैंने भी दो बार से आपा
1: जी जी चलिए चलिए, बहुत बढ़िया और अच्छा लगा आपका, आपके किस्से सुनकर, और यूं ही जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के संग कार्यक्रम में कॉल
0: की। जी जी, जितने भी प्रांत है ना हिंदुस्तान के बोलियां अलग अलग।
1: जी जी जी बिल्कुल, कार्यक्रम में कॉल की इसके लिए शुक्रिया।
0: हाँ जी।

0: आकाशवाणी रेडियो धर्मशाला जी।
1: जी
0: सत श्री अकाल बेटा जी। सत श्री अकाल जी।
1: जी नमस्कार, सत श्री अकाल, कौन बात कर रहे हैं?
0: ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਪਿੰਡ ਮੌੜ ਖੁਰਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਠਿੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਗਜੀਤ ਮੱਟੂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ
1: ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਆਪਕਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਅੱਜ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪਰ?
0: ਅੱਜ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਬਾਅਦ ਮੇ ਲਾਇਆ ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਕੀ ਇਤਨੀ ਚਲਤੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ
1: ਜੀ। ਅੱਜ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਵਿਸ਼ੇ ਕਿ ਕਿਆ ਆਪ ਕਭੀ ਕਿਸੀ ਕੀ ਹੰਸੀ ਕਾ ਪਾਤਰ ਬਨੇ ਹੈ?
0: अच्छा बेटा, अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। मैं रेडियो भाई बात चलाया
1: जी। जी कोई बात नहीं, तो कोई किस्सा आप साझा करना चाहें हमारे साथ?
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
1: जी, जल्दी से बताएं।
0: हाँ जी बेटा, जब हम पांचवी में पढ़ते थे वह
1: जी,
0: जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे
1: जी जी,
0: उदो जी मैडम सारे बच्चे से एक ग्रुप लगता होता था जी, उदो अस समझा बहुत करते थे, अभी गीत गाते होते भाई
1: जी।
0: हाँ जी, मैडम मास्टर पंजाबी सॉन्ग सुनाते भाई मान साहब दे
1: जी,
0: ते भाई वो बहुत खुश होंगे साड़िया गल सुन सुन के, गीत सुन के भाई बहुत खुश होंगे, अभी तो ही फिर रेडियो नाल जुड़े हैं भाई, साडा अज तक प्यार है रेडियो नाल
1: जी। आज आपको दोपहर 11 बजे पंजाबी गीत जरूर सुनने को मिलेंगे, और ये कार्यक्रम विषय से संबंधित था। चलिए आपने साझा किया, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके।
0: ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੇਂਦਰ ਵਰਮਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ
1: ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਮੈਂ ਜੁੜਨੇ ਕੇ ਲੀਏ।
0: 11 ਵਾਲਾ ਪੱਕਾ ਸੁਣਾਂਗੇ ਭਾਈ
1: ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, 11 ਵਜੇ ਆਪਕੋ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਸੁਣਵਾਏ ਜਾਏਂਗੇ 11:05 ਪਰ।
0: ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰ ਲਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਲਓ
1: ਜੀ। तो श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत सा ये सफर रहा, चलते चलते यही कहना चाहेंगे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और किसी की मुस्कुराहट का कारण बनते रहिए। बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग हमें दिया सुरेंद्र कपूर ने, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर जतेंद्र पाल सिंह। आप मुझे यानी सीमा को दीजिए अनुमति। नमस्कार श्रोताओं।

श्रोताओं ने अभी सुना लाइव फोन इन प्रोग्राम गीतांजलि 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला। 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर के कार्यक्रम गीतों का कारवां। दोस्तों, जिंदगी अगर एक लंबा सफर है तो फिल्मी गीत उसके सबसे खूबसूरत हम सफर हैं। कभी ये चेहरे पे मुस्कान लाते हैं, कभी पुरानी यादों का दरवाजा खोल देते हैं, तो कभी दिल की वो बातें कह जाते हैं जो शब्दों से कहना आसान नहीं। तो आज के 30 मिनट का सफर आप तय करेंगे मेरे साथ, यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त नीलम के साथ। आज हम आपके लिए इस प्रोग्राम में लेकर आए हैं बहुत प्यारे प्यारे से गीत। तो छोड़िए दिन भर की भागदौड़ की टेंशन और आवाज़ जरा बढ़ाइए, हमारे साथ निकल पड़िए गीतों के इस कारवां में।

सफर आप तय कर रहे हैं हमारे साथ यानी आकाशवाणी धर्मशाला के साथ। दोस्तों कुछ गीत एवरग्रीन रहते हैं और हर समय उन गीतों के साथ हम अपने मूड को अच्छा कर सकते हैं। ऐसा ही एक और गीत आपके लिए

जी श्रोताओ, जमाने को क्या बात बुरी लगती है क्या अच्छी, इस सब को छोड़िए, जिंदगी खुल के जीने का नाम है। और ये भी कहते हैं कि ये जिंदगी जो है वो दोबारा नहीं मिलेगी, तो एक बार ये जिंदगी

दोस्तों बस आज का गीतों का कारवां इतना ही। उम्मीद है आज का ये सफर आपको दिन भर मुस्कुराने की गुनगुनाने की वजह देगा। फिर मुलाकात होगी कुछ नए गीतों नई बातों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जिंदगी जब सुर में हो तो सफर और भी खूबसूरत हो जाता है। अब हमें इजाजत दीजिए और ऐसे ही बने रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ। कुछ ही देर में आप सुनेंगे पहाड़ी गीतों का कार्यक्रम पहाड़ों के सुर।

एफएम बैंड 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 10:30 हुए हैं, लीजिए प्रस्तुत है लोकसुर।

लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम हिमाचली लोकगीत। हिमाचल प्रदेश देवभूमि की लोक संस्कृति प्राचीन परंपराओं का एक अनूठा संगम है। ये एक रंग बिरंगे परिधान, स्थानीय बोली, मनमोहक संगीत और मेलों में उमड़ने वाली आस्था हिमाचली संस्कृति को बेहद जीवंत बनाती है। यहाँ के लोक नृत्य संगीत यहाँ के जनजीवन में रचे बसे नाटी राज्य भर में सबसे लोकप्रिय है और हिमाचल में सबके अपने आप में एक विशिष्ट पारंपरिक नृत्य है। त्योहारों और मेलों के दौरान नाटी से सबका मन मोह लिया जाता है। मेलों के नाटी के साथ पारंपरिक वाद्य यंत्र भी बजाए जाते हैं, ढोल नगाड़े भी खूब गूंजते हैं, तो सुनवाते हैं ये हिमाचली लोकगीत।

ये कार्यक्रम संपन्न करने की मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे हिमाचली लोकगीत पहाड़ों के सुर। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर बाद आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि बीबीएमबी के वित्तीय बकाया, बिजली के हिस्से और शानन जल विद्युत परियोजना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान पर प्रयास निरंतर जारी है। एक बयान में उन्होंने कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड से प्रदेश के लगभग 4,200 करोड़ रुपए के वित्तीय बकाया और 13,066 मिलियन यूनिट बिजली के राज्य के अधिकार की मजबूती से पैरवी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शानन जल विद्युत परियोजना की लीज अवधि समाप्त होने के बावजूद पंजाब सरकार ने इसे हिमाचल को अभी तक वापस नहीं सौंपा है। राज्य सरकार इस मुद्दे को भी विभिन्न स्तरों पर प्रभावी ढंग से उठा रही है और यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दीर्घकालिक हितों की रक्षा और संसाधनों पर हिमाचल के वैध अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला के मशोबरा में खंड विकास अधिकारी के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। उनका वेस्ट कलेक्शन ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाने का भी कार्यक्रम है। इसके अलावा मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर सत्ता का दुरुपयोग कर भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करने का आरोप लगाया है। शिमला में राज्य सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारियों पर दबाव बनाकर भाजपा नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपनी कार्यशैली नहीं बदली तो भाजपा का जन आंदोलन और अधिक व्यापक होगा। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में जनता सरकार की जन विरोधी नीतियों का जवाब देगी।
1: जिस तरह से जो ही पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों के जनता गरीब जनता के ऊपर आपने पौने 4 साल से इस कार्यकाल में कुछ कर दिया, यहाँ की जनता को उन जुर्म को सहने के लिए, उसका जवाब तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश की जनता आपको दे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता ने संदेश दे दिया है कि वर्तमान कांग्रेस की सरकार को इनकार फेंकना।
0: राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भाजपा के बदले की भावना से कार्रवाई के आरोपों को खारिज किया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कानून के मुताबिक भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई कर रही है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि यदि भाजपा को कोई कार्रवाई न्यायसंगत नहीं लगती है तो पार्टी को अदालत का रुख करना चाहिए।
2: यहाँ बदले की भावना की तो कोई बात ही नहीं है। जिन लोगों के खिलाफ अगर कोई FIR हो रहा है, अगर उनको लगता है ये FIR जो गलत है, FIR को क्वेश करने के लिए हाईकोर्ट में जो है प्रावधान है, वहाँ पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये बदले की भावना से हो रही है या वाकई ये भ्रष्टाचार में लिप्त। आप अगर अपने लोगों को भ्रष्टाचार से कानूनी कार्रवाई के तहत को रोकने के लिए इस किस्म के हथकंडे अपनाकर लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, उसमें आपको जो है सफलता नहीं मिलने वाला है।
0: राजस्व मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपनी गारंटियों को पूरा करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हिमाचल के हितों को अनदेखा करने का आरोप भी लगाया। चंबा जिला प्रशासन ने मणिमहेश यात्रा के दौरान यात्रा मार्ग पर संचालित विभिन्न दुकानों के दुकानदारों से पर्यावरण संरक्षण के लिए सहयोग का आह्वान किया है। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने यात्रा मार्ग के निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को क्षेत्र के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र व मणिमहेश घाटी की प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण के दृष्टिगत प्रतिबंधित सामग्री की बिक्री न करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग में छोटी क्षमता युक्त पानी की बोतलों व नमकीन आदि के छोटे पैकेट की बिक्री प्रतिबंधित है। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं, हालांकि राज्य के कई स्थानों पर बीती रात वर्षा का समाचार है। प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के कारण हुए भूस्खलन के चलते 112 सड़क मार्ग अवरुद्ध है। इसके अलावा 189 विद्युत ट्रांसफार्मर और 61 पेयजल आपूर्ति योजनाएं भी प्रभावित हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज बिलासपुर, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य सरकार ने प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद कुल्लू जिला उपायुक्त अनुराग चंद्र शर्मा व पुलिस अधीक्षक मदन लाल का तबादला कर दिया है। सरकार ने IPS अधिकारी अभिषेक एस को कुल्लू का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया है, जबकि ADM सुरजीत सिंह को उपायुक्त का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर बाद 3 बजे। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी के शिमला FM शिमला हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र से सुन रहे थे। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर यानी 774 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाश FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 11:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए पंजाबी गीतों का कार्यक्रम महक पंजाब दी।
4: नमस्कार दोस्तों, मैं जतिंदर लेके हाजिर प्रोग्राम महक पंजाब दी। एक प्यारी जी मुस्कान ते दिन अपने आप सोना हो जाता है। इसे सोने एहसास नाल पेश है प्रोग्राम का पहला गीत।

चंगा संगीत कदे पुराना नहीं हुंदा, ऐ हर वार नवे एहसासां नाल दिल दा दरवाजा खड़काउंदा है। आओ सुनदे हैं अगली पेशकश।

0: प्रोग्राम महक पंजाबी का सफर जारी रहेगा एक छोटे जे कमर्शियल ब्रेक तो बाद।
1: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
2: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price, starting from just 9.67 lakh rupees.
1: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 31st August.
2: Own the style icon at an EMI of just 899 rupees per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbag as standard.
2: Hurry, limited stock available.
1: Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
3: Nexa.
4: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूं HIV वायरस।

0: नियरेस्ट नेक्सा शोरूम पीएनसी अप्लाई।
1: कदे कदे एक नज़र ते एक मुस्कान ही काफ़ी हुंदी है किसी का दिल जितने लई। आओ पेश है अगला गीत।

कुछ गीत सुनन ली ने ते कुछ महसूस करन ली, आओ एक होर एहसास तो रूबरू कराने हैं।

0: प्रोग्राम दा आखिरी गीत सुनांगे एक छोटे जे विज्ञापन तो बाद।
1: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
4: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price, starting from just 9.67 lakh rupees.
3: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 31st August.
4: Own the style icon at an EMI of just 899 rupees per month.
3: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbag as standard.
4: Hurry, limited stock available.
3: Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
4: Nexa.
0: प्रोग्राम का आखिरी गीत लो पेश है।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोता मित्रों को मेरा यानी अजीत का नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से कुशल देव पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है, आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, शरीर ईश्वर की दी हुई सबसे अनमोल संपत्ति है। इसकी रक्षा धन से भी अधिक जरूरी है, क्योंकि बिगड़ी सेहत के आगे दौलत भी हार मान लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम चरौदा बार नवापारा अभारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर। अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। केंद्रपाड़ा ओडिशा से हमारे चिरपरिचित श्रोता देशदीप दास जी का संदेश हमें मिला है। और उसके साथ साथ संदेश भेजने वाले हैं कुटकुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। आगे चलते हैं। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे जी का। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी का। श्रोताओं, आप सबके संदेशों के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आज की चर्चा में। तो एक बहुत ही रोचक हमारी चर्चा होने वाली है, आइए करते हैं शुरुआत। श्रोताओं, एक प्रश्न कभी किसी ने मुझसे पूछा था कि बताइए अजीत जी, आखिरी बार आपने बिना काम के किस दोस्त से कब मुलाकात की? तो मैंने हंसते हुए उत्तर दिया था कि इतना कठिन सवाल ना पूछिए, बड़ी व्यस्त जिंदगी है, बिना काम के भला किसी से मिलने का समय कहाँ। जी हाँ श्रोताओं, यही तो समस्या है। लेकिन एक बात और है, लोग अक्सर कहते हैं हम तो हमेशा जुड़े

रहते हैं। जी हाँ, लोगों का कहना भी ठीक है कि वो हमेशा जुड़े रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अब लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, वास्तविक जिंदगी में शायद नहीं के बराबर। तो श्रोताओं, आइए चलते हैं एक घर पर और देखते हैं एक दृश्य। दृश्य कुछ इस प्रकार से है, आप कल्पना करें। पिताजी मोबाइल पर अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी शॉपिंग ऐप देख रही हैं, बेटा गेम खेल रहा है, बेटी रील बना रही है, और बेचारे बुजुर्ग दादाजी सबको देख रहे हैं कि कोई कम से कम उनसे 2 मिनट बात तो कर ले। श्रोताओं, ये काल्पनिक दृश्य था, लेकिन क्या आपने खास बात पर गौर किया कि माता पिता, बेटा बेटी और दादाजी सब एक साथ एक ही घर में हैं, लेकिन उनके बीच में संवाद नहीं हो रहा है। अब लोग कहते हैं कि भाई समय ही नहीं मिलता। तो श्रोताओं, एक सवाल मैं अपने आप से पूछना चाहूंगा और आपसे भी कि 3 घंटे सोशल मीडिया के लिए हमें समय कैसे मिल जाता है? अब क्रिकेट का मैच तो पूरा पूरा देख ही लेते हैं, लेकिन आपस में 10 मिनट भी बात करने का हमारे पास समय नहीं है। और शायद यही कारण है कि आज समाज में तनाव भी है और बहुत सारी समस्याएं भी खड़ी हो गई हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है श्रोताओं कि क्या किया जा सकता है? तो चलिए श्रोताओं, आज से ही एक प्रयोग करते हैं। आप पूछेंगे भला वो क्या? तो श्रोताओं, वो प्रयोग कुछ इस प्रकार से होगा कि चलिए आज ही समय निकालकर मोबाइल को आधे घंटे के लिए बंद कर देते हैं या साइलेंट कर देते हैं। आप पूछेंगे फिर क्या करें? तो मैं कहूँगा कि तो शुरुआत करते हैं अपने ही घर से, अपने माता पिता, दादा दादी या बच्चों के साथ बैठकर थोड़ा समय निकालते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कम से कम आधे घंटे से शुरुआत तो हो ही सकती है। फिर फोन को ऑन करते हैं। आप कहेंगे श्रोताओं, अभी आपने कहा फोन ऑफ करो और अब कहते हैं कि ऑन करते हैं, ये भला कैसी बात है? यही तो बात है श्रोताओं, फोन ऑन करके किसी ऐसे मित्र या रिश्तेदार या प्रियजन को फोन मिलाते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं। ध्यान रहे, इस समय आपको उनसे बात करनी है जिनसे लंबे समय से बात ही नहीं हुई। आप अपने घर के बुजुर्गों से भी बात कर सकते हैं जिनके शायद कई बार आपको या मुझे समय नहीं मिलता। खासतौर से श्रोताओं, मैं अपने विद्यार्थी श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि अपने बड़ों से बातचीत का समय जरूर निकालिए, उनके अनुभवों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। विश्वास करें श्रोताओं, जब आप फोन करेंगे तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी ना, और आपको जो खुशी मिलेगी, उसकी तुलना किसी और बात से हो ही नहीं सकती। तो आइए 5 आसान उपाय जानते हैं कि कैसे हम मोबाइल का सदुपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, रोज कम से कम 20 मिनट परिवार के साथ। दूसरी बात, भोजन के समय मोबाइल को दूर रखें। अक्सर होता यह है कि खाना भी खा रहे होते हैं और साथ में मोबाइल भी चल रहा होता है। नहीं, ऐसा ना करें, मोबाइल को खाने के समय बिल्कुल दूर रखें। तीसरी बात यह हो सकती है कि सप्ताह में एक दिन किसी रिश्तेदार या मित्र से मिलें या उससे बातचीत करें। और चौथी बात है, महीने में एक बार पूरे परिवार के साथ छोटी सी सैर या भोजन करने का कार्यक्रम बनाइए। याद रखिए, रिश्ते अपने आप नहीं चलते, उन्हें समय देना पड़ता है। जैसे हम रोज मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं ना, उसी तरह। जी, उसी प्रकार रिश्तों की बैटरी को भी प्यार, समय और अपनेपन से चार्ज करना पड़ता है। तो एक काम करें, आज ही अपने किसी को समय दीजिए। डिजिटल दुनिया में रहते हुए भी मानवीय रिश्तों को जिंदा रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ। तो श्रोताओं, हमें आशा है कि आपको हमारी बातचीत जरूर पसंद आई होगी। अब आपके लिए कुछ करने को, आज के व्यस्त जीवन में हम एक दूसरे को समय कैसे दे सकते हैं, इस विषय पर 3 से 4 पंक्तियों में एक लघु लेख या छोटी सी कविता लिखें। विषय एक बार फिर से सुन लें, आज के व्यस्त जीवन में हम एक दूसरे को समय कैसे दे सकते हैं, इस विषय पर 3 से 4 पंक्तियों में एक लघु लेख या छोटी कविता लिखें। भेज दीजिए अपना लघु लेख या कविता हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और जी, आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं। श्रोताओं, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब में जाइए, टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपको वहां सर्च के लिए विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पुस्तकों को डाउनलोड कीजिए। एक और जरूरी सूचना आपको दे दें श्रोताओं, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां भी अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं। जी, और इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। श्रोताओं, अब समय है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों का, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम, असम का प्रकृति पर्व बिहू। कक्षा 6 की

0: हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में असम के उल्लास पर्व बिहू के बारे में रोचक जानकारी दी गई है और इसे मनाए जाने के तरीकों और इसकी प्राचीन पृष्ठभूमि के बारे भी बताया गया है।
1: May I come in, Mr. Henry?
2: Yes, sure. अंदर आइए, आपका स्वागत है।
1: आपने बुलाया था सर?
2: जी, मैंने आपको बुलाया था। I have a good news for you. आपने असम के डांस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए लंदन की ब्रिटिश अकादमी को जो ग्रांट की रिक्वेस्ट भेजी थी वह मंजूर हो गई है। ये रहे पेपर्स।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।
2: ऑल द बेस्ट, असम जाने की तैयारी कीजिए।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
3: एंजेला का परिवार दिल्ली से था, लेकिन अब बहुत समय पहले से वो सभी लंदन में ही बस गए थे। एंजेला डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्मात्री थीं और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाकर वहाँ की संस्कृतियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाना उनका काम था।
1: सबसे ज्यादा खुशी उनकी बेटी कोमल को हुई, क्योंकि वो भी अपनी माँ के साथ भारत जा रही थी। कोमल इंग्लैंड में ही पैदा हुई थी। वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी धारा प्रवाह बोल लेती है। और आखिर आ ही गया वो दिन असम जाने का। लंदन से दिल्ली होते हुए वे गुवाहाटी पहुंचे। शाम को डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए निर्धारित कैमरा टीम भी आ चुकी थी। एंजेला ने उन्हें आलेख पढ़कर सुनाया और शूटिंग से संबंधित आवश्यक निर्देश भी दिए।
3: दूसरे दिन वो गुवाहाटी शहर के आसपास कुछ ग्रामीण इलाकों में भी घूमने गए। बाजार हाट फुल्लम गामोसा और भिन्न भिन्न प्रकार के पकवानों से पटे हुए थे।
1: फुल्लम गामोसा एक प्रकार का हाथ का बुना हुआ सूती गमछा है, जिसकी किनारी लाल रंग की होती है। असमिया लोग इसे पारंपरिक रूप से सम्मान और आदर के प्रतीक के रूप में बड़ों को भेंट करते हैं।
3: आज कोमल बहुत उत्साहित है। बिहू का त्योहार जो है, ब्रिटिश दूतावास के सौजन्य से एंजेला को आज असम की जानी मानी सांस्कृतिक आयोजन समिति की ओर से विशेष निमंत्रण भेजा गया है। आज के विशेष बिहू कार्यक्रम के दौरान वो विशेष अतिथि भी होंगी और डॉक्यूमेंट्री की निर्मात्री भी। उत्सव चल रहा था।
4: नमस्कार, मैं हूं मृगेन बरुआ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और खास स्वागत है हमारी खास अतिथि एंजेला जी और उनकी बेटी कोमल का। तो सबसे पहले हम पेश कर रहे हैं बिहू पर्व का एक खास नाटक।
5: आज महाराज ने कुछ खास आदिवासी समूहों को बुलाया है।
6: सुना है वो बहुत अच्छा नृत्य करते हैं।
5: भाई जो भी हो, हमारे महाराज हैं बड़े कला प्रेमी।
7: बिल्कुल सही कहा आपने।
6: चलो देखते हैं क्या क्या होता है।
7: जी जी, चलो चलो देखते हैं।
6: चलो चलो चलो चलो, आओ, आओ। चलो चलो जल्दी चलो।
8: अहोम के महाराज की जय हो।
9: जय हो, जय हो।
8: जैसा कि महाराज ने इच्छा व्यक्त की थी, आज हमारे बीच दिमासा कछारी आदिवासियों का समूह पधारा है अपने पारंपरिक कृषि नृत्य बिशु के साथ।
10: नृत्य प्रस्तुत किया जाए।

0: अद्भुत, अति सुंदर। हम इस नृत्य प्रस्तुति के साक्षी होकर धन्य हुए। महामंत्री
1: जी, आज्ञा महाराज।
0: मेरी आज्ञा से प्रजा में ये संदेश भेज दिया जाए कि आज के बाद से फसलों की कटनी के बाद प्रकृति माता को आभार प्रकट करने के लिए समस्त अहोम राज्य में विशु नृत्य विधिवत किया जाएगा।
2: महाराज की
3: जय हो।
2: महाराज की
3: जय हो।

0: साथियों, कैसा लगा आपको ये नाटक? अब दीजिए अपने साथी मृगेन को आज्ञा, लेकिन जाने से पहले एक दूसरे से मिलना जुलना मत भूलिएगा। आपके लिए हमने खास तौर से रखा है बिहू मिलन कार्यक्रम।
1: बिहू मिलन समारोह चल रहा था और साथ ही साथ एंजेला की टीम शूटिंग में भी लगी हुई थी। अब बारी थी रेडियो साक्षात्कार की। आइए सुनते हैं एंजेला, कोमल और मृगेन का ये वार्तालाप।
2: मृगेन जी, आज का बिहू उत्सव बहुत ही सुंदर था। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। नाटक में आपने अहोम राज्य के बारे में बताया, इस पर थोड़ी जानकारी और दीजिए ना।
0: जी एंजेला जी, अहोम राज्य का काल 1200 सामान्य संवत से 1700 सामान्य संवत तक रहा।
2: अच्छा।
0: माना जाता है कि यही अहोम नाम आगे चलकर असोम कहलाया और कालांतर में असम हो गया। प्राचीन शास्त्रों में असम का उल्लेख प्राग ज्योतिषपुर नाम से किया गया है।
2: मृगेन जी, इस त्योहार का नाम बिहू क्यों पड़ा?
0: बहुत अच्छा सवाल। देखिए, शुरू में इस आदिवासी नृत्य को बिशु नृत्य कहते थे। बाद में यही बिशु नाम बिहू के नाम से जाना जाने लगा।
2: सर, मैंने सुना है कि बिहू साल में 3 बार मनाते हैं।
0: सही सुना है कोमल बिटिया। बिहू खेती से संबंधित त्योहार है।
2: ओह।
0: ये असमिया नए साल में वसंत ऋतु के आगमन से शुरू होता है और साल में 3 बार मनाया जाता है। इन्हें सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वो धान रोपते हैं और फिर जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। यानी ये त्योहार फसल लगने से लेकर वसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है।
2: अरे वाह। सर, मैंने सुना है कि इन तीनों अवसरों पर त्योहार के अलग अलग नाम हैं।
0: बिल्कुल ठीक कोमल। ये हैं रोंगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू या बैसाख बिहू भी कहते हैं।
2: ओह।
0: ये वसंत की शुरुआत और नव वर्ष का जश्न है, जिसमें नृत्य और संगीत शामिल होते हैं। दूसरा बिहू है कोंगाली बिहू। ये एक अधिक गंभीर अवसर है, जहां भरपूर फसल के लिए खेतों में दिया जलाकर प्रार्थना की जाती है।
2: अच्छा।
0: तीसरा बिहू भोगाली बिहू कहलाता है, जिसमें खान पान और उत्सव होते हैं।
2: मृगेन जी, आपने तो कोमल के सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से दिया। अब मेरा भी एक सवाल है।
1: जी।
2: मैं जानना चाहती हूँ कि बिहू शब्द कहाँ से आया, इसका क्या अर्थ है?
0: एंजेला जी, बिहू शब्द की उत्पत्ति विशु से हुई है।
2: जी।
0: जिसका अर्थ है फसल के मौसम में ईश्वर से आशीर्वाद और समृद्धि मांगना।
2: बहुत सुंदर। मृगेन जी, इतनी रोचक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आज एंजेला और कोमल लंदन वापस जा रहे हैं। कोमल को अपनी माँ के काम पर गर्व है। उसने ठान लिया है कि वो भी मीडिया कार्यक्रम निर्मात्री बनेगी। जहाज जब बादलों को चीरता हुआ आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचा, तो कोमल ने आंखें बंद कर ली और खो गई बिहू की सुखद स्मृति में। उसके मस्तिष्क में अब भी थी बिहू के सुंदर गीतों की गूंज।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम असम का प्रकृति पर्व बिहू।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लौट आई खुशी की खुशी। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की संरक्षा में ही हमारी सुरक्षा और खुशहाल जीवन का आधार है।
2: खुशी, खुशी जब पैदा हुई तो उसने अपने सारे घर में खुशियां बिखेर दी।

0: वो बचपन में इतना हंसती और इतना खुश रहती कि घर वालों ने उसका नाम ही खुशी रख दिया। उसको खेलने के लिए खिलौनों की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके खिलौने थे चिड़ियों की चहचहाट, नदियों की कलकल कर बहने की आवाज। उसका खिलौना मानो पूरी प्रकृति थी।
1: वाओ, कितना सुंदर बाग है, कितने सुंदर फूल हैं, और पेड़ भी तो देखो कितने अच्छे हैं। देखो कितनी सारी तितलियां उड़ रही हैं, मुझे तो इन्हें देख के बहुत मजा आ रहा है। अरे चिड़िया तो अपने बच्चों को दाना खिला रही।

0: जैसे जैसे खुशी बड़ी हो रही थी और समय निकल रहा था, खुशी की खुशी कहीं खो सी गई थी। आइए हम सब मिलकर खुशी की खुशी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आखिर कहां गई खुशी की खुशी?
1: खुशी के पापा, पता ही नहीं क्या हो गया है हमारी खुशी बिटिया को। पता नहीं किसकी नजर लग गई है, आजकल बहुत परेशान सी रहती है।
2: कमजोर भी हो गई है,
1: कुछ खाती पीती भी तो नहीं है, कमजोर तो लगेगी ही।

0: ठीक कह रही हो तुम। पहले तो खुशी हरदम चहचहाती रहती थी, लेकिन अब तो कल मैं बाजार से उसके लिए गुड़िया भी लाया था, मिठाई भी लाया था, लेकिन वो अब किसी भी सामान से खुश नहीं है।
1: समझ ही नहीं आता है क्या हो गया इसे।
0: सही कहती हो तुम, जरूर किसी की नजर लगी है मेरी खुशी को।

0: तुम्हारी बिटिया कहाँ है? अरे खुशी बिटिया कहाँ है भाई?
1: अरे भैया
2: नमस्ते नमस्ते मोहन।
0: अरे भाई हमारी खुशी बिटिया दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई?
2: खुशी बेटे
1: खुशी इधर आओ।
3: नमस्ते मामा जी।
0: अरे जीते रहो बेटे जीते रहो, शाबाश।
2: बेटा मामा जी आए हैं, देखो तुम्हारे लिए क्या क्या लाए हैं।
0: हाँ बेटा मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आया।
2: हाँ।
0: देखोगी एक मिनट गया मेरा डब्बा, ये रहा। देखो बेटा ये तुम्हारी मनपसंद रेलगाड़ी है, आई पसंद। और देखो ये भालू ये डमरू बजाता है, देखो देखो कैसे बजाता है। अरे ये देखो ये तो भूल ही गया था, इतनी प्यारी सी गुड़िया है, परी की तरह लगती है ना। नो शाबाश। अरे क्या हुआ तुम्हें, तुम तो बिल्कुल खुश नहीं हो। अरे जीजी आखिर हो क्या गया ऐसे, पहले तो ये ऐसी नहीं थी।
1: पता नहीं भैया, हम तो खुद ही बहुत परेशान हैं इसको लेकर, पता नहीं इसे क्या होता जा रहा है, हमेशा गुमसुम रहती है, परेशान रहती है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है।
0: जीजा जी पिछली बार जब मैं आया तो काफी खुश नजर आ रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया ऐसे इतनी कमजोर हो गई है।
2: मोहन जी हम खुद कुछ नहीं समझ पा रहे हैं।
0: तो आप क्यों नहीं किसी डॉक्टर को दिखाते इसे?
2: दिखाया था
0: तो फिर
2: वो कहते हैं कि नॉर्मल है।
0: कमाल है, लेकिन मुझे लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। खैर कोई बात नहीं, इसके बारे में भी सोचेंगे। कोई बात नहीं बेटा। बेटा खुशी बेटा देखो तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने, तुम एक काम करो इसे इसे ले लो और अपने कमरे में जाओ।
3: नहीं चाहिए मुझे खिलौने विलौने, मगर मैं जा रही हूं।
0: अरे मगर बेटा ये खिलौने तो ले जाओ। अरे खुशी बेटा ओफो, चली गई बिना खिलौने लिए।
4: आंटी आंटी नमस्ते।
1: नमस्ते बेटा।
4: अंकल नमस्ते।
2: नमस्ते बेटा।
1: खुशी खुशी देखो ताशु आई है तुमसे मिलने।
3: क्या है मामा?
1: देखो ना ताशु आई है।
4: खुशी खेलोगे मेरे साथ?
3: नहीं ताशु आज मेरा खेलने का मन बिल्कुल भी नहीं है।
4: क्या हो गया, तुम तो मेरे साथ खेलते भी नहीं हो।
3: नहीं ताशु मेरा खेलने का मन नहीं है।
4: खेल लो प्लीज।
3: प्लीज ताशु मुझे नहीं खेलना है।
4: प्लीज
3: नहीं।
4: ठीक है फिर मैं मोनू के साथ खेल लूंगी।
3: ठीक है जाओ।
5: कुछ दिनों के बाद खुशी के पिता का तबादला हो जाता है और वो शहर छोड़कर वहां से दूसरे शहर चले जाते हैं जहां शांति थी। अगले दिन खुशी की आंखें नए शहर में खुलती हैं। सुबह सुबह जैसे ही खुशी के कानों में कोयल की आवाज आती है वो खुश हो जाती है। कोयल की आवाज सुनने भर से ही खुशी का चेहरा खिल उठता है।
3: वाह चिड़िया कितनी अच्छी है, तितलियां भी, ये भी बहुत अच्छी हैं, फूल फूल फिर से, वाह तोते, तितलियां रंग बिरंगी लाल पीली हरी, वाह कितना अच्छा है नजारा, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मम्मी मम्मी
1: क्या बात है, क्या हुआ खुशी?
3: मैं तो बाहर जा रही हूँ।
1: अरे
3: देखो चिड़िया तोते कितने सुंदर हैं।

0: सुन तो।
1: नहीं, मैं तो जा रही हूँ।
0: अरे रुक तो सही, कहाँ जा रही है? पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है।
2: एक बार देखे तुमने,
0: हाँ।
2: यहाँ हम जब से आए हैं खुशी की खुशी वापस आ गई है, तो वो बहुत खुश रहती है।
0: सही कहते हो आप।
2: हे ईश्वर, हे भगवान, तूने हमारी खुशी वापस लौटा दी।
3: अब खुशी के मम्मी पापा को समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा कि खुशी की खुशी कहाँ चली गई थी। जहाँ वो पहले रहते थे वहाँ पर हर रोज पेड़ों की कटाई हो रही थी, नई कंपनियां लग रही थी, प्रकृति की खूबसूरती जाने कहाँ चली गई थी। सो खुशी की खुशी भी चली गई थी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी खुशी बनी रहे तो खूब पेड़ लगाइए, वातावरण में खुशी रहेगी तो आपकी खुशी भी बनी रहेगी।
4: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम लौट आई खुशी की खुशी। अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। उमंग।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक साथियों जय हिंद। गीत संगीत के इस सुहाने सफर में स्वागत आप सभी का। कार्यक्रम की पहली पेशकश ये देशभक्ति गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म इंडियन से। इस गीत को गाया है रूप कुमार राठौड़ और साथियों ने। आनंद राज आनंद का संगीत और बोल हैं आनंद बख्शी के।

अलका याग्निक और कुमार सानू के युगल स्वरों में लीजिए अब सुनिए फिल्म हम हैं राही प्यार के का ये गीत। नदीम श्रवण का संगीत निर्देशन है और बोल हैं समीर के।

0: और भी शानदार।
1: मारुति सुजुकी विक्टोरिस शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
0: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
1: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
0: जल्दी विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
2: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

इश्क विश्क। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुनाल का याग्निक की आवाज़ में समीर की शब्द रचना को सुरों में ढाला था अनु मलिक ने।

मुस्तफा जहीद और साथियों के गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम सैनिकों के लिए अब यहीं पर संपन्न होता है। सैनिक साथियों, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए प्यारी बहनों का कार्यक्रम मिंजरा।

मिंजरा कार्यक्रम सुनने वाली बहनों जो नमस्ते कने होर जितने भी श्रोता ये कार्यक्रम सुना करते हैं तिना सारे जो मेरी राम राम। बहनों जिहड़े नवजात बच्चे होंदे तिना जो माता दा दुध अमृत समान होंदा कही कि भई स्तनपान करने वाले बच्चे जिहड़े हैं सह दस्त निमोनिया सैप्टिक जदे बीमारियां ते सह बचे रहिंदे। कने जिहड़े बच्चे डिब्बाबंद या दूजा कोई दुध होर पींदे हैं तो सह अगर माता दा दुध नहीं पी पाते हैं तो तिना दे मुकाबले जिहड़े सह बच्चे शारीरिक कन्ने मानसिक रूप से जिहड़े सह ज़्यादा स्वस्थ नहीं रहिंदे। इस करी हर माँ जो अपने नवजात बच्चे जो साल 6 महीने जिहड़े सह जरूर स्तनपान कराना चाहिए। डॉक्टरों का मनना है कि भी नवजात बच्चे दे जन्म दे कुछ मिनटों बाद ही अगर माँ बच्चे जो स्तनपान कराना शुरू कर दी है तो कई गुणा माँ का जिहड़ा दुध से बदलने की संभावना जिहड़ी से बनी रहिंदी। कने जन्म लेंदे ही बच्चे जो शहद या बोतल का दुध पिलाने की कोशिश करते हैं तो सह बच्चा माता का दुध पीना जिहड़ा सह ज़्यादा पसंद नहीं करता। स्तनपान कराने वाली महिला जो मोटापे की समस्या घट रही कने ब्रेस्ट कैंसर ते भी सह बची रही है। बेड़ो एक माँ का दुध शिशु वास्ते संपूर्ण आहार है, बाकी चीज़ों की कोई जरूरत जी नहीं पौंदी। इस वास्ते माता का जोड़ा दुध है सह अमृत समान मनिया जाता कहे कि भी गाढ़ा पीड़ा दुध जोड़ा सा पूरे जीवन तक असाधे स्वास्थ्य जी सह रक्षा करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता इस बीच आती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार शिशु के जन्म के बाद पहले 6 महीने सिर्फ स्तनपान कराना चाहिए। इसके विज्ञानिक कने व्यवहारिक कारण है ना, यह दुध बच्चे जो पूरा पोषण देता कने झट पची आता है कने बच्चे के शारीरिक कने मानसिक विकास वास्ते प्रोटीन बसा विटामिन कने मिनरल इस दुध विच जिहड़ा सा है मिली आते हैं। बेणो नवजात बच्चे की आंतां जिहड़ी सा नाजुक होंदियां कने माँ का दुध सही तरीके कने पची आता है कने जिहड़ा बाहरी दुध असा बच्चे जो पिलांदे न से बड़ी झट जिहड़ा सा नहीं पची पाता। इस करी अगर बड़ी जरूरत पई जाए तो गाय का दुध बच्चे वास्ते जिहड़ा सा वधिया मन्निया जांदा कई कि भी तिस विच जिहड़ा सा बच्चा तिस दुध जो पचाई सकता है कने दिमाग का विकास वास्ते भी सह दुध जिहड़ा सा बड़ा वधिया हुंदा है। तो बिणो कार्यक्रम च अहां हुण पहले लेना है सुनना है एक लोक गीत कने उसते बाद विज्ञापन।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर, 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।

0: काट दिया।
1: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
1: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: Step into the world of Nexa.
5: Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
4: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
5: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
4: And now it's yours at an effective price of just 6.75 lakh rupees.
5: Yes, rupees 6.75 lakh. Valid till 31st August.
4: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
5: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
3: Nexa.
6: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
7: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
8: लोकगीत कने विज्ञापन ते बाद कार्यक्रम च असा फिरी हाजिर हैं। बिन भी माता दे दूध च मौजूद खास जड़ा सा फैटी एसिड होंदा जड़ा शिशु दे मस्तिष्क यानी कि दिमाग दा विकास करदा। जन्म दे तुरंत बाद आने वाला गाढ़ा पीला दूध बच्चे दा पहला प्राकृतिक टीका होंदा जड़ा कई बीमारियां ते बचांदा। बिनो आधुनिक विज्ञानिक शोध दसदे कि भी माँ दा दूध जड़ा सा बच्चे दे जीन्स यानी कि DNA च सकारात्मक बदलाव जड़ा सा लेउंदा, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो मजबूत करदा, स्तनपान दे दौरान माँ कने बच्चे दे विच एक गहरा सुरक्षित भावनात्मक संबंध जड़ा ऐसा बनी जांदा जड़ा उम्र भर अहां कने रहिंदा। मैनू ये प्राकृतिक सच है, कोई दूध माँ दे दूध बराबर जड़ा सा नहीं होंदा। कने एक माँ राती अपने बिस्तर ते ही फीडिंग जड़ी सा कराई सकती है, बार बार ती ना जो उठना नहीं पौंदा, तिसते भी माँ दी जड़ी सेहत है सा ठीक रहिंदी, कने बच्चे दी सेहत भी ठीक रहिंदी। अगर मैनू भी असा बच्चे जो केवल बोतल दा दूध पियांदे हन ता दमा, निमोनिया, कन्ना च दर्द या होर भी कई समस्या जड़ी सा पैदा हो जांदी है। कने अगर बच्चा ज़्यादा रोआ करता है तो समझी लेना कि भाई तीस जो माँ का दूध जड़ा सा घट पोआ करता है। जड़ी बहना स्तनपान करांदी है ना तीना जो सामान्य ते ज़्यादा भोजन लेने की जरूरत होती है, बच्चे जो दूध पिलाना जड़ा सा नहीं छड़ना, तो बहनों दूध पियांदे रहेंदे कने भी माँ खुश कने शांत होना चाहिए उस समय, तिसते बच्चा भी जड़ सा खुश रहेंदा, दूध भी वधिया जड़ा उतरदा। हुण तां सरकार भी 6 महीने तक जड़े से मैटरनिटी लीव यानी कि मातृत्व अवकाश जड़ा से दिया करदी है ताकि से बच्चे दी सही तरीके कने देखभाल करी सके, कने तीना जो बीमारियां ते बचाई सके। जड़ियां कामकाजी बहना न कुथी ना कुथी जड़ी से जॉब करा करदियां न, तां बहनो 6 महीने ते बाद जड़ा से नवजात बच्चे जो मैश कित्या जड़ा केला सूप दाल चावल दा पानी दलिया एक खिचड़ी भी असा दे सकते। जियां जियां बच्चा बड़ा होंदा जांदा है तो ज़्यादा खाने की भी जड़ी चीज़ों की जरूरत पौंदी है। कने 1 साल के बाद असा खुद ही घरे जड़ा सा अपना सैरेलक बनाई सकते हैं 5-7 चीज़ा मिलाई की। अगर 1 डिब्बे च असा बनाई की रखते हुए तो भी झट से 10 मिनट जड़ा सा बच्चे का खाना जड़ा सा तैयार हो जाता। तो बहनों जितनी सावधानी असा बरतगे उतना ही बच्चा स्वस्थ रहता, बीमारियां घट लगदी हैं। कने मौसम के हिसाब कन्या असा कपड़े ही जड़े सती ना जो आरामदायक कपड़े जड़े से मखमली सूती कपड़ा जड़े सती ना जो पहनाना चाहिए। तो बहनों छोटे बच्चे नवजात शिशु तिना जो साफ सुथरा रखना भी बड़ा जरूरी होंदा। बच्चे जो जल्दी असा छूने या दूध पियाने ते पहले हमेशा जड़े से हाथ साबुन या साफ पानी करने बढ़िया धोई लेना चाहिए, क्योंकि उस समय तिना दी त्वचा जड़ी सै तिना दी जड़ी स्किन होंदी है सै बड़ी नाजुक होंदी है। तो बहनों घर च जड़े बच्चे बुजुर्ग होंदे न जड़े बड़े बुजुर्ग होंदे न सै तो सही तरीके ने जानते कि बच्चे जो नुहाना अगर असा अकेले ही सब संभाला करते हैं तो जाली तक बच्चे दी नाल जड़ी

है सुकी करी गिरी ना जाए ताली तक अपने पैरों च ही बच्चे जो उल्टा करी नुहाना चाहिए कने सीधा भी नुहाना पर अखीं च पानी जड़े से सीधा ना पवे कने पानी लई करी मूँह हाथ जड़े से दुहाई देने चाहिए गुनगुना पानी होना चाहिए ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा मुलायम कपड़े कने शरीर पहुँचना फिर तौलिए लपेटी देना ताकि से जड़ा भी शरीर च पानी रहा है से तौलिए कने सुकी जाए। तो बेटो नहाने ते पहले तेल मालिश जरूर बच्चे दी करनी चाहिए ताकि बच्चा जड़े से सुखी जड़ी तिने दी से स्किन रहे समय से पर बच्चे दे गले कने बगल कने जड़ी जंगा दी परतां से बढ़िया तरीके ने साफ करी लेने चाहिए कहे कि भी दूध कने पसीना तिने विच जमे रहता तिसते जड़े से रेशे जड़े से हो जाते हैं। तो मैंने जड़ा नाल दा हिस्सा होंगे सब बढ़िया साफ कने सुखा रखना चाहिए बिना डॉक्टर की सलाह ते कोई भी तेल पाउडर या एंटीसेप्टिक नहीं लगाना चाहिए। अजकल असा डायपर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कने रेशे होने का भी खतरा जड़ से रहता कभी गिला कने गंदा डायपर जड़ से नहीं रखना तुरंत से बदली देना बच्चे दे तौलिए कपड़े कने बिस्तर बड़े दे कपड़े कने बिल्कुल नहीं धोने कने से अलग एंटी बैक्टीरियल डिटर्जेंट अजकल मिलते हैं कि तिस कने धोने अगर बच्चा बोतल कने दूध असा प्या करते हैं तो सह बोतल उबाली करी जरूर रखनी। तो बहनों बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो कुछ चीज़ा तिना जो सिखाना भी जरूरी होंगे तिना जो साफ रहना जरूर दसना टॉयलेट जाने के बाद हाथ धोने की आदत जरूर होना चाहिए हर रोज़ नहाने की आदत तिना जो जरूर होना चाहिए क्योंकि बच्चे धूल मिट्टिया कने खेलते रहते हैं से गंदगी पसीने कने शरीर च जमी जड़ी से मिट्टी जमी आती है नाखून संबंधी स्वच्छता के बारे च भी तिना जो जरूर दसना कि भी नाखून गंदे रहन तो कितनिया सारिया बीमारियां जड़ी से असें लगी पौंदियां। तो बहनों गल्लां होर भी होनी है न पर इससे पहले हाँ सुना प्यार दिया लोक गीत।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: Step into the world of Nexa.
3: Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
3: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
2: And now it's yours at an effective price of just 6.75 lakh rupees.
3: Yes, rupees 6.75 lakh. Valid till 31st August.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
3: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
4: Nexa.
5: लोकगीत कने विज्ञापन ते बाद कार्यक्रम च असा एक बारी फिरी हाजिर हैं। कने भेणो इसते पहले गल हो दी थी स्वच्छता दी। भेणो नाखून गंदे होन ता जल्ली बच्चे खाना खांदे ता कई कीटाणु पेटे जड़े है चली आंदे हैं, तिसते भी बच्चा जड़ा सा बीमार रहना लगी पौंदा। कने अजकल बरसाती दा मौसम चला करदा, कने बरखा दे पानी कने बच्चे खेलदे रहंदे, कई तरह दे कीटाणु लेके आई आंदे घरे। कने रोगाणु बच्चे दे शरीर मूँह नक आँखें दे माध्यम ते बच्चे दे शरीर च प्रवेश कर आते। इस करी छोटिया उम्र च ही बच्चे जड़े से तिना जो आदत हाथ धोने दी जड़ी से हो जाना चाहिए, ताकि बच्चा खाना खाने ते पहले कने बाद विच हाथ धोना सीखी लै। बरसाती पानिए जड़ा रखे होंदा से बाद इस विच मच्छर दा लार्वा जड़ से बनी आंदा। इस करी बरसाती मलेरिया रोग होने दी भी जड़ी से ज़्यादा संभावना रहिंदी है। कने इस मौसम च कोई खुजली फोड़ा फुंसी हो जाए तो जड़ा ठीक ना होए तो जरूर डॉक्टर वाला दसी लेना चाहिए। बच्चे जाले सड़क च या पोखर च पानी भरोया हों, तिना च असें मस्ती करते रहते खेलते रहते। अगर कुछ शरीर च कट फट लगे होए तो ज़्यादा कीटाणु जड़े से आई जाते, कने संक्रमण की संभावना बनी रहती। जल भी बच्चा घरे होए तो हाथ पैर धोने के बाद साफ कपड़े कन्ने से पहुँचने, ताकि से कुछ बीमारी दे शिकार ना हो जान। तो भेणों भी बरखा के संपर्क च होने ते बच्चों जो खास तौर पर खांसी जुकाम फ्लू होने की जी संभावना रहती। कने इस वास्ते कई सावधानी असा जो बरतना पौंदी। बच्चे तो बच्चे हैं ना, तिना जो कितना असा रोकी सकते ना, तिना दे स्वास्थ्य पौष्टिक आहार बढ़िया नींद स्वच्छता पर ध्यान देना असां दी जिम्मेदारी होंदी है, कि भी समय समय पर तिना जो जागरूक किया जाए, तिना जो सारी चीज़ां समझाई जान। दिन की शुरुआत स्वास्थ्य रास्ते कन्ने होए, तिस दे विच दूध दही फल जरूर शामिल होना चाहिए। मैं हुण गल करनी है हिरोशिमा दी। जिस जगह च ये त्रासदी हुई थी, अज भी सह लोग तिसा दा असर झेला करते हैं। तो भैनों हुण गल करिए हिरोशिमा दी। हर साल 6 अगस्त जो ये दिन जिहड़ा सह मनाया जाता, ये दिन 1945 दे परमाणु हमले मानव जीवन जो नुकसान कन्ने विश्व शांति दे संदेश जो याद दिलांदा है। सन 1945 दा दिन था, 6 अगस्त थी, भ्यागा दे 8:15 पर यह घटना घटी थी। अमेरिका ने जापान दे हिरोशिमा शहर पर लिटल बॉय नाम का जरा सा परमाणु बम गिराया था। इस दे हमले च 1,30,000 लोगों च इसका असर

कन्ने मौत जड़ी सा होई गई थी। इस दिन लोग जड़े मारे गए थे तिना जो मौन रखी की श्रद्धांजलि दी जाती है। कहने इस दिन शांति भाईचारे का संदेश भी दिता जाता है। तो हूँ कार्यक्रम च गल करनी है खान पान की। बिनो केले हर कोई जड़े से खाना पसंद करता है, चाहे से बच्चे होन, बुजुर्ग होन या जवान होन। कहीं कि भी बच्चे ते असा सारे जो भी आदत होंदी है, आदत बनी गई होंदी है कि ये सब ते बढ़िया फल है। कने ज़्यादा महंगा भी नहीं होंदा, हर कुसी दे बजट च ये सही रहिंदा है। कने कने बहनों ये हिमाचली मिठा व्यंजन है जिहड़ा हर त्यौहार ब्याह शादियाँ च भी बनाया जाता, कने सारे पसंद भी करते हैं। केले का मिठा बड़ा मशहूर है, बड़े चाव कने सारे इस व्यंजन जो खाना पसंद करते हैं। इस जो बनाने वास्ते असं जो चाहिए दो केले, थोड़ी देई काली मिर्च, साबुत किशमिश, सौंफ, काजू, नारियल दे नारियल कने दो चुटकी खाने का रंग, चीनी, पानी कने पहले जड़ी सै कढ़ाई चुल्हे पर गर्म करना रखी जानी। कने फिर तिस बिच देसी घी या रिफाइंड तेल भी असं ले सकते हैं। आधा कड़छी तिस जो थोड़ा थोड़ा गर्म होना देना। कने फिर सौंफ पाई देनी। इस बिच कट्टे हुए सूखे मेवे, काजू, बादाम, नारियल, किशमिश सब पाई देने। थोड़ी देर ती ना जो भुनना, फिर काली मिर्च पाई देनी कने भुननी लेनी। इस जो ज़्यादा देर तक है भुनना नहीं, बल्कि ये जल्दी तक भुनना, जल्दी तक चटकना लगी आए। कटोरी चीनी तिस बिच पाई देनी, कने फिर आधी कटोरी पानी पाई देना। कने चाशनी बनानी, पर गाढ़ी नहीं, एक तार वाली नहीं होना चाहिए, दो तीन उबाले तिस जो लगाने। कने फिर खाने का रंग तिस बिच पाई देना। कने केले जड़े असा ताली ताली छिलने, पहले नहीं छिली रखने, बल्कि केले जड़े से काले पई जाते। कने छोटे छोटे टुकड़े तिसते करी लेने। फिर से बहनों केले कट्टे जड़े से तिस बिच पाई देने, एक मिनट से पकाने। कने इलायची पाउडर पाई देना, कने से चूल्हे ते उतारी रखना। तो बहनों बन गया, तैयार हो गया केले का मिठा। ये पारंपरिक हिमाचली व्यंजन है, असा कुसी भी तीज त्यौहार धामा च इस जो बनाई के खाई सकते हैं। कने बहनों ये खाने जो जड़ से बड़ा स्वाद लगता है। तो कार्यक्रम च हूँ एक होर लोक गीत सुनाना है, तो सुना देने लोक गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिंजरा एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। दोपहर का एक बजने को है। आपसे कुछ ही देर बाद आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: लोकसभा की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन दुखद परमाणु हमलों के आज 81 पूरे हो गए हैं।
2: आज से 81 पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमश 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
1: इसके बाद श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इन्हीं मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2:15 तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही 11:00 शुरू हुई। इस दौरान मंत्रियों ने सदन के पटल पर कई दस्तावेज रखे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के प्रत्येक सदस्य से मर्यादा बनाए रखने और प्रासंगिक विषयों पर ही बोलने की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सदस्य अपने विचार स्वतंत्र रूप से रख सकता है, लेकिन ये व्यवस्थित और सार्थक ढंग से होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने आशीष मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस स्तर पर जमानत की शर्तों में बदलाव या ढील देने का कोई आधार नहीं बनता है। मौसम विभाग ने बताया है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्णाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अन्य सभी 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश होने की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने देहरादून, चमोली और बागेश्वर जिलों में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट तथा राज्य के अन्य हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण चमोली और बागेश्वर जिलों में आज 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर घटा है। हालांकि तेज बारिश के कारण भुवनेश्वर के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य में फिर से तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास का काम जारी है। प्रशासन ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ से तबाही के बाद सामान्य स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता, पुनर्वास और मुआवजे सहित हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह का कल रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे बलिया जिले की रसला विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते थे और उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा के एकमात्र विधायक थे। रक्षा मंत्री

बंदिनी फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज़, शैलेंद्र के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत और हीरोइन होती है फिल्म में नूतन। सभी श्रोताओं ने ये भी जवाब सही दिया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये गज़ब, आपने तो शुरुआत के फिल्म परख के गाने से ओ सजना बरखा बहार आई, बिल्कुल ये तो सोचा ही नहीं था। लेकिन क्यों नहीं सोचा था, इसमें फुहार शब्द कहीं आता है ना, और इबारत में है, इबारत में जो कुछ लिखा है उसमें कोई ना कोई ऐसा शब्द होगा जिसमें आपको गाना ज़रूर याद आएगा। हालांकि अब एक गाना हम ऐसा सुनवाने वाले हैं जो शायद आपने बहुत कम सुना होगा, और उस गाने से जुड़ी हुई कोई ख़ास बात होगी, कोई ख़ास याद होगी, तो ज़रूर साझा कीजिएगा। ज़रा इंतज़ार कीजिए, हम पहले टिप्पणी आपकी पढ़कर सुना दें। एक श्रोता ने लिखा है कि जब हमने पहली जॉब जहाँ थी उसी नगर से दूसरी जगह जाना

हुआ तब हमारे मकान मालिक और उनकी पत्नी ने हमें अपने बच्चों को विदाई देते हुए ऐसे रोते हुए ढेरों प्यार बरसाते विदाई दी थी। क्या बात है भाई, जब दरअसल अभी भी छोटे शहरों में जब बच्चे घर से पढ़ने लिखने के लिए बाहर जाते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी शामिल हो जाते हैं, या फिर जब बेटी अपने मायके आती है तो अड़ोसी पड़ोसी छतों से झांकते हैं और जो जिनसे बहुत घनिष्ठ रिश्ता होता है वो मिलने भी तुरंत आ जाते हैं कि बेटी अपने ससुराल से मायके आई है। ऐसा ही कुछ समा होता है अड़ोस पड़ोस के साथ। हालाँकि महानगरों में ये चीज़ें कम होती हैं क्योंकि महानगरीय व्यस्तता आड़े आ जाती है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि सावन का महीना बड़ा अच्छा माना जाता है, खास तौर से बहन बेटियों की यादें ताज़ा कर देता है। ये महीना एक तरह से प्रेम उमंग का महीना होता है। हमें वो दिन याद आते रहते हैं जब बहनें इस महीने में झूला डालकर झूला झूलती थीं, हम भी उनके साथ झूले पर झूलते थे। उधर रक्षाबंधन की भी याद दिला देता है और सावन मास की तीज का त्यौहार तो एक बहनों का खास दिन हुआ करता था। मोहल्ले की सब बहनें मिलजुल कर इस दिन को ख़ास तौर से एक पर्व के रूप में आज भी मनाया करती हैं। जब बहनें ससुराल जाती हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं। ससुराल में चाहे उन्हें कितना भी सुख हो पर वो आंगन याद आता है जब साथ साथ खेला करते थे। पुराने बचपन की याद ताज़ा हो जाती है और वो गुड़िये वाले दिन कैसे नहीं याद आते हैं कि गुड़िया का एक संसार होता था, गुड़िया गुड्डे का। तो जब एक बेटी विदा होती है तो अपने माँ से क्या कहती है कि मेरी गुड़िया संभाल के रख दो, अब खेलने का समय नहीं रहा। लेकिन मन में ये आस ज़रूर होती है कि माँ गुड़िया संभाल के रखेंगी और जब मैं लौट कर आऊँगी तो इन्हें खेलूँगी। कुछ यही बात ये गाना कहता है, ज़रा सुनिए। फिल्म है तुम लौट आओ। अगर आपको पता है तो किसकी आवाज़ में ये गाना है ज़रूर बताइए। इस गाने से जुड़ी कोई खास बात हो, कोई खास याद हो तो साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।

लौट आओ फिल्म का ये गीत था, सरला भिड़े और शोभा जोशी के स्वर थे। अभी तक हमारे श्रोता नहीं बता पाए किनकी आवाज़ें थी, हमने आपको बता दिया। चूंकि ये गाना आपको बहुत कम सुनने को मिलता है, इसलिए हमने जानकारी

जा पाते, वे रह जाते हैं कोई पुरानी तस्वीर में, कोई अधूरी बातों में और उन जगहों में जहां हमने साथ मिलकर एक वक्त गुजारा था। एक श्रोता ने लिखा है कि परिवार में माता पिता भाई बहन का रिश्ता एक मजबूत डोर से बंधा होता है, रूठना मनाना चलता रहता है। बेटी की विदाई एक सुनापन सा एहसास देता है। बेटी के फ़ोन पर हंसी सुनकर घर में खुशी और रौनक फिर से सबके मन में खिल उठती है। बस इन्हीं शब्दों से गाना चुनिए आप। बेटी शब्द इसमें आया है, विदाई तो है ही, रूठना मनाना है, हंसी है और फ़ोन भी है। तो फ़ोन शब्द से कौन सा गाना आपको याद आ रहा है हम सुनवाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी कुछ गाने सुझाएं। फिलहाल चोरी चोरी फिल्म का ये गाना सुनिए। रचना किसकी है आप बता सकते हैं और संगीतकार का नाम भी बताइए।

बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, बहुत ही भावुक गाना सुनाया, और इसके पहले जो गाना सुनवाया था बिछड़ी मेरी सहेलियाँ तुम लौट आओ, इसके लिए भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, और ज़्यादातर श्रोताओं ने लिखा है कि ये गाना हमने

पहली बार सुना ये गाना, हमने कम सुना और बहुत ही भावुक कर देने वाला ये गाना था। सचमुच कई बार हम गीत सुनकर ही जज्बाती हो जाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा भी है कि आज मुझे 35 साल पुरानी बात याद आ गई, जब हम छत्तीसगढ़ से ट्रांसफ़र होकर आ रहे थे तो जो मकान मालकिन थी, जिसे वहाँ दाई कहते थे, वो इतना रोई और एक बेटी की तरह मुझे विदा की। रास्ते के लिए खाना भी रखा और साड़ी भी दी, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। एक श्रोता ने लिखा है कि आज सावन के गीतों को सुनने का आनंद मिलेगा। सावन के दिनों में अपनों से बिछड़ने का दुख होता है, पर याद कर घर जाकर मिलने की आस भी रहती है। एक श्रोता ने लिखा है कि जब वो खुद विदा की जाती है और बेटी होगी तो उसे शादी करके विदा किया जाता है, वो मंजर बहुत भावहीना होता है। अगर बेटी या बेटा पढ़ने या नौकरी के लिए विदा होते हैं तो एक एहसास होता है लौट के फिर आएंगे। मेरी बेटी पुणे से कोंकण नौकरी के लिए गई थी, तब पहली बार उसके पापा की आंखों में आंसू देखे थे। सचमुच विदा किसी भी तरह का हो, विदा दुख देता है, आंखों में आंसू ला देता है। बहरहाल अब चलिए ज़रा बरखा की बूंदों में भीगा जाए। चिराग फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं और इसमें पहेली है। पहेली ये कि आपको बूझना है कौन है हीरो हीरोइन और साथ में गीतकार संगीतकार। हीरो हीरोइन का नाम पूछिए और गीतकार संगीतकार का नाम पूछिए। फिल्म चिराग। और भी कोई गाना याद आ रहा है इन शब्दों पर इबारत वाले, वो भी आप लिखते चलिए। अगर बहुत सारी फरमाइश आ जाएगी कि इन यही गीत है जो इबारत वाले शब्द है, तो वो गाना हम आपको सुनवाएंगे।

0: चिराग फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ें थी, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था, हमने पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया है, आशा पारिख और सुनील दत्त। एक श्रोता ने लिखा है कि विदाई की बात आई तो मुझे वो दिन याद आते हैं जब माता पिता पढ़ाई करने या जॉब करने अपने बच्चों को स्टेशन छोड़ने जाते हैं, मम्मियों के आंसू नहीं रुकते, जिसकी मैं स्वयं साक्षी हूँ। भोपाल से हम सफ़र एक्सप्रेस पुणे मुंबई चलती है, उन माओं में मैं भी शामिल थी जिनके आंसू सबको जानते हुए रुक नहीं रहे थे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो सावन की बात है, ऐसा लगता है कि ममता जी की आँखों में भी सावन होगा। तो एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपने रुला दिया वो गाने सुनाकर, मेरे ख्याल से इस गाने की बात है, बिछड़ी मोरी सहेलियाँ और अम्मा मेरे बाबुल को भेजोरी, ये ऐसे गाने हैं जिन्हें सुनकर किसकी आंखें नम नहीं होती हैं। तो इन्होंने आगे लिखा है कि आज न मम्मी है न पापा है, एक भाई है हमसे बहुत प्यार करता है लेकिन वो अपने परिवार के लिए मजबूर है, इसलिए फ़ोन पर ही बात हो जाती है, आज मन बहुत भावुक हो रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि परख फिल्म का जो गाना आपने सुनवाया, बेहद लोकप्रिय गीत, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना और बरखा से जुड़ा हुआ, बारिश की रस भरी फुहार, किस तरह से पेड़ पौधों के साथ साथ हमारे दिलों में भी प्रेम रस का संचार करता है ये गाना, उसी का वर्णन है इस गीत में। सलिल चौधरी के शास्त्रीय लोक और पहाड़ी धुनों को मिलाकर बनाए हुए गाने इतने ज़्यादा मीठे लगते हैं सुनने में कि जब भी हम इन्हें सुने तो कितने भी तनाव में हो मन प्रसन्न हो जाता है। और इन एक श्रोता ने और लिखा है कि हमें उम्मीद नहीं थी कि आप ये गाना सुनवा देंगे, कई बार उम्मीद के विपरीत गाना सुनवाने में भी बड़ा आनंद आता है, लेकिन अब जो गाना सुनवाएंगे वो हम आपकी उम्मीद के मुताबिक ही सुनवाएंगे, क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है। हमने पूछा था कि कौन सा गाना फ़ोन पर याद आ रहा है, टेलीफोन पर, कि जब बेटी विदा होती है, जो अम्मा है इस इबारत में, कि अम्मा कहती हैं कि फ़ोन आया बेटी का और उनके सामने यादें साझा हो गई, तो फ़ोन वाले गाने हमने आपसे पूछे थे। अभी तक तो सिर्फ इसी गाने की फरमाइश आई है। फिल्म का नाम बता सकते हैं तो बताइए, जरा जल्द बताइएगा फिल्म का नाम।
1: हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ।
0: किसकी है आवाज़, ये भी बताइए।
1: देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। आप बताइए अपने अनुभव कि टेलीफोन जब करते हैं तो कितनी देर बतियाते हैं, और टेलीफोन से जुड़ी हुई कौन सी याद है, कोई ख़ास बात है तो वो आप साझा कर सकते हैं। हमने पूछा था फिल्म का नाम पतंगा, सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया, और शमशाद बेगम और चितलकर की आवाज़ें थी, ये भी सही बताया हमारे श्रोताओं ने। एक श्रोता लिख रहे हैं कि बात 1974 की होगी, जब हम नौकरी की खोज में जम्मू गए थे, जहाँ एक मित्र मिल गया जिसने महीने भर अपने घर रखा, और नौकरी ना मिलने पर वो हमें छोड़ने जम्मू रेलवे स्टेशन पर आया था। ट्रेन चढ़ने पर भी मैं रो रहा था और वो भी रो रहा था। कुछ वर्षों तक बातचीत पत्रों से होती रही, लेकिन कुछ समय बाद उसके खत नहीं आए। एक श्रोता ने लिखा है कि आज भी जब सावन की पहली फुहार पड़ती है तो उसकी विदाई का दिन याद आ जाता है। भीगी आंखों से उसे विदा किया था और मुस्कुरा कर कहा था खुश रहना। उस दिन समझ आया कि माँ बाप की दुआओं में कितना साहस छिपा होता है। बेटी चली जाती है लेकिन उसकी हंसी, उसकी बातें और उसकी यादें हमेशा घर के आंगन में गूंजती रहती हैं। अब एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत पुरानी यादों में ले जाकर आंखों में आंसू ले आए। आज माता पिता बहन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन यादें ताज़ा हो गईं। उस घर की जो जन्मभूमि रही, जहां छोटा सा परिवार हंसी खुशी सपनों के साथ रहता था। सावन माह कुछ ज़्यादा ही याद आता है। ऐसा कोई सावन नहीं गुजरा जब माँ के पास नहीं गई। छुट्टियाँ नहीं मिलने पर भी एक ही दिन में आना जाना कर लेती थी। अब बरसों से सावन उदासी लेकर आता है, बस यादें ही शेष हैं। यादों में विदाई सबके बसा हुआ। सारे श्रोता आज विदाई की बात लिख रहे हैं और अपनी अपनी यादें खंगाल रहे हैं। ज़रा अब एक और गाना सुनिए इसी तरह, और साझा कीजिए अपनी यादें, और साथ में हमें ये भी बताइए कि किसकी है ये आवाज़। हीरो हीरोइन का नाम तो आपको पता ही होगा। सजन घर ले चली, फिल्म हम आपके हैं कौन।

इन शब्द से कोई गाना याद आया आपको? जरा बताइए। इबारत में भाई बहन है, और भाई बहन वाला गाना याद आए तो जरूर बताइए।

0: हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गाना था, सभी श्रोताओं ने बूझा, शारदा सिन्हा की ये आवाज़ थी और कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। हालांकि इसमें हीरो हीरोइन होते माधुरी दीक्षित, सलमान खान के भी बताया है श्रोताओं ने। और विदाई से जुड़ी हुई बहुत सारी टिप्पणियां हमारे श्रोताओं की आ रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का टॉपिक बहुत ही भावुक कर देने वाला है, अभी मेरी बिटिया की विदाई का समय तो दूर है पर आज ही अपनी विदाई का वक्त याद कर आंखों में आंसू ज़रूर आ जाते हैं। और इन्होंने बाबुल मोरा नैहर छूटा जाए ये गाना भी लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि इबारत, आज की इबारत हर बेटी के मन में बसे सावन की साझा स्मृति है। सावन केवल पेड़ों पर नहीं उतरता, वो यादों की शाखों पर भी झूलता है। भीगी दोपहर, आंगन में रखी गुड़िया और अम्मा की नम आँखें मिलकर उस रिक्तता को स्वर देती हैं जिससे हर बेटी की विदाई घर की चौखट पर छोड़ जाती है। वो गुड़िया महज एक खिलौना नहीं, बचपन की आखिरी अमानत है। और सावन आया केवल ऋतु का संदेश नहीं बल्कि उस बेटी की मौन पुकार है जो मायके की दहलीज, अम्मा की गोद और बाबुल के स्नेह को एक बार फिर जी लेना चाहती है। पर माँ का मन वहीं ठहरा रहता है जहाँ विदा होती बेटी ने आखिरी बार मुड़कर देखा था। चलिए, अब हमने आपसे पूछा था भाई बहन वाला कौन सा गाना आपको याद आया, तो कहीं ये गाना तो नहीं है? सुनिए और बताइए फिल्म का नाम।
1: मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया।
0: हीरो हीरोइन का नाम भी आपको पूछना है।

इस गाने को सुनते हुए बहुत सारे श्रोताओं को भाई बहन वाले गाने याद आए और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है किसी महीने में रक्षाबंधन का त्यौहार आता है तो भाई बहन वाले गाने बहुत याद आते हैं। और शारदा सिन्हा के लिए लिखा है कि शारदा सिन्हा बिहार की कोकिला कही जाती थी। और एक श्रोता ने और लिखा है भाई बहन का त्यौहार आने वाला है, रक्षाबंधन का गीत, बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, फूलों का, तारों का सबका कहना है और बाबुल की दुआएं लेती जा, ये गाना लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि शायद वो सावन भी आए जो बहन सा रंग ना लाए, बहन पराए देश बसी हो अगर वो तुम तक पहुँच ना पाए, ये कविता की पंक्तियाँ लिखी हैं इन्होंने। और एक श्रोता ने लिखा है कि भाई बहन पर फिल्म छोटी बहन का गाना याद आ रहा है, वो बहुत अच्छा लगता है। और गाने सुनते जा रहे हैं, एक श्रोता ने लिखा है गाने सुनते जा रहे हैं, आंखें साफ हो रही हैं, भावुक हो रहे हैं, बस यही चल रहा है आज के प्रोग्राम के साथ। और एक श्रोता ने लिखा है सच्चा झूठा फिल्म का ये गाना

और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया है राजेश खन्ना, विनोद खन्ना मुमताज इस फिल्म में हीरो हीरोइन होते हैं। और टेलीफोन से जुड़ी हुई हमने बात पूछी थी कि टेलीफोन वाला जो गाना सुनवाएं तो आप अपनी यादें साझा कीजिए, तो श्रोताओं ने लिखा है कि अगर फ़ोन पर पिता पुत्र बात कर रहे हैं तो केवल कुछ मिनट मतलब की बात होती है, अगर माँ बेटी की बातें हों तो समय असीमित होता है, यूँ समझ लीजिए घंटों घंटों कुछ मिनट के समान होते हैं। एक श्रोता ने बिल्कुल सही बात है कि जब माँ बेटी बतियाने लगती हैं तो भूल जाती हैं कि हम टेलीफोन पर बतिया रहे हैं, लेकिन आजकल जो दो दोस्त बात करते हैं तो वो भी अनलिमिटेड बातें होती हैं, पता नहीं चलता समय का। एक श्रोता ने लिखा है कि हम आठवीं कक्षा में पढ़ने के लिए भेजा था अपने बड़े बेटे को, तो पति पत्नी दोनों को कई दिनों तक याद आती थी, सभी समझते थे कि पढ़ाई करने गया है, लेकिन परिवार से अलग होने का बिछोह ज़्यादा होता था। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमने 2002 में लैंडलाइन फ़ोन के लिए आवेदन किया था, बहुत इंतज़ार के बाद हमें फ़ोन मिला था। एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैं अनाउंसर बनी थी इलाहाबाद से रीवा जा रही थी, 3 जुलाई 1987 को सुबह 6 बजे की बस पर बैठी थी और 9:30 पर रीवा पहुंची थी, बस की खिड़की के बाहर मुँह करके बैठी रही, पानी बरसता रहा और घर छोड़कर मैं रोती रही कि कहीं हमारे पापा हमारी रोती हुई शक्ल ना देख लें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब ज़रा रूठने मनाने की बात भी इबारत में हुई थी, तो ये गाना सुनिए और बताइए कौन है हीरोइन, और साथ में गीतकार संगीतकार का नाम भी बूझिए। फिल्म का नाम सीमा।

सीमा फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज़ थी, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत था और हमने पूछा था कौन है कलाकार, सभी श्रोताओं ने बताया नूतन। और कुछ श्रोताओं की टिप्पणियां हम शामिल कर दें उससे पहले जो अब हम गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं उसके बारे में एक सवाल पूछ लें। दाता फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, उसमें आपको पूछना है कौन है इस फिल्म में कलाकार, हीरो हीरोइन का नाम आपको पूछना है। और आपको बता दें एक श्रोता ने लिखा है सच्चा झूठा गाना का, सच्चा झूठा फिल्म का जो गाना आपने सुनवाया ये अमर रहेगा, क्योंकि जैसा किशोर दा ने गाया है ऐसा कोई गा नहीं सकता, उन्होंने जो भाव से गाया है वो भाव अमर है। एक श्रोता ने लिखा है कि विदाई शादी के बाद तो विदाई होती है, विदाई भाई बहन से, बिछड़ने का वो बचपन जहाँ हम मिलकर खेले झगड़े किए फिर मिल गए, जब जब मायके जाती हूँ तो आते समय आंखें अपने आप भर आती हैं, सालों बीत जाने के बाद भी एक दूसरे से बिछड़ने का दुख आज भी हमें सताता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी बेटी जब अपने ससुराल से पीहर मेरे घर आती है और कुछ दिन रहने के बाद जब उसे वापस ससुराल जाना होता है तो ऐसा लगता है जैसे कि घर पूरा सूना हो गया है। चलिए सुनते हैं ये गाना फिल्म दाता।

दाता फिल्म का ये गाना सुनते हुए बहुत सारे श्रोता फिर भावुक हो गए और बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आने लगी। एक श्रोता ने अभी भी लिखा कि मैंने अपनी विदाई की बातें तो बताई ही नहीं, मेरी विदाई पर सारे घर वाले हम लोगों को ट्रेन पर छोड़ने आए थे, ट्रेन चल रही थी और वो लोग भी रोते रोते चलते रहे, आज कोई भी ना छोड़ने वाले हैं ना रोने वाला है। अब दरअसल व्यस्तताएं इतनी बढ़ गई हैं लोगों के घरों में कि अब वो ज़माना नहीं रहा कि एक

कोई जाता है परिवार से और 10 लोग परिवार के छोड़ने आते हैं। बहरहाल अब प्रोग्राम का सफ़र हो रहा है ख़त्म। प्रोग्राम का सफ़र आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

श्रोताओं नमस्कार। आज त्रिवेणी में बातें होंगी मुस्कुराहट पर। मुस्कुराहट चेहरे का केवल एक भाव नहीं बल्कि मन की सुंदर भाषा है जो बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह जाती है। एक छोटी सी मुस्कान किसी उदास मन में आशा का दीप जला सकती है और किसी अनजान व्यक्ति के साथ भी अपनापन जोड़ सकती है। मुस्कुराहट वो फूल है जो बिना मौसम के भी खिलता है। ये चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के साथ साथ व्यक्तित्व में भी आकर्षण भर देती है। कठिन परिस्थितियों में भी जो व्यक्ति मुस्कुराना जानता है वो जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक धैर्य और विश्वास के साथ करता है। कभी कभी किसी की एक सच्ची मुस्कान थके हुए मन को सुकून दे जाती है। ये रिश्तों में मिठास घोलती है, दूरियों को कम करती है और वातावरण को सकारात्मक बना देती है। मुस्कुराने के लिए किसी बड़े कारण की आवश्यकता नहीं होती। कई बार छोटी छोटी खुशियाँ भी होठों पर मुस्कान ले आती है।

कम नहीं होता बल्कि और भी बढ़ता जाता है। ये जीवन की राहों में आशा, प्रेम और विश्वास का प्रकाश फैलाता है। मुस्कुराहट वो खामोश कविता है जिसे चेहरा लिखता है और दिल पढ़ लेता है। कहते हैं एक मुस्कुराता हुआ चेहरा हजार शब्दों से अधिक प्रभाव डालता है। किसी परेशान व्यक्ति को दी गई छोटी सी मुस्कान उसके मन का बोझ हल्का कर सकती है। ये वो अनमोल उपहार है जिसे देने में कोई खर्च नहीं होता, फिर भी इसकी कीमत बहुत अधिक होती है। मुस्कुराहट जीवन की कठिन राहों में एक सहारे की तरह होती है। जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, तब भी चेहरे पर बनी रहने वाली मुस्कान हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है।

मुस्कुराहट रिश्तों में प्रेम और अपनापन बढ़ाती है। घर में माता पिता की मुस्कान बच्चों को सुरक्षा का एहसास देती है, दोस्तों की मुस्कान मित्रता को गहरा बनाती है और किसी अनजान व्यक्ति की मुस्कान भी पल भर में एक सकारात्मक संबंध बना सकती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग चिंता और तनाव से घिरे रहते हैं, ऐसे में मुस्कुराहट मन को शांति देने वाली औषधि के समान है। ये वातावरण को हल्का बनाती है और जीवन को सुंदर दृष्टि से देखने की प्रेरणा देती है। मुस्कुराहट केवल खुशी के समय की पहचान नहीं है, बल्कि ये संघर्षों के बीच भी उम्मीद बनाए रखने की ऐसी शक्ति है। जैसे सूरज बादलों के पीछे छुपकर भी अपनी रोशनी नहीं खोता, वैसे ही मुस्कुराता हुआ इंसान कठिनाइयों के बीच भी अपनी सकारात्मकता

बनाए रखता है। एक सच्ची मुस्कान चेहरे की सुंदरता से अधिक हृदय की सुंदरता को दर्शाती है। मुस्कुराहट वो दीपक है जो स्वयं जलकर भी दूसरों के जीवन में उजाला भर देता है। इसे बांटते जाइए क्योंकि यही जीवन को सरल, सुंदर और मधुर बनाती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू। उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मोकी में होने वाले AHF एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की। और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव, टी धरानीधरन तथा डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन दुखद हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं।
1: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमश 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
0: बाद में श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित हो गई है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 के लिए स्थगित की गई। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाया। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पर्वतीय और सीमावर्ती पर्यटन अवसंरचना से जुड़े प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि केंद्र ने राज्यों को प्रमुख साहसिक पर्यटन स्थलों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की सलाह दी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायालयों में स्वीकृत पदों और रिक्तियों से जुड़े प्रश्नों का उत्तर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के प्रत्येक सदस्य से मर्यादा बनाए रखने और प्रासंगिक विषयों पर ही बोलने की अपेक्षा की जाती है।
2: जब काउंसिल की बैठक चल रही हो, कोई भी इस प्रकार की अव्यवस्था, शोरगुल या किसी अन्य तरीके से इस अव्यवस्थित तरीके से बोलते समय किसी अन्य सदस्य के बीच में बाधा नहीं डालेगा।
0: विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 13वें दिन में प्रवेश कर गया है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अपनी मांगों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच मानसून सत्र के पहले दिन झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। एक रिपोर्ट।
3: झारखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन भाजपा और एनडीए विधायकों ने जेपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे और सीबीआई जांच की मांग की। वहीं मंत्री चंद्रा मुंडा ने कहा कि इस मामले में सत्ता या विपक्ष नहीं बल्कि परीक्षा माफिया असली दोषी है। इस बीच मामले की जाँच कर रही सीआईडी ने रांची और लखनऊ से 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें टीडीपीएल कंपनी का अकाउंटेंट भी शामिल है। मामले में अब तक कुल 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री सोरेन ने भी बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। विवाद को सुलझाने के लिए सरकार की 4 मंत्रियों वाली उच्च स्तरीय कमेटी आज छात्रों के साथ वार्ता कर सकती है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका

0: प्रवेश परीक्षा नीट के संचालन में व्यापक सुधार किया है। पीठ ने कहा है कि वो सभी पहलुओं पर विचार करेगी और सभी पक्षों से अपने जवाब और सुझाव दाखिल करने के लिए कहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बंबई उच्च न्यायालय ने तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में आज दोषी ठहराया है। न्यायालय की गोवा बेंच की जस्टिस नीला गोखले और अमित जमसंदकर की खंडपीठ ने तेजपाल को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दोषी पाया है। इनमें विश्वास या अधिकार के पद का दुरुपयोग कर दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और किसी महिला को निर्वस्त्र करने की नीयत से हमला करने से संबंधित धाराएं शामिल हैं। गोवा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अधिकतम सजा देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इससे एक कड़ा संदेश जाएगा कि ना का मतलब ना होता है। फैसले के बाद तेजपाल ने कहा कि वो उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने आशीष मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस स्तर पर जमानत की शर्तों में बदलाव या ढील देने का कोई आधार नहीं बनता है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि पोत सुरक्षा का माहौल तेजी से बदल रहा है। उन्होंने कहा कि साइबर खतरे, ड्रोन हमले, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, डिजिटल नेटवर्क, सूचना प्रणालियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को होने वाले जोखिमों ने समुद्री सुरक्षा को नया आयाम दिया है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पोत सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि बंदरगाह की सुरक्षा एक साझा राष्ट्रीय जिम्मेदारी है।
1: There is actionable recommendation to strengthen India's port security framework and make the proposed Bureau of Port Security a robust, responsive and future-ready institution. Let us work together for a safe maritime India, a strong maritime India and a Viksit Bharat. Kyunki desh ki suraksha sarvopari hai aur hum desh ke liye जी रहा हूं और देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, दैट शुड बी द कमिटमेंट।
0: भाजपा सांसद तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग की माफी को भारतीय संसद की जीत बताया है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत में व्यापार करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को भारतीय कानून का पालन करना होगा।
2: ये जो जीत है ये भारत के कानून की जीत है, ये जीत भारत के संविधान की, ये जीत भारत के पार्लियामेंट की है और 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की ये ताकत दिखाता है कि भारत में जिसको भी व्यापार करना है उसको भारत का कानून मानना पड़ेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रादेशिक सेना पर बात की गई। बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने केरलम बाढ़, ओडिशा चक्रवात और हाल ही में असम में आई बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्य तथा जरूरतमंदों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने में प्रादेशिक सेना की भूमिका की सराहना की। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अब तक लाखों श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं।
3: अब तक 470,000 से ज्यादा यात्री पवित्र गुफा का दर्शन कर चुके हैं। हर दिन हजारों की तादाद में यात्री, जिनमें मर्द, औरतें, बच्चे वगैरह शामिल हैं, इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। फिलहाल यात्रा सिर्फ बालतल के रास्ते से ही जारी है क्योंकि पहलगाम रास्ते पर मरम्मत का काम चल रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए सुरक्षा बलों, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, प्रशासन और आम शहरियों की सराहना की है। याद रहे ये यात्रा 28 अगस्त को सम्पन्न होगी। से इश्फाक शाह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन EIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया।

0: है। विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल तक मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है। भूस्खलन के कारण कई स्थानों पर सड़क संपर्क टूट गया है, वहीं प्रमुख नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है।
1: प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल रात से जारी बारिश के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन से सड़कें बाधित हुई हैं। कुछ मैदानी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति भी देखी गई है। राज्य की प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ा है और कई गाढ़ गडेरे भी उफान पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को पूरी तरह सतर्कता बरतने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में नदी नालों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि
2: बरसात के लिए आज देहरादून, बागेश्वर और चमोली के लिए ऑरेंज अलर्ट है। बरसात लगातार चल रही है, कई जनपदों में हो रही है। और नदियों के जलस्तर की बात करें तो वर्तमान में अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, वाणगंगा, यमुना और शारदा का स्तर बढ़ रहा है।
1: इस बीच चारधाम यात्रा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जारी है और प्रशासन यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उधर ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 द्वार खुले हुए हैं।
3: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है, क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में बाढ़ का पानी कम हो रहा है। अभी जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 स्लुइस गेट खुले हुए हैं। पानी का स्तर घटने के बावजूद बाढ़ से प्रभावित लोगों की मुश्किलें बनी हुई है और सामान्य जीवन को बहाल करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। इस बीच कल रात से हो रही लगातार भारी बारिश ने राजधानी भुवनेश्वर में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर की कई सड़कों और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है, जिससे घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा है। हालांकि दक्षिणी और पश्चिमी उड़ीसा में बारिश कम होने की उम्मीद है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ के बाद स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने कहा है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्णाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संस्कृत के श्लोक को साझा करते हुए कहा कि जिसमें सभी प्रकार के श्रेष्ठ वनस्पतियों तथा औषधियां पैदा होती हैं, वो पृथ्वी माता विस्तृत और स्थिर हो। विद्या, शौर्य, सत्य, स्नेह आदि सद्गुणों से पालित पोषित कल्याणकारी और सुख साधनों को देने वाली मातृभूमि की हम सदैव सेवा करेंगे। भारतीय हॉकी ने 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन में होने वाले AHF जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। टीम में 2 खिलाड़ियों को विकल्प के तौर पर रखा गया है। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव और टी धारणीधर ने अंतिम दौर में जगह बना ली है। डिस्कस थ्रो खिलाड़ी अमानत कंबोज भी अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में सेंसेक्स में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 209 अंक बढ़कर 78,790 पर, जबकि निफ्टी 10 अंक गिरकर 24,635 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए और राज्यसभा की बैठक दोपहर 3:15 तक के लिए स्थगित। बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू। उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मौकी में होने वाले AHF एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय महिला टीम की घोषणा की और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव, टी धरणीधरन और डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं, आपके रेडियो सखी ममता सिंह।
5: आप यूं ही अगर हमसे मिलते

एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में राजा मेहदी अली खां के बोल थे, ओपी नैयर का संगीत था। आइए अब सुनते हैं माय लव फिल्म का गाना, मुकेश की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल, दान सिंह का संगीत है।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सुनिए

0: साज और आवाज़ फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। कुमार बाराबंकी के बोल थे, नौशाद का संगीत था।
1: वो कॉमिक क्रिएटर हैं।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
1: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: परवाना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। कैफी आजमी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

हमराही फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुबारक बेगम और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, हसरत जयपुरी के बोल थे। आइए प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं विश्वास फिल्म का गाना, मुकेश की आवाज़ में, गुलशन बाबरा के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। सुनिए ये प्रोग्राम का आखिरी गाना और इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: आप सुन रहे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सखी सहेली कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
1: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 3 बजने को हैं, अब से कुछ ही देर बाद आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नगर निगम शिमला के ग्रीन शिमला अवर शिमला अभियान के अंतर्गत अपने सरकारी निवास ओकओवर परिसर में पौधा लगाकर सप्ताह भर चलने वाले पौधारोपण

0: सप्ताह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों से अधिक पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि प्रत्येक व्यक्ति हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाकर उसका संरक्षण सुनिश्चित करे तो ये पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। इस अवसर पर उन्होंने नगर निगम शिमला के पार्षदों को बान और देवदार के पौधे भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष नगर निगम शिमला ने अभियान के तहत 5000 से 10000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से 50 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित हुए हैं। आज नई दिल्ली में CII अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि वर्तमान में 19 लाख परिवारों का बिजली का बिल शून्य हो गया है। प्रह्लाद जोशी ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए कमाए हैं। गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के बारे में उन्होंने कहा कि देश 2030 तक 500 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने आरोप लगाया है कि सुक्खू सरकार ने प्रदेश को कर्ज, झूठे वादों और राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति की ओर धकेल दिया है। आज शिमला में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हितों की बजाय एक सिंडिकेट की तरह काम कर रही है। राजेंद्र राणा ने कहा कि छोटे से प्रदेश में बड़ी संख्या में OST, मीडिया सलाहकार और समन्वयक नियुक्त किए गए हैं, जिससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। राजेंद्र राणा ने कहा कि वर्ष 1971 से 2022 तक विभिन्न सरकारों ने कुल 68,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, जबकि वर्तमान सरकार ने अपने 4 साल के कार्यकाल में ही लगभग 44,600 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया है।
1: 2022 तक लाभ हासिल हुआ है 44,600 करोड़ रुपया कर्जा ले चुकी है। अभी जो 12,000 करोड़ रुपया सालाना कर्ज लिया जा रहा है तो ये कोई दमदारी आदमी ले सकता है? कमजोर आदमी थोड़ी ले सकता है। स्कीमों में पैसा आया 44,600 करोड़ ले लिया, ये पैसा गया तो गया था। आज बसों के मैंने अपने हमीरपुर में अपनी कंस्टिट्यूसी की बात करूँ तो 40 रूट बंद हो गए।
0: प्राथमिक शिक्षक संघ ने न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम को लेकर सरकार और शिक्षा विभाग के खिलाफ आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। आज शिमला में पत्रकार वार्ता में संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा ने कहा कि 11 जुलाई से शुरू हुआ आंदोलन लगातार जारी है और न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम वापस होने तक संघ पीछे नहीं हटेगा। रमेश शर्मा ने कहा कि प्राथमिक शिक्षकों सहित TGT, CNV, साइंस मास्टर, TGT आर्ट्स, स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन, राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ और हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ समेत कई संगठनों ने इस व्यवस्था का विरोध किया और इसे न्यू जुगाड़ तंत्र करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षक संघ का क्रमिक अनशन जारी रहेगा और अगर 5 सितंबर तक सरकार ने न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक व निर्णायक बनाया जाएगा। प्रदेश में नशे के बढ़ते चलन और साइबर ठगी के बढ़ते मामलों के बीच सोलन में निजी संस्था द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न स्कूलों के करीब 300 बच्चों को साइबर क्राइम और नशे के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त दिव्यांश सिंगल ने बताया कि वर्तमान समय में साइबर क्राइम व नशे के बारे में युवाओं को जागरूक करना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस जागरूकता शिविर में स्कूली बच्चों को जागरूक किया गया, जो हमारे समाज को इस कुरीति से बचाने में अहम भूमिका निभाएगा।
2: शहर के जो स्कूल के बच्चों के साथ एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें उनको ड्रग्स के अगेंस्ट और साइबर सिक्योरिटी के लिए अवेयरनेस रेज करने का ये जो प्रोग्राम है आज का, जिसमें उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट से स्पीकर्स हैं और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं और साथ ही जो इनके NCC की तरफ से भी जो इनके इंचार्ज हैं, उन्होंने भी आज बच्चों से अपने विचार साझा किए हैं ताकि उनको गाइड कर सकें कि कैसे एक ड्रग के मैनेज से बचा जाए और कैसे आज डिजिटल एज में अपने आप को साइबर थ्रेट से सेफ रखा जाए।
0: चंबा जिला के भरमौर उपमंडल की होली तहसील में लामू हिलिंग मार्ग पर हिलिंग नाले के समीप कल देर रात एक वाहन के अनियंत्रित होकर गिरने से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान सुरेश कुमार और संजय कुमार के रूप में हो गई है और ये दोनों हिलिंग के ही रहने वाले थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:00 PM। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं सामयिक चर्चा। आज का विषय है ODF से सतत स्वच्छता की ओर, ग्रामीण स्वच्छता का नया अध्याय लिख रहा हिमाचल प्रदेश। वाचक स्वर राकेश शर्मा का है।

0: खुले में शौच मुक्त होना स्वस्थ, स्वच्छ और सम्मानजनक समाज की आधारशिला है। स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए हिमाचल प्रदेश पहले ही खुले में शौच मुक्त ODF राज्य का दर्जा प्राप्त कर चुका है। अब राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। राज्य सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि स्वच्छता के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियां दीर्घकाल तक कायम रहें और उन्हें वैज्ञानिक तथा पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि राज्य में वैज्ञानिक फीकल स्लज मैनेजमेंट पहल को व्यापक स्तर पर लागू किया जा रहा है। ये महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रदेश के लगभग 7000 गांवों को लाभान्वित करेगा और सेप्टिक टैंकों और एकल गड्ढा शौचालयों से निकलने वाले मल अपशिष्ट का सुरक्षित संग्रहण, परिवहन, उपचार और निस्तारण सुनिश्चित करेगा। पिछले वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण और उपयोग को बढ़ावा देने में हिमाचल प्रदेश ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। अधिकांश ग्रामीण परिवारों तक शौचालय सुविधाएं पहुंच चुकी है। हालांकि स्वच्छता केवल शौचालय निर्माण तक सीमित नहीं है, समय समय पर सेप्टिक टैंकों और गड्ढों की सफाई तथा उनमें जमा होने वाले फीकल स्लज का सुरक्षित प्रबंधन भी उतना ही आवश्यक है। यदि इस अपशिष्ट का वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण ना किया जाए तो ये जल स्रोतों, कृषि भूमि और पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों को प्रदूषित कर सकता है। इससे डायरिया, हैजा और टाइफाइड जैसे जल जनित बीमारियों का खतरा बढ़ने के साथ साथ पेयजल की गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है। पर्वतीय प्रदेश हिमाचल में प्राकृतिक जल स्रोतों, झरनों, खड्डों और नदियों का संरक्षण बेहद महत्वपूर्ण है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग और जल शक्ति विभाग के माध्यम से एक अभिनव एवं व्यवहारिक मॉडल अपनाया है। राज्य सरकार ने अलग अलग फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने की बजाय सह उपचार को ट्रीटमेंट मॉडल को अपनाया है। इस मॉडल के अंतर्गत मौजूदा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का उपयोग फीकल स्लज के वैज्ञानिक उपचार के लिए किया जाएगा। यह व्यवस्था हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्यों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है, जहां सीमित भूमि, दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां और व्यापक वन क्षेत्र बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समक्ष चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं। मौजूदा सुविधाओं का उपयोग करके राज्य सरकार संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित कर रही है, जिससे लागत में कमी आने के साथ पर्यावरणीय प्रभाव भी न्यूनतम होगा। को ट्रीटमेंट मॉडल के अंतर्गत चयनित STP में आवश्यक आधारभूत ढांचा विकसित किया जा रहा है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों से एकत्रित फीकल स्लज का वैज्ञानिक उपचार नगरों के सीवरेज के साथ किया जाएगा। इससे अलग उपचार संयंत्रों की आवश्यकता नहीं होगी और अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण सुनिश्चित होगा। परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर एक अनुमोदन समिति का गठन किया गया है, जो उपचार क्षमता, अपशिष्ट उत्पादन के अनुमान और तकनीकी व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के बाद परियोजनाओं को स्वीकृत करेगी। अब तक प्रदेश में 30 को ट्रीटमेंट परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। राज्य सरकार ने इस महत्वाकांक्षी पहल के लिए जल शक्ति विभाग को लगभग 15 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। ग्रामीण विकास विभाग और जल शक्ति विभाग के बीच हुए समझौता ज्ञापन ने विभागीय समन्वय को और मजबूत बनाया है और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई है। पालमपुर और सुंदरनगर में मौजूदा STP के साथ को ट्रीटमेंट सुविधाओं के निर्माण कार्य शुरू हो चुके हैं और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को इसका लाभ मिलना भी प्रारंभ हो गया है। ये दर्शाता है कि सरकार की योजनाएं धरातल पर प्रभावी रूप से साकार हो रही हैं। ये पहल हिमाचल प्रदेश की स्वच्छता यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। अब ध्यान केवल शौचालय निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण स्वच्छता श्रृंखला के सुरक्षित और सतत प्रबंधन पर केंद्रित किया जा रहा है। इससे ODF उपलब्धि को स्थायी बनाए रखने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और जन स्वास्थ्य को भी नई मजबूती मिलेगी। राज्य सरकार ने 31 मार्च 2027 तक सभी स्वीकृत को ट्रीटमेंट परियोजनाओं को संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके पूर्ण होने के बाद हजारों गांवों को वैज्ञानिक फीकल स्लज प्रबंधन सेवाएं उपलब्ध होगी, जिससे जल स्रोतों का संरक्षण, ग्रामीण स्वच्छता में सुधार और पर्यावरणीय संतुलन को सुदृढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही ये सामयिक चर्चा संपन्न हुई। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

0: उनके परिवार में सभी महिलाओं को कृषि कार्य करना अनिवार्य था।
1: और देवकी अम्मा 1980 तक अपनी सास के साथ धान की खेती में सहयोग करती रहीं। जब उनके पैर में चोट लग गई और उन्हें चलने फिरने से मना कर दिया गया, उसके 3 साल बाद उन्होंने अपने घर के पीछे एक पौधा लगाया और इस तरह उनकी बागवानी की शुरुआत हुई।
0: बिल्कुल। और केरल के अलप्पुझा जिले में उनके घर के आंगन में उन्होंने थोड़े ही समय में एक हरा भरा जंगल उगा लिया था। देवकी अम्मा याद करते हुए कहती हैं कि मैं पहले धान की खेती बड़े चाव से करती थी, लेकिन दुर्घटना के बाद मैं लगभग 3 साल तक बिस्तर पर पड़ी रही और मुझे धान की खेती छोड़नी पड़ी, लेकिन इससे मुझे एक और महत्वपूर्ण काम करने का मौका मिला।
1: परिवार के सदस्यों की मदद से मैंने 35 साल पहले पौधे लगाना शुरू किया था। तब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये जगह जो है वो जंगल बन जाएगी। उनके पति और परिवार ने उनका मनोबल बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। उनके पति हर दिन उनके लिए बीज और पौधे लाते थे। आज भी उनके परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और दोस्त उन्हें नियमित रूप से पौधे और बीज भेंट करते हैं।
0: बहुत बहुत ही अच्छी बात है। एक इतनी अच्छी चीज़ की शुरुआत करी है ना, कि बीज और पौधे देना मतलब कि आप पूरी प्रकृति को सुरक्षा दे रहे हैं, दे रहे हैं। और देवकी अम्मा कहती हैं कि वन संरक्षण में मुझे अपने बच्चों, पोते पोतियों और उनके बच्चों से भरपूर सहयोग मिलता है और वो इसमें बड़ा योगदान देते हैं और वन की सर्वोत्तम तरीके से रक्षा करना चाहते हैं। उनकी पोते पोती छुट्टियों के दौरान उनसे मिलने आते हैं और उनके इस नेक काम में पूरे उत्साह से उनकी मदद करते हैं। उनसे प्रेरित होकर उनकी एक पोती ने पढ़ाई के लिए वनस्पति विज्ञान को चुना ताकि देवकी अम्मा के इस नेक काम में वो योगदान दे सकें।
1: और उनकी बेटी प्रोफेसर डी थैंकमणि, जो तिरुवनंतपुरम इंजीनियरिंग कॉलेज में पर्यावरण विभाग में प्रमुख हैं, कहती हैं 4 पीढ़ियों ने मेरी माँ के वृक्षारोपण के इस सफ़र में अपना योगदान दिया। स्कूल की छुट्टियों के दौरान अम्मा की पोती पोते और उनके बच्चे पुराने पौधों की स्थिति देखने और नए पौधों को लगाने के लिए घर आते थे। और वो कहती हैं कि वृक्षारोपण को लेकर जो उत्साह और उमंग होती है वो किसी त्यौहार जैसी होती है। पर्यावरण संरक्षण को अपना लक्ष्य मानते हुए देवकी अम्मा पेड़ पौधों को उगाने और उनकी देखभाल करने के लिए केवल हरी जैविक खाद का ही उपयोग करती हैं। उनके इस जंगल में सागौन, महोगनी, इमली, आम, चीड़, बांस और उनके जैसे तमाम, करीब गिनती नहीं कर सकते लेकिन अधिक से 3000 से भी अधिक वृक्ष वहाँ पर हैं।
0: बिल्कुल। और लक्ष्मी थारू, चीनी संतरा जैसे कुछ दुर्लभ पौधे भी पाए जाते हैं। प्रचुर मात्रा में फल, सब्जियाँ और फूल देने वाले 200 विभिन्न प्रकार के वृक्षों और झाड़ियों के अलावा इस जंगल में तालाब, एक आर्द्र भूमि और गाय, भैंस, बैल जैसे पशु भी हैं। और देवकी अम्मा अपने काम पर गर्व करते हुए कहती हैं, पक्षियों और जानवरों को जाल लगाकर प्रतिबंधित करने के बजाय मैंने उनके लिए पानी और घोंसले की व्यवस्था की है।
1: परिणाम स्वरूप हम जंगल में मोर, बंदर और अमूर बाज, नील गाय, काला पंख वाला स्टिल्ट और पन्ना कबूतर जैसे विदेशी पक्षी भी देख सकते हैं। पर्यावरण के क्षरण को रोकने और प्रदूषण को कम करने के लिए वो कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की आवश्यकता पर जोर देती हैं और कहती हैं पेड़ लगाना सबसे प्रभावी और व्यवहारिक विकल्प है।
0: बिल्कुल। उनका कहना है, हमारा परिवार पिछले 4 दशकों से पेड़ लगाकर कार्बन फुटप्रिंट को कम कर रहा है। उन्होंने जल समस्याओं से निपटने के लिए वर्षा जल संचयन की सुविधा भी उपलब्ध कराई है और अब ये वन एक शैक्षिक और पर्यटन स्थल बन गया है। बड़ी संख्या में वनस्पति विज्ञानी, पर्यटक, शोधकर्ता, छात्र देवकी अम्मा से सामाजिक वानिकी के बारे में जानने के लिए यहाँ पर आते हैं
1: और देवकी अम्मा उन्हें विभिन्न वृक्षों के बारे में बताती हैं, उन्हें उनके महत्व को समझाती हैं और सतत उपयोग एवं विकास के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के तरीके बताती हैं। अनुरोध करने पर देवकी अम्मा जरूरतमंदों को पौधे भी उपलब्ध कराती हैं। उम्र के कारण अब वो नए पेड़ नहीं लगा सकती हैं और ना ही जंगल की देखभाल कर सकती हैं।
0: बिल्कुल। और लेकिन पेड़ों से जुड़ाव बनाए रखने के लिए वो नियमित रूप से टहलने ज़रूर जाती हैं। उनकी बेटी थैंकमणि कहती हैं, 5 एकड़ ज़मीन की देखभाल करना आसान काम नहीं है, लेकिन हर सुबह वो 5 मिनट के लिए ही सही टहलने ज़रूर जाती हैं। चूँकि वो बहुत कम ही पौधे लगा पाती हैं, इसलिए वो पेड़ों से बातें करती हैं। इस तरह उन्हें जंगल की उपेक्षा का एहसास नहीं होता।
1: और देवकी अम्मा को उनके समर्पण और अथक परिश्रम के लिए अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। सरकार द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार और नारी शक्ति पुरस्कार, उन्हें राज्य सरकार द्वारा भी कई पुरस्कार प्राप्त हैं, जैसे वन मित्र पुरस्कार, हरि व्यक्ति पुरस्कार और स्वदेशी विज्ञान पुरस्कार, भूमित्र पुरस्कार और साथ ही अलापुझा जिले का सामाजिक वानिकी पुरस्कार भी उनको प्राप्त हुआ है।
0: और पर्यावरण के प्रति उनके 4 दशकों के समर्पित योगदान को मान्यता देते हुए बेटर इंडिया ने 2019 में उन्हें हम सभी को बचाने वाले 10 नायकों में से एक के रूप में भी शामिल किया था। और अब 2026 में देवकी अम्मा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
1: देखो क्या कितनी अच्छी सी उन्होंने ये चीज़ करी कि पौधे लगाने शुरू किए। और उनकी इस कहानी से हम सभी को भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी आसपास की जगहों को हरा भरा रखें, पेड़ पौधे लगाएं, जिससे कि हमारा जो गांव है, हमारा घर है, शहर है, उसके आसपास का सभी वातावरण बहुत खूबसूरत
0: और ये
1: हो
0: देख के भी अच्छा लगेगा ना कि कितना रचनात्मक कार्य हमने किया है कि देखो जो बीज बोए थे, जो छोटे छोटे से पौधे लगाए थे, वो कितने बड़े पेड़ बन गए।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। तो चलो एक गीत सुनते फिर आगे बढ़ते हैं।

0: मंजरी डोर से तो प्यार की बंध जाते हैं ना,
1: बिल्कुल बंध जाते हैं, क्योंकि प्यार चीज़ ऐसी है कि वो हर को अपने आप में बांध लेता है, और जब जहाँ पर पेड़ पौधों से प्यार होता है तो उसका अलग ही, उसकी अलग ही बात होती है, और जो हमारी जो कलाएं होती हैं उनका भी एक अलग रंग होता है,
0: बिल्कुल,
1: है
0: ना। और जो हमारी परंपरागत जो कलाएं थी ना, वो आज थोड़ी बहुत ऐसे हो रहा है ना कि लुप्त सी होती जा रही है, कुछ कलाएं ऐसी हैं जो लुप्त सी होती जा रही हैं, और उनको सहेजना बहुत ज़रूरी है,
1: बिल्कुल,
0: जिससे कि हमारी जो पहचान है वो बनी रहे।
1: बिल्कुल,
0: तो आज हम बात कर रहे हैं ऐसी ही कुछ कलाओं की जो लुप्त हो रही हैं, और पूरी दुनिया से हमारा देश अलग ही इसीलिए है क्योंकि ये जो है वो विविध तरीके की संस्कृतियों और समृद्ध परंपराओं का देश माना जाता है, और इस सांस्कृतिक ताने बाने के केंद्र में हमारी समृद्ध लोक कला

0: और इसी के साथ ही कश्मीर की जटिल लकड़ी की नक्काशी से लेकर बंगाल और उड़ीसा के जीवंत पट्टा चित्र कला, हर एक कला के रूप में अपने साथ सदियों का एक इतिहास है, उनका परंपरा और कहानी अपने अंदर समेटे हुए हैं। फिर भी जैसे जैसे शहरीकरण फैलता जा रहा है, हमारी सदियों पुरानी विरासत और उनके जीवन के पारंपरिक तरीके लुप्त होते जा रहे हैं। और जैसे कि पट्टाचित्र, जो कि उड़ीसा की एक लोक कला है जिसमें कपड़े या कैनवास पर जटिल डिज़ाइन बनाए जाते हैं, इन चित्रों के विषय अक्सर पौराणिक कथाओं से प्रेरित होते हैं और रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाते हैं। पट्टाचित्र चित्रों की जो अनूठी विशेषता होती है, और इनमें पौधों और खनिजों से बने प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है जिससे ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं।
1: बिल्कुल, ये पर्यावरण को देखो, जो परंपरा आगे तुम्हारी जो कलाएं थी पर्यावरण के अनुकूल हुआ करती थी, लेकिन संरक्षण की कमी और घटती मांग के कारण ये कला विलुप्त होने के कगार पर है। और बिदरी वेयर, जो कि एक धातु शिल्प है जिसकी उत्पत्ति कर्नाटक के बीदर में हुई थी, इससे इसमें क्या होता है कि जस्ता और तांबा के काले मिश्र धातु पर चांदी या पीतल के तार जड़े जाते हैं और जटिल डिज़ाइन और पैटर्न तेज छेनी की सहायता से धातु पर उकेरे जाते हैं। बिदरी वेयर का उपयोग परंपरागत रूप से बर्तन, आभूषण और सजावटी सामान बनाने में किया जाता था। हालांकि श्रम साध्य प्रक्रिया और कच्चे माल की उच्च लागत के कारण ये शिल्प भी अब कुछ ही कारीगरों द्वारा किया जाता है।
0: और इसके साथ ही सुजनी, जो कि बिहार की एक कढ़ाई कला है जिसमें सूती कपड़े पर रंगीन धागों से ज्यामितीय पैटर्न बनाए जाते हैं, ये शिल्प परंपरागत रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता था और रजाई और चादरों को सजाने का एक तरीका था। हालांकि सस्ती मशीनी कपड़ों की उपलब्धता के कारण सुजनी कढ़ाई की मांग में गिरावट आई है। इसके अलावा धोकरा कला, जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में उत्पन्न धातु ढलाई की एक कला है, इसमें मोम ढलाई तकनीक का उपयोग करके जटिल डिजाइन और पैटर्न बनाए जाते हैं।
1: बिल्कुल, इसके साथ में हम धोकरा कला अपनी अनूठी शैली के लिए भी जानी जाती है और इसका उपयोग होता है अक्सर मूर्तियां और सजावटी वस्तुओं को बनाने में। और कठपुतली कला, जो कि राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला है जो आज भी कहीं कहीं होती है, तो जो कभी गांव-गांव के लोगों का मनोरंजन करती थी, कठपुतली के माध्यम से लोक कथाएं, वीर गाथाएं और सामाजिक संदेश प्रस्तुत किए जाते थे। लेकिन आज क्या है कि मोबाइल और डिजिटल मनोरंजन के दौर में ये कला भी कहीं ना कहीं खोती जा रही है।
0: बिल्कुल, और इसी प्रकार बहुरूपिया कला भी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। आरती, कलाकार विभिन्न पात्रों का रूप धारण कर लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ सामाजिक संदेश भी देते थे। लोक नाट्य की कई विधाएं भी आज संकट में है। महाराष्ट्र की तमाशा, उत्तर प्रदेश की नौटंकी, कर्नाटक का यक्षगान, बंगाल की यात्रा, उत्तराखंड की पांडवानी जैसी अनेक प्रस्तुतियां कभी जनजीवन का अभिन्न हिस्सा हुआ करती थी, आज इनके दर्शक और कलाकार दोनों घटते जा रहे हैं।
1: बिल्कुल, और हम बात करें तो इसके अलावा पिंजराकारी, जो कि कश्मीर की एक अत्यंत प्राचीन और दुर्लभ हस्तकला है जिसमें देवदार जैसी मजबूत जो लकड़ी होती थी उस पर बिना कीलों या धातु के सहारे, सोचिए, अत्यंत बारीक जालीदार डिज़ाइन तैयार किया जाता है। ये कला मुख्यतः खिड़कियों, दरवाज़ों, रोशनदानों, बालकनियों और धार्मिक और ऐतिहासिक इमारतों की सजावट में प्रयोग की जाती रही है।
0: और इसकी विशेषता यह है कि ये लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को इतनी कुशलता से जोड़ा जाता है कि उनसे सुंदर ज्यामितीय आकृतियां बन जाती हैं। लेकिन बढ़ती लागत, सीमित बाजार और नई पीढ़ी की घटती रुचि के कारण पिंजराकारी और पारंपरिक लकड़ी की नक्काशी आज संकट का सामना कर रही है। पिंजराकारी और कश्मीरी नक्काशी केवल हस्तकला नहीं बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान, धैर्य, सृजनशीलता और शिल्प कौशल का जीवंत प्रतीक है। आर्थिक कलाएं तो इतनी सारी हैं कि एक उसमें समेटना बहुत ही मुश्किल होता है।
1: तो बिल्कुल इसकी तैयारी करेंगे कि हम अगली बार और कलाओं को लेकर आएं जो लुप्त होती जा रही हैं। तो ये जो पिंजराकारी जो कला है सच में बहुत ही ज़्यादा जटिल होती है। तो इस तरह की जो कलाएं होती हैं जटिल तो होती ही हैं डिज़ाइन और पैटर्न से, लेकिन इनको हम फिर भी करते हैं तो इनको सहेजना ज़रूरी है।
0: बिल्कुल, और इसके साथ साथ हम गीतों को भी सुन लेते हैं।

0: तो आरती देखो, कितना प्यारा सा ये गीत हम लोग ने सुना, और जो हमारी लोक कलाएं हैं उसके बारे में क्या संदेश लिखा हुआ है?
1: बहुत से संदेश आए हैं। तो एक हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि भारत की लुप्त होती पारंपरिक कलाएं हमारी प्राचीन संस्कृति, इतिहास और जीवन शैली का अनमोल हिस्सा हैं, जो आधुनिकता और मशीनी युग के प्रभाव से धीरे धीरे गायब हो रही हैं। इनमें मुख्य रूप से कठपुतली कला है और सिक्की घास की कला और आला गायन शामिल हैं।
0: और देखो, बातें करते करते समय हो चला है एक अंतराल का, तो लेते हैं एक अंतराल, और छोटे से अंतराल के बाद फिर हम लोग सखी सहेली कार्यक्रम में हाजिर हो जाएंगे।
1: बिल्कुल।

0: अंतराल के बाद सखी सहेली कार्यक्रम में फिर सभी का करते हैं स्वागत। तो आरती बताओ, कौन सा संदेश तुम लेकर पढ़ने वाली हो?
1: बिल्कुल, एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि चिट्ठियों का जमाना भी गजब था, जब बहुत ही सुंदर लिखाई से चिट्ठी के बारे में बात कर रहे हैं उन्होंने, और चिट्ठियों की इतना बढ़िया उन्होंने लिखा था कि हमने सोचा कि पहले इन्हीं ले लेते हैं सीखो, फिर हम कलाओं की बात करेंगे। तो चिट्ठियों का जमाना भी गजब था, जब बहुत ही सुंदर लिखाई से मन के जज्बात जो थे वो कागज पर उकेर दिए जाते थे। डाकिया जब घर के सामने घंटी बजाते हुए निकलते थे तो दौड़कर दरवाजे पर आ जाते थे कि शायद हमारी भी कोई चिट्ठी हो। रक्षाबंधन पर भाई को लिफाफे में रख कर सुंदर राखियां, कुमकुम, अक्षत भी भेजे जाते थे। फिर जब जब जवाब आता था तो उस चिट्ठी को भी बार बार पढ़ते थे और बहुत संभाल कर रखते थे। ऐसे कितने ही पत्र हैं जिन्हें आज भी किसी की यादगार के तौर पर संभाल कर रखा है।
0: और देखो,
1: तो
0: हमारे
1: प्यारा सा था ना कि रुका ही नहीं गया।
0: देखो, हमारे साथी लिखते हैं, आरती, पारंपरिक कलाएं हमारी संस्कृति, इतिहास और लोक जीवन की अमूल्य धरोहर हैं, और लोकगीत, लोक नृत्य, हस्तशिल्प, मिट्टी के बर्तन, बुनाई, कठपुतली, चित्रकला और कई अन्य कलाएं हमारी पहचान को जीवंत बनाए रखती हैं। लेकिन आधुनिक जीवन शैली, मशीनों के बढ़ते उपयोग और बदलती रुचियों के कारण ये पारंपरिक कलाएं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। अनेक कलाकारों को उचित सम्मान और आर्थिक सहयोग नहीं मिल पाने से नई पीढ़ी भी इन कलाओं से दूर होती जा रही है। यदि समय रहते इनका संरक्षण, प्रचार प्रसार और कलाकारों को प्रोत्साहन दिया जाए तो हमारी सांस्कृतिक विरासत आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सकती है। पारंपरिक कलाओं को बचाना केवल कलाकारों की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। बहुत सही बात आपने लिखी है, और हमें अपनी कलाओं को बचाने का प्रयास पूरा पूरा करना चाहिए।
1: बिल्कुल, बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारी जो पीढ़ी आ रही है उसको भी पता चलना चाहिए कि क्या क्या कलाएं थी हमारे यहाँ। तो एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि लुप्त होती जो पारंपरिक कलाएं हैं, ये विषय बहुत ही अच्छा लगा। आजकल हमारी जो पारंपरिक कला है, जैसे कि लोग थे, लोक संगीत का, ये बहुत ही सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता था, वो भी कम हो गया है। नुक्कड़ नाटक भी हुआ करते थे, वो भी अब कम हो गए हैं। अब सोशल मीडिया का ज़माना है तो लोग इन सब जो पारंपरिक कलाएं हैं उनको देखना ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं, तो सुनना ही पसंद नहीं करते। लेकिन मुझे लगता है कि हमें उन सब चीज़ों की वापस जाना चाहिए जो इस पारंपरिक कला के द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए हमें। और ऐसे ही हम उनको कर सकते हैं, जब हम जो पारंपरिक कलाएं हैं उनको जीवित रखें तभी हम उनकी सहायता कर सकते हैं इस तरह से।
0: बिल्कुल, और लुप्त होती है पारंपरिक कलाएं के बारे में लिखते हैं हमारे साथी, भारत अपने समृद्ध कलाकारों का एक महत्वपूर्ण देश रहा था और रहा है भी, और अब वो भी है। भले ही पूजा स्थलों पर उकेरी गई कला को अब उतने तन्मयता से हम आज के इस मोबाइल युग में नहीं उकेर रहे हैं, किंतु समय के साथ लुप्त हुई कलाओं की तरफ अग्रसर तो हम हो ही रहे हैं, जिसके फलस्वरूप भी विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन जैसे कार्यक्रमों के जरिए अपने विभिन्न कलाओं को प्रदर्शित करने में आगे आते हुए विभिन्न प्लेटफार्मों पर प्रदर्शित भी कर रहे हैं, किंतु अभी भी बहुतेरी कलाएँ लुप्त प्राय ही हैं, और उस तरफ भी हमें अग्रसर होते रहना चाहिए, क्योंकि अभी हम अपने रोजी रोटी के लिए ही इनके वर्णन कर रहे हैं, जबकि इन कलाओं का क्षेत्र बहुत ही व्यापक और बहुत ही विशाल है। और कहना चाहिए कि आपके अंदर जो भी कला है आपको आती है, या आपके परिवार में किसी बुजुर्ग को जो कलाएं आती हैं, तो उनको सबको सिखाना शुरू करें, और सीखने की एक ललक भी होनी चाहिए, तभी आप सीख सकते हैं, तो आप कला को बहुत आगे तक जीवंत रख सकते हैं।
1: क्योंकि जो ये कलाएं हैं ना, ये हमारे देश की पहचान है, इनको हमें सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। तो अब हम एक गीत सुनें।

0: जब
1: जब
0: जब तुम मेरे सामने आए, लेकिन
1: जब जब ये चिट्ठियों के हाँ। संदेश मेरे सामने आए तो बिल्कुल मन पे संयम रहता ही नहीं है।
0: और जब जब चिट्ठियां घर में आती हैं तो उनको लेने के लिए उनको कि आज हम सबसे ज्यादा चिट्ठी उठा ले, हम पढ़ेंगे, तो उसका एक अलग ही मजा आता है,
1: बिल्कुल,
0: है ना। तो हमारे साथी क्या लिखते हैं इसके बारे में?
1: साथी लिखते हैं, चिट्ठियों का वो जमाना भी क्या खूबसूरत था, कागज पर लिखे हर शब्द में दिल की धड़कन बसती थी, डाकिये की आहट सुनते ही उम्मीदें दरवाजे तक दौड़ जाती थी, स्याही से लिखे अल्फाज बरसों तक यादों की खुशबू महकाते रहते थे, ना कोई जल्दबाजी थी, ना एक पल में जवाब पाने की चाह, बस इंतजार था, अपनापन था और रिश्तों की सच्ची गर्माहट थी। आज संदेश पल भर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन हाथों से लिखी चिट्ठियों जैसा एहसास, अपनापन और भावनाओं की गहराई आज भी बेमिसाल है।
0: क्या बात है, और बहुत लोगों ने चिट्ठियां संभाल कर भी रखी होंगी आरती। और हमारे साथी लिखते हैं कि मुझे भी कुछ कहना है, जो मजा खत यानी चिट्ठियों के इंतजार में हुआ करता था, अब वो कहाँ, चाहे वो माता पिता हो या पति पत्नी या हो भाई बहन, अब मोबाइल टेक्नोलॉजी के आने से सब छिन गया है। और वाकई में सही बात है, चिट्ठियां

0: इतना लोगों का कम हो गया है। और एक साथी लिखते हैं कि आज विषय वस्तु अच्छे हैं, खासकर चिट्ठियों का जमाना। उंगलियों के कुछ स्पर्श से मीलों दूर बैठे व्यक्ति का संदेश पलक झपकते ही पहुंच जाता। आज का संचार माध्यम के तीव्र शोर के बीच कहीं पीछे छूट गया है वो शांत, धैर्यवान और आत्मीय चिट्ठियों का जमाना। वो एक ऐसा दौर था जब संदेश सिर्फ सूचना नहीं बल्कि हृदय की धड़कन और भावनाओं का सजीव दस्तावेज हुआ करते थे। डाकिया जब खाकी झोला टांगे गली में आता था तो ऐसा लगता था जैसे पूरे मोहल्ले की उम्मीदें और खुशियां उसके साथ चल रही हों। चिट्ठी का आना एक उत्सव होता था। डाकिया सिर्फ कागज़ का पुर्जा नहीं लाता था, वो दूर देश से सहेज कर भेजी गई अपनों की सांसें और सिसकियां लेकर आता था। कागज़ का चुनाव स्याही का रंग और कलम की बनावट में लिखने वाले का व्यक्तित्व झलकता था। चिट्ठियों में एक अद्भुत इंतज़ार का सौंदर्य था। संभाल कर रखी गई वे पीली पड़ चुकी चिट्ठियां आज भी जब खुलती हैं तो गुजरे जमाने की खुशबू पूरे कमरे में बिखेर देती है। क्या बात है,
1: बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। और एक और साथी हैं जो लिखते हैं कि चिट्ठियों के जमाने का मेरा अनुभव जीरो है, मैंने आज तक कभी किसी को चिट्ठी नहीं लिखी, जबकि मेरे पापा पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर थे, उसके बावजूद कभी मौका नहीं आया क्योंकि हमारे जमाने में लैंडलाइन फोन हुआ करते थे। अरे फिर भी आपको लिखना चाहिए था ना।
0: और हमारे साथी लिखते हैं आरती कि चिट्ठियां या पत्र सबसे पहले स्कूल में सिखाया जाता था, उसके बाद हम लोग घर में अपने से बड़ों को देख कर सीखते हैं कि क्या क्या लिखना है। मैंने भी अपने बड़ों से सीखा है। मेरे बड़े भाई बड़े बहुत बढ़िया चिट्ठी लिखा करते थे, सुंदर सुंदर लिफाफे आदि थे और खूबसूरत खूबसूरत लेटर पैड भी ले लेते थे। जब मैं बड़ा हो गया, किसके पत्र लिखने लगा तो मैं भी सुंदर सुंदर लिफाफे लाता था और सुंदर सुंदर लेटर पैड। मैंने शुरू में कभी लिखा हुआ नहीं तो मतलब उन्होंने शुरू किया था, हमेशा खूबसूरत लिफाफा खूबसूरत लेटर पैड लिया करता था और अच्छी सुगंध लेटर में तो खूबसूरत पाउडर भी डाल दिया करता था, महकता हुआ यानी कि पाउडर डाल दिया करता था। इन्होंने खूबसूरत लिखा है तो बाद में तरीके से साफ भी कर दिया जाता था, कभी कभी सुगंध के लिए करता था और कभी कभी उसमें इतर भी डाल दिया करता था।
1: चिट्ठी जिस तक भी पहुँचती होगी, वाह क्या बात है। और एक और साथी जो लिखते हैं कि वो भी क्या दौर था, और उस समय जब कहते हैं कि लिफाफे में गुलाब की सूखी गुलाब की पत्तियां, तो कभी चिट्ठियों में हाल चाल के साथ कुछ शायरियां भी लिखी होती थी। एक ही चिट्ठी को ना जाने कितनी बार पढ़ा जाता था। उन हाथों से लिखी चिट्ठियों में आत्मीयता भी होती थी और स्याही की सौंधी जो महक होती थी उसमें अपनापन भी होता था। आज भी जब कभी फुर्सत में पुरानी चिट्ठियों को पढ़ती हूँ चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आँखें भीग जाती हैं।
0: क्या बात है। और इसके साथ ही हमारे एक साथी लिखते हैं उस जमाने में चिट्ठी सिर्फ कागज़ ही नहीं पूरा परिवार हुआ करती थी। पिताजी का प्रेम, माँ की ममता और बहन का प्यार उसमें घुला होता था। बेटा समय से खा लेना, तबीयत का ध्यान रखना, बहन की खुशी राखी और गुलाब की पंखुड़ी के साथ आती, भैया त्यौहार पर आ जाना, पड़ोस की खबर, खेत की फसल, गांव का मेला, सब उसी दो पन्नों में समा जाता। चिट्ठी आने में महीना लग जाता था, इसलिए हर शब्द तौल कर लिखा जाता था। डाके की घंटी बजते ही घर में हलचल मच जाती। खत को पहले बड़े पढ़ते फिर सबको सुनाते। एक चिट्ठी महीनों का इंतज़ार और सुकून हुआ करती थी। मैंने अपने पिताजी को बहुत पत्र लिखे क्योंकि सर्विस के चलते वो बाहर रहते थे। उनके लिखे पत्र आज भी मेरे पास सुरक्षित हैं। आज मोबाइल में तुरंत सब कुछ मिल जाता है, पर उस कागज़ में जो परिवार बसता था, जो दर्द और दुआ होती थी, वो अब मोबाइल की स्क्रीन में कहीं खो गई है। वाकई सही बात है, उस ज़माने में जो चिट्ठी का मज़ा था वो अलग ही था। लेकिन आज भी कोशिश कीजिए कि अपनों को आप चिट्ठी लिखिए, क्यों व्हाट्सएप पे भेज दें।
1: बिल्कुल। अब एक साथी हैं जो लिखते हैं कि चिट्ठियों का ज़माना बहुत ही अच्छा था, जब भी मन हो निकाल लो और पढ़कर खुश हो जाओ। मैंने तो ढेर सारी चिट्ठियाँ अभी भी संभाल कर रखी हुई हैं और जब मन होता है निकाल कर पढ़ लेती हूँ। रिश्तेदारों के जो उनके जो खत आते थे, चिट्ठियाँ होती थी है ना, वो जो अपनी सहेलियों को लिखती थी, तो जबकि वो इस शहर में थी, पर जब भी कॉलेज बंद होता तो उसे भी चिट्ठी लिखती थी। मेरे पापा जी बोलते थे कि जितनी देर में चिट्ठी मिलेगी उससे जल्दी तो तुम उसके घर पहुंच जाओगी, घर में मिल लोगी जाके।
0: चलो फिर इसी बात पर एक गीत सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो आरती देखो कितनी सारी हम लोग की बातें हैं, है ना।
3: और हमारे जो साथी हैं वो लिखते जा रहे हैं। तो एक हमारे साथी हैं लिखती हैं कि चिट्ठी लिखना, अपने मन की भावना अपनों तक पहुंचाना बड़ी पुरानी परंपरा है। और पुराण कथा में विरह व्याकुल दमयंती ने अपनी पीड़ा कमल पत्र पर लिखी थी और राजहंस के साथ अपने प्रियतम नल राजा के पास पहुँचाई थी। पौराणिक ऐतिहासिक काल में भोजपत्र और ताड़पत्र, ताम्रपट या कपड़े पर संदेश लिखकर भेजे जाते थे। बाद में कागज़, कलम, स्याही वाले चिट्ठियों का सुहाना जमाना आ गया। चिट्ठी में प्यार, भाव, भावनाएं, मूर्त अमूर्त कल्पनाएं, सुंदर सुहाने सपने, सब कुछ साकार होता है। और साथ ही साथ अपनी प्रिय व्यक्ति का हस्ताक्षर, उसकी लिखाई से स्पर्श का व्यक्ति की अस्तित्व का एहसास भी मिल जाता है। संजोई ही चिट्ठियां जब भी चाहें हम देख सकते हैं। चिट्ठी का इंतजार, बेचैनी, रंग रूप, रस गंध, ये सारी बातें आज की डिजिटल चैट, ई और इन सब चीज़ों में कहाँ मिलती हैं।
2: और हमारे साथी एक लिखते हैं कि पहले चिट्ठियों को एक नुकीली तारनुमा जिसमें आधार में गोल लकड़ी रहता थी, उसमें घोप कर सुरक्षित रखा जाता था। 4 महीने पहले गांव में मुझे 1978 को पिताजी को मेरा लिखा स्याही वाला अंतर्देशी मिला। अब पिताजी तो नहीं, मगर उस चिट्ठी को संभाल कर रखा है इन्होंने। और लिखते हैं कि चिट्ठियों का ज़माना भावनाओं, सब्र और एक ख़ास अपनापन का दौर था। लोग पोस्टकार्ड, अंतर्देशी, पत्र पर लिफाफों का इंतज़ार करते थे।

0: बिल्कुल। और एक हमारे साथी जो लिखती हैं कि कभी एक वक्त था जब चिट्ठियां रिश्तों की सबसे प्यारी आवाज़ हुआ करती थी, हर शब्द सोच समझ कर लिखा जाता था और हर पन्ने में अपनेपन की गर्माहट बसती थी। शायद यही वजह है कि आज भी पुरानी चिट्ठियां हाथ में आते ही बीता हुआ समय फिर से मुस्कुरा उठता है। पहले चिट्ठियां सिर्फ खबरें नहीं लाती थीं, वो दूरियों को भी थोड़ा कम कर देती थीं। कागज़ पर लिखे शब्दों में धड़कनों की सच्चाई होती थी और स्याही में अपनेपन का रंग। आज संदेश पल भर में पहुंच जाते हैं लेकिन वो इंतज़ार, वो मिठास बिल्कुल छूट जाती है। तो पुरानी चिट्ठियों की सबसे खास बात यही है कि उन्हें पढ़ने के बाद उन्हें फेंक नहीं सकते हम। वो किताबों में, संदूकों में, यादों में बरसों तक संभाल कर रखी जाती थी क्योंकि वो कागज के टुकड़े नहीं, किसी के अपने दिल से निकले हुए शब्द हुआ करते थे।
1: चलो एक गीत सुन।

तो आरती, बारिश के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं कि बारिश जब आ जाती है तो सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और घर में कैसे रखें सफाई? तो इसके लिए देखो, घर के जो पावदान हैं उनको आप नियमित धोएं, गीले हो तो हटाएं, और जो बाहर पहन जाने वाली चप्पलें होती हैं उनको बाहर रखें, घर में अलग चप्पलों का यूज़ करें, और घर में कहीं भी अगर आपको टूट फूट लग रही है या छत पर भी टूट फूट लग रही है, तो नालियों में कुछ कचरा फंसा है तो वहाँ पर भी आप ध्यान दें कि उसकी सफाई नियमित करते रहें, और घर की दीवार जो होती है वो कहीं चूना पपड़ी कहीं टूट फूट दिख रही है तो उसको समय रहते ही उसमें आप पेंट कलर

0: वगैरह करा ले तो अच्छा रहता है।
1: बिल्कुल।
0: और
1: और एक
0: इसके
1: हमारे,
0: साथ ही
1: बिल्कुल हमारे एक
0: हाँ
1: साथी हैं जो लिखते हैं कि बारिश के मौसम में नमी, सीलन और कीचड़ की वजह से घर जल्दी गंदा होता है, तो फर्श को एकदम सूखा रखें। पोछे के पानी में कीटाणुओं को दूर करने वाला कोई लिक्विड मिलाइए, या बदबू और कीड़ों से बचाने के लिए कपूर रख सकते हैं, या फिर नीम के तेल का स्प्रे कर सकते हैं। आप ये सब चीज़ें करें।
0: बिल्कुल। और जो चीज़ें फिसलने का बहुत डर रहता है, तो जहाँ भी आप देखें तो वहाँ पर आप इस कपड़े से पोछा लगाएं, और पोछे में नमक या कपूर डालकर भी आप पोछा लगा सकते हैं, जिससे कि कीटाणु नहीं आएंगे और घर के दरवाजे खिड़कियों की नियमित पोछाई करते रहें, जिससे कि वहाँ पर नमी से क्या होता है धूल गर्दा जमा हो जाती। तो इस तरह का बारिश के मौसम में हमें ख्याल रखना चाहिए। और फिलहाल तो एक सुनते हैं गीत।

0: तो आरती देखो प्रोग्राम बातें करते करते समापन की ओर हो गया है,
1: बिल्कुल।
0: तो आज सभी से लेते हैं विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और
1: आरती श्रीवास्तव का नमस्कार, नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। साय के 4 बजे हैं और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।

हेलो फरमाइश कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, श्रावण मास आ गया है। आज का ये हेलो फरमाइश कार्यक्रम हमने श्रावण मास को समर्पित किया है और आपसे कोशिश की है सावन को लेकर कुछ बातें करने की। एक कविता

0: आपको सुनाना चाहती हूँ। दृश्य मनोरम वर्षा सावन सलिल पवन संग चूम मगन, धरती कर मादक अवगाहन, हरित धरे परिधान बदन, रमणी तरुणा अटखेल करत सौंदर्य सुवासित सुबह करे, रमणीक बने रसना निरखत दिग मानस रंजन सरस करे, रसधार गिरे घिरते बदरा तन वसन कपोल निढाल करे, मन चंचल भाव भरे बहुधा सुरभित शर संधान करे। तो ये कविता आप सभी के नाम, और शुरू करते हैं आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। देखते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से अपना नाम बताइए।
1: नमस्कार मैम जी।
0: नमस्कार,
1: हम प्रेमपाल गंगवार बोल रहे हैं नवाबगंज बरेली से।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही प्रसिद्ध शहर है बरेली। बरेली की क्या खूबी है बताइए शहर की। बचपन में हमने तो देखा कि बरेली की हमारे पास जो है लकड़ी की बास्केट जिसे कहते हैं वो आया करती थी हमारे घरों में। कहते थे भी बरेली से हम लेकर आए हैं, ये बरेली से लेकर ये ट्रे आए हैं।
1: ये जो बचपन में जब चलना सीखते थे उसको बैलगाड़ी बोलते थे, ये फेमस है। और अभी तो क्या कहते हैं, सावन का महीना चल रहा है तो अभी भोलेनाथ की बरेली से भी जाना जाता है, हमारा नाथ नगरी बरेली।
0: अच्छा, तो आपके बरेली में क्या हो रहा है इन दिनों बताइए, श्रावण मास में खास तौर से।
1: हम यही बताना चाहेंगे कि सोमवार को खैर बड़े भक्तों से जल चढ़ाते हैं कचला घाट से लाके भोले शंकर जी को, लेकिन बारिश नहीं हो रही है।
0: अच्छा, गर्मी हो रही है।
1: हाँ,
0: लेकिन जो श्रद्धा रखते हैं भगवान शिव के ऊपर वो तो भक्त आ ही रहे हैं, और श्रावण मास में जो पूजा की जाती है वो तो कर ही रहे हैं ना मंदिरों में आके।
1: हाँ मैम जी, ये तो बात ठीक है, मंदिर में बड़ी प्रेम श्रद्धा से पूजा करते हैं। इतनी दूर लाइन लगती है, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर लाइन लगती है। जब तीसरा और जब चौथा सोमवार आता है सावन का तो बहुत लंबी कतार लग जाती है मैम जी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और यही श्रावण मास की खासियत भी है।
1: और भी जाना जाता है क्योंकि इसमें हमारे बरेली का सुरमा जी मशहूर है।
0: अच्छा, क्या बात है,
1: जो आंखों में लगाते ही आंखों की सुंदरता बढ़ जाती है,
0: आंखें कजरारी दिखने लग जाती हैं ना। बहुत अच्छा लगा, तो बताइए आपको कौन सा गीत सुनवाएं।
1: गाना रहेगा आई मिलन की रात का, सावन वाला आया है घटा से बरसा है पानी।
0: अरे वाह, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश विविध भारती से।
1: मंदाकिनी दीदी नमस्कार।
0: नमस्ते नमस्ते। आपको पता है कि आज हम बोल रहे हैं?
1: जी हम तो आपकी आवाज फट से ही पहचानते हैं।
0: अपना नाम तो बताइए हमें।
1: जी डार साहिल बात कर रहा हूँ श्रीनगर से।
0: अरे आपने पहले भी फोन किया है हमें।
1: जी बिल्कुल।
0: देखिए हम भी आपकी आवाज पहचानते हैं।
1: शुक्रिया। बिल्कुल जो रेडियो का विविध भारती का रिश्ता है ये बहुत ही अच्छा रिश्ता है आपका सामयिन के साथ और जो लिसनर है उनका आपके साथ तो बहुत ही अच्छा। ये जो एक बहुत बड़ा परिवार है।
0: जी
1: मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपका परिवार है ये खाली हमारे हिंदुस्तान में नहीं है ये पूरे दुनिया में है आपका परिवार विविध भारती के जरिए।
0: क्या बात है बहुत सुंदर। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत अच्छे विचार है आपके और आपने विविध भारती को एक बहुत बड़ा ओहदा दिया है जिसके वो काबिल है और वहीं पर वो विराजमान है। लेकिन हमारे श्रोता अगर उस ओहदे को समझते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अच्छा मुझे बताइए अभी श्रावण मास शुरू हो गया है तो श्रीनगर में कैसा मौसम चल रहा है और क्या ऐसा कुछ महसूस होता है कि सावन का ये जो महीना है कुछ खास असर लाता है?
1: जी पहले तो यहाँ इतनी बारिश नहीं होती थी। ये जो क्लाइमेट चेंज हुआ है ना दीदी तो ये बहुत ही बुरा हुआ है क्योंकि पिछले हफ्ते यहाँ बहुत ज्यादा बारिश हुई थी तो सैलाब का भी खतरा हुआ।
0: अच्छा।
1: बहुत ज्यादा चाहे वो यहाँ का डल लेक हो यहाँ की जहलिम हो यहाँ का लेदर वैली हो तो उनमें बहुत पानी आया था तो फिर ऊपर वाले की मेहरबानी से वो ठीक हो गया और सैलाब का खतरा जो था वो टल गया।
0: बहुत गंभीर बात हो गई। तो बिल्कुल सही कहा कि बारिश नहीं हो तो मुश्किल है और अगर अंधाधुंध हो जाए और सैलाब आ जाए तो और भी मुश्किलात पैदा हो जाते हैं।
1: जी बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि अगर हम 10 पेड़ काटे तो हम एक भी नहीं लगाते हैं। अगर हम पेड़ काटे तो हमें वहाँ नए पेड़ लगाने होते हैं।
0: बिल्कुल आपने सही कहा।
1: हमें ऐसा कुछ करना है कि जो आने वाली नस्ल है हमें उनके लिए ये जो हम क्लाइमेट है हमें उनके लिए बचा के रखना है।
0: बहुत अच्छे विचार आपके। और अब सुन लेते हैं आपकी पसंद का गीत।
1: जी फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा है मैं ना बोलूंगा मैं ना बोलूंगी।
0: बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं आप। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश विविध भारती से।
1: जी नमस्कार।
0: हाँ बोलिए, अपना नाम बताइए।
1: जी मैं सिक्किम गैंगटॉक से अर्जुन प्रधान बात कर रहा हूँ। मैडम
0: बहुत ही प्यारा नाम है। तो अर्जुन नाम तो बहुत ऐसा नाम है जिस पर अक्सर हम उदाहरण देते हैं कि अर्जुन ने मछली की आंख देखी थी। अर्जुन की बात जब भी आती है तो मछली की आंख आ जाती है। तो आप में क्या गुण है बताइए, अर्जुन का कोई गुण आपके अंदर है?
1: गुण तो बहुत सारे हैं मैम, लेकिन बताना थोड़ा मुश्किल है।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप अर्जुन जी?
1: जी मैं तो घर पर ही काम करता हूँ, रेडियो सुनता हूँ। रेडियो सुनना मेरा हॉबी है। बहुत सारे कार्यक्रम सुनता हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टेशन सुनता हूँ, बहुत आनंद मिलता है मुझे। सबसे पहले तो विविध भारती मुंबई का बहुत बहुत आभार करना चाहता हूँ। विशेष लोग आप लोग इतनी दूर से मेरे लिए इतनी अच्छी कार्यक्रम लाती है ना, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका हेलो सखी सहेली है ना, दिन में आता है गीत माला रात में वो छाया गीत।
0: तो अभी आप इतने सारे रेडियो स्टेशन सुनते हैं, कोई कॉमन बात आपको लगी कि किसी खास विषय पर? लगभग हर आकाशवाणी इन दिनों बात कर रहा होगा।
1: जी जी बिल्कुल, सावन ऐसा पर्व है ना, लेकिन सब आकाशवाणी मनाते है और आदमी का चारों तरफ लेता है ना। सावन महीना बहुत ही खूबसूरत महीना है
0: जी।
1: पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है हिंदू लोग में, जैसे कि आज भी मनाया जाता है।
0: बिल्कुल, तो आज हम भी जो है हेलो फरमाइश कार्यक्रम में श्रावण मना रहे हैं, ताकि हम अपने कार्यक्रम के जरिए जहां बारिश नहीं हुई है वहां पर सावन की बौछार गीतों के जरिए हम बरसा दें, हमारा ये उद्देश्य है। तो आज बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको, क्या आप भी कोई श्रावण मास का गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: गीत ये सावन महीना के सुना दीजिएगा, पतझड़ सावन बसंत बहार, लता जी और सुरेश भास्कर की आवाज में सिंदूर फिल्म।
0: सुनते हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार
1: जी, मैं अमर सिंह डील बोल रहा हूँ, दिलवाली पटा छबड़ा राजस्थान से।
0: क्या हाल है आपके राजस्थान के?
1: बढ़िया ठीक ठाक है दीदी।
0: श्रावण का महीना आ गया है, भगवान शिव की आराधना का समय है, हरियाली और ये प्रमुख त्योहारों का समय आ गया है कि पवित्र महीना आ गया है। राजस्थान में बरसात हो रही है या नहीं?
1: रात तो हो रही थी बरसात।
0: अच्छा,
1: खूब बरसात हुई रात को। अभी तो मतलब बढ़िया फसल है यहाँ पर तो।
0: हाँ,
1: हम तो खेती किसानी करते हैं।
0: अच्छा, तो फसल को अच्छा हो रहा है ना फायदा?
1: हाँ, बढ़िया फायदा हो रहा है, बढ़िया पानी गिर रहा है।
0: आपके खेत में कौन सी फसल है?
1: अपने तो मक्का और सोयाबीन है।
0: तो मक्का और सोयाबीन तो पानी ज्यादा मांगता है ना?
1: पानी इतना गिर रहा है जो पानी फसल के लायक तो गिर रहा है पानी।
0: तो अच्छी तादाद में मक्का और सोयाबीन की खेती होने वाली है इस बार आपके यहाँ?
1: जी बढ़िया होने वाली है, बार किसी बढ़िया फसल दिख रही है और साल किसी बढ़िया है बार।
0: अच्छा, आप महसूस कर रहे हैं कि सावन का मौसम आ गया है?
1: जी कर रहे हैं दीदी, बहुत बढ़िया लगता है सावन का महीना, हरियाली हरियाली।
0: तो आपका खेत खलियान तो बहुत ही सुंदर लग रहा होगा बरसात की
1: हाँ, बहुत
0: पानी को
1: सुंदर लग रहा है।
0: पाकर।
1: अभी मैं मका खेत में स्कोल किया मैंने।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो कभी आपके पास तो मोबाइल है, आप मोबाइल से प्रोग्राम सुनते होंगे हमारे?
1: हाँ दीदी, मोबाइल ऐप पर सुनता हूँ मैं तो।
0: तो कभी इस मोबाइल से फोटोग्राफी करते हैं अपने खूबसूरत हरे
1: करते
0: भरे
1: हैं
0: खेत
1: दीदी।
0: की और उन्हें कहीं भेजते हैं आप कि देखिए ऐसी हरियाली है?
1: भेजते हैं दीदी, हमारे दोस्तों के पास, कई दोस्त हैं उनके पास भेजते हैं।
0: तो आपको उनका रिस्पांस मिलता है, उत्तर आता है कि अरे वाह क्या बात है?
1: हाँ उत्तर आता है दीदी, कॉल भी बात होती है हमारे रेडियो से, दोस्त जुड़ रहे हैं जो सबसे मतलब ग्रुप जुड़ रहा है अपना।
0: अच्छा, रेडियो के जो श्रोता वर्ग है उनसे आपकी दोस्ती है?
1: जी,
0: बहुत अच्छी बात है। बताइए कौन सा गाना सुनवाएं?
1: दीदी आज हमें सुनना है हमको तुमसे प्यार है, इस पिक्चर का नाम।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते,
1: कैसे हैं मैडम आप?
0: बहुत अच्छे हैं, आप बताइए।
1: मैं भी अच्छी हूँ मैडम।
0: अपना नाम बताइए मुझे।
1: मैं अमीना भी मंसूरी बोल रही हूँ, पालदाना का, इंदौर से।
0: स्वागत है आपका, बताइए क्या करती हैं आप?
1: मैं कुछ भी नहीं करती मैडम, घर ही रहती हूँ, बच्चे जाते हैं काम पर।
0: तो आप घर के काम करती हैं फिर?
1: हाँ, घर पर थोड़ा बहुत बटा लेती हूँ काम, बच्चे काम करने नहीं देते पहली बात मेरे को।
0: क्या बात है, इसका मतलब बच्चों का लालन पालन आपने बहुत अच्छे तरीके से किया है।
1: जी मैडम, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं मैडम, मेरे को काम नहीं करने देते, ना बाहर जान देते, ना घर भी नहीं ज्यादा काम करने देते मेरे को।
0: अच्छा एक बात बताइए, अभी श्रावण का महीना शुरू हो गया है, पता है ना आपको?
1: जी मैडम।
0: तो कभी आप कुछ गाती हैं इस महीने में? मन करता है कि घर में बैठी हूँ तो कुछ गीत गाए जाएं, कुछ लोकगीत गाए जाएं, या कोई ऐसा गीत जो श्रावण मास से जुड़ा हो?
1: मैं तो पहले गा लेती थी, लेकिन अभी थोड़ा तबीयत बीच में खराब हो गई थी, जब से गुनगुना लेती हूँ थोड़ा बहुत, जैसे गाने आते जब गुनगुना लेती हूँ बस।
0: अच्छा, कोई गीत गुनगुना के बताइए हमें, अगर याद है तो।
1: अपन रागनी लगेगी मैडम, थोड़ा सा गुनगुना लेती हूँ बस। इस श्याने कर्म का क्या कहना, इस श्याने कर्म का क्या कहना।
0: अच्छा गाया आपने, अच्छा उठाया, कव्वाल की तरह गा रही थी आप, कोई कव्वाल गाता है जैसे, है ना?
1: मैडम आवाज अच्छी नहीं चल रही, नहीं तो गाने पे मैं बहुत अच्छे से गा लेती हूँ।
0: हाँ बताइए, कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: कच्चे धागे का सुना दीजिए।
0: कौन सा गाना? यही गाना।
1: हाँ, इस श्याने कर्म का क्या कहना।
0: चलिए सुनते हैं ये गीत आपकी पसंद का।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी नमस्कार मैम।
0: अपना नाम बताइए। नमस्कार,
1: मैं बीरन धाकड़ बोल रहा हूँ, बड़ा गांव जिला गुना मध्य प्रदेश से।
0: जी कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं। क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी का व्यवसाय है मैम।
0: अच्छा, क्या है इन दिनों खेत में?
1: मक्का है मैम, मक्का, धान, सोयाबीन।
0: और मौसम कैसा चल रहा है भाई? श्रावण मास तो शुरू हो गया है, बरसात आने लगी है।
1: बिल्कुल मौसम अच्छा है, हरियाली हरियाली है।
0: कितना बड़ा खेत है आपके पास?
1: मेरे पास 4-5 बीघा खेत है।
0: तो आप और आपके परिवार के अन्य लोग खेत की रखवाली करते हैं, काम करते हैं, या आप अकेले ही?
1: नहीं मैम, हमारा पूरा परिवार खेतीबाड़ी का ही व्यवसाय है हमारा, तो
0: पशुधन भी है?
1: काम करते हैं।
0: पशुधन भी है?
1: जी जी, गाय है।
0: कितनी गाय है?
1: 3-4 गाय है मेरे पास।
0: उनकी भी देखभाल करनी पड़ती है?
1: खेतीबाड़ी में चारा होता है उसमें लाते हैं गत्ता बना बना के।
0: अच्छा, वो खा लेती हैं?
1: जी जी।
0: अच्छा, आप खेत खलिहान में रहते हैं तो बारिश और हरियाली के इस खास माहौल में मोर और पपीहों की आवाज भी आती है? मोर नाचते हैं आसपास, मीठी आवाजें आती हैं?
1: जी जी मैम, पक्षी भी आते हैं और साथ में जो रेडियो विविध भारती को जो साथ है हमारे, बहुत अच्छा लगता है मैम। ये जो गाने आप प्रसारित करते हैं ना, जो विविध भारती से आते हैं, वो हमको मन को छू जाते हैं।
0: क्या बात है, इसीलिए तो आप लोग विविध भारती से जुड़े हुए हैं।
1: जी जी जी, काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ मैं, और हमारे भाई साहब हैं, सब घर परिवार के पूरे सुनते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके कि आप अपने खेत खलिहान में बैठकर विविध भारती के साथ प्रकृति का आनंद भी उठाते हैं।
1: जी मैम, और आज मुझे राजा हिंदुस्तानी का गीत सुनना चाहता हूँ मैम।
0: बताइए।
1: पूछो जरा, पूछो मुझे क्या हुआ है।
0: चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना।
1: मेरा गोपाल ओझा, ग्राम ककवासा, जिला गुना से बोल रहा हूँ। मैडम जी, आपसे पहली बार ही बात हो रही मेरी।
0: अरे, इससे पहले नहीं हुई हमारी बातचीत कभी?
1: नहीं हुई मैडम जी।
0: तो चलिए, आज तो हो गई
1: जी। आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ, विविध भारती से जुड़ा हुआ हूँ बहुत सालों से।
0: अच्छा, कैसे लगते हैं आपको कार्यक्रम?
1: कार्यक्रम बहुत बढ़िया लगते हैं जी। मान लीजिए विविध भारती के तो हेलो परमार, सखी सहेली और तिरवेड़ी और सभी कार्यक्रम बहुत बढ़िया लगते हैं जी, मान लीजिए।
0: अरे वाह, लगातार सुनते हैं या कभी कभी छूट भी चाहते हैं कार्यक्रम?
1: लगातार सुनते हैं हम तो विविध भारती जी, मान लीजिए।
0: अच्छा, क्या बात है। तो आप क्या करते हैं गोपाल जी?
1: खेती करते हैं, अभी तो मक्का लगा रखी है। अभी तो क्योंकि मक्का की फसल आएगी 2 महीने बाद जी, मान लीजिए। बारिश भी हो रही है अभी।
0: मक्का की फसल तो पानी मांगती है बहुत ज्यादा
1: जी।
0: इसके बाद क्या लगाएंगे आप?
1: फिर इसके बाद लगाएंगे धनिया, गेहूँ।
0: ये

0: कब पक जाएगी फसल?
1: जी आ जाती है उधर गर्मी तक आ जाती है, होली तक आई।
0: अच्छा, तब तक तो आपको बड़ी देखभाल करनी पड़ेगी, आपके परिवार के लोग भी लगे रहते होंगे खेतों में, वहीं रहते हैं आप?
1: हाँ लगे रहते हैं जी, मान लीजिए।
0: खेतों में ही रहते होंगे ना, वहीं पर मकान बना होगा आपका?
1: नहीं नहीं अभी तो गांव पास में ही है अपना खेत तो जी, मान लीजिए।
0: अच्छा, तो बताइए कुछ खास लग रहा है खेत खलिहान को देखकर, कैसा महसूस कर रहा है हमारा एक किसान?
1: बढ़िया लग रहा है, यही विविध भारती सुनते हैं, चलता रहता है हमारा तो।
0: हाँ, ये तो बहुत बड़ा साथी है आपकी जिंदगी का
1: जी।
0: बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आज?
1: रंग फिल्म का सुनना है, कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में, तुम्हें देखे मेरी आंखें इसमें क्या मेरी कथा है जी वाला।
0: अरे कौन सा गाना खूबसूरत उठा के लाए हैं आप, कहाँ से ढूंढ के लाए हैं?
1: मान लीजिए 90 की तो सच्ची गीत पसंद करता हूँ मुझे, मान लीजिए हमारे दोस्तों की पसंद है।
0: चलिए मान लिया हमने, ठीक है सुनिए अपनी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: हेलो मंदाकिनी दीदी को राधे राधे।
0: राधे राधे, कौन जनाब फरमा रहे हैं?
1: केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ दीदी, बेरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: अरे बहुत पहले भी आपसे एक बार बात हो चुकी है हमारी शायद।
1: बिल्कुल,
0: देखिए हम अपने श्रोताओं की आवाजें भी पहचानने लग गए हैं।
1: आपका कार्यक्रम दीदी सुनते रहते हैं हम तो, बहुत अच्छी आवाज लगती है और आपको जो नॉलेज है जनरल नॉलेज वो भी आपका बहुत अच्छा और बहुत परफेक्ट है।
0: ये आप कह रहे हो, आपका बड़प्पन है, आपका स्नेह है।
1: जी जी जी।
0: तो बताइए आपके भोपाल में जहाँ आप रहते हैं मौसम का क्या हाल है, क्योंकि श्रावण मास लग चुका है तो ये खास मौसम जो हमारे जीवन में अभी आया है, आपके वहाँ क्या हाल है और आपके जीवन में इसका क्या असर, ये बताइए हमें।
1: दीदी श्रावण मास का बहुत ही अच्छा असर है और हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है दीदी, बहुत अच्छा, अच्छा मौसम है और श्रद्धालु भी जो शिव मंदिर है वहाँ पर बहुत श्रद्धालु जुड़ रहे हैं और कांवड़ यात्रा भी जा रही है कहीं कहीं पर, बहुत अच्छा लगता दीदी, पूरे महीने बहुत ही अच्छा आनंदमय हो जाता है। सबसे बड़ी ये बहुत अच्छी बात है दीदी की जो कांवड़ यात्रा जाती है तो जो उन यात्रियों का जो रास्ता रहता है उसको सुगम बनाते हैं श्रद्धालु अपनी तन मन धन से, उनको जगह जगह पंडाल लगाते हैं, उनको भोजन फलहार की व्यवस्था रखते हैं, जल पानी जो भी चाहिए हो।
0: बिल्कुल,
1: तो वो उनके मतलब यात्रा को सुगम बनाते हैं, उनके लिए मैं सब दीदी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।
0: बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप क्या करते हैं फिर, आपकी पसंद का गीत सुनते
1: हैं? मैं आर्टिस्ट हूँ, पेंटर।
0: अरे कौन सी पेंटिंग?
1: ये बॉल पेंटिंग, दीवार लेखन जिसे बोलते हैं।
0: अच्छा, तो कभी श्रावण मास की कल्पना की, कुछ महीने का कैनवास पे उतारा उस महीने को कभी?
1: महीने को तो नहीं, लेकिन दीदी इससे तो वास्ता पड़ता ही रहता है।
0: चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक कलाकार हैं और अच्छी अच्छी कल्पनाओं के जरिए जो अपनी पेंटिंग बनाते हैं। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: आज दीदी मूवी का नाम है प्यार का मौसम और गाना है निसुल्ताना रे, उसमें एक अंतरा बहुत अच्छा है दीदी। बलम बबुआ बेदर्दी
0: सावन आया आजा। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत, ये मेरी भी पसंद का गीत है, सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: आपके सब कार्यक्रम अच्छे होते।
0: अरे नाम बताइए,
1: सुनते
0: नाम तो बताइए अपना पहले।
1: नाम मेरा मच्छिंद्र हरदास चांडवले।
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: हम अहिल्या नगर से बोल रहे हैं, शिरडी के बाजू में से।
0: स्वागत है।
1: आप सब ठीक है?
0: हाँ बिल्कुल ठीक है, और आपसे बात करके और भी अच्छे हो गए। हमारे असिस्ट होता हमें कहाँ मिलेंगे।
1: कैसा है, भगवान की कृपा है।
0: अरे वाह,
1: लग गया हमारा फोन।
0: अच्छा बताइए कैसा मौसम है वहाँ पर, झमाझम बारिश हुई?
1: तो बारिश कल परसों हो गया था। अच्छा
0: हाँ, क्योंकि श्रावण मास लग चुका है, सावन का महीना है,
1: चालू है। कल परसों बारिश हो गया था, अभी आज बारिश नहीं है।
0: मतलब मानसून सक्रिय हुआ कि नहीं?
1: मानसून कैसा है, अहिल्या नगर में बारिश है ना, बम्बई में नारियली पूर्णिमा होती है क्या?
0: हाँ,
1: उसके बाद जो नारल बम्बई में गिरता है उसके बाद अहिल्या नगर में बारिश आता है।
0: अच्छा,
1: उसको पर्ची का बारिश बोलते।
0: अच्छा,
1: इधर अहिल्या नगर में सह्याद्री के पट्टे नहीं है।
0: अरे बहुत टेक्निकल बात कर दी आपने तो।
1: अभी क्या करते, अभी वो कैसा है, सिरूर सितरापुर तक सह्याद्री के पट्टे आते हैं, तो वो जहाँ मानसून गिरता है भीमाशंकर पूना बम्बई कोकण वो भाग में बारिश ज्यादा होता है।
0: समझ गई मैं,
1: इधर बोले तो ये माथे पे।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने, बहुत अच्छे तरीके से बात समझाई हमको कि किस तरह का मौसम
1: रहता। अभी ये पहले से जो भगवान ने लगाया है,
0: हाँ,
1: रीत रिवाज,
0: हाँ,
1: वो चलते आने वाला रीत रिवाज से चलता है, और उसकी मर्जी भी अगर कुछ होता नहीं।
0: क्या बात कही,
1: मराठी मध्ये एक आभंग है, अरे अरे मानस साधू वेडा का खोला रे, देवा पुढे माणूस पाला पाचोळा रे, घडी घडी नाही कुणाचा भरोसा, तुला कोण देईन मनाचा दिलास।
0: बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल घडी भर का भरोसा नहीं है। तो आपने जिंदगी के अनुभव ले लिए हैं और अब जिंदगी को आप उसी तरह से।
1: तुमको बोलू क्या, सिलोन बाल का रेडू था, उसके पास भी धरती पे आपके जय माला करके कार्यक्रम आते थे
0: जी।
1: अभी तो हेलो गीत बाहर एक ही दिन रहता है, हमारा सवा छेकु भजन संध्या कार्यक्रम लगता है, भक्ति संगीत हवा महल, हम सब कार्यक्रम आपके सुनते हैं।
0: बहुत सुंदर,
1: और हमारा दिनचर्या भी अच्छा जाता है
0: जी। बिल्कुल, तो अब बता दीजिए आपकी पसंद का गीत, हमें कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मेरा पसंदीदा गाना है शिरडी के साईं बाबा का।
0: अरे वाह, कौन सा?
1: आया हूँ तेरे दर पे सवाली शिरडी वाले साईं बाबा।
0: बहुत सुंदर, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्कार मैडम, मैं चिमरी कुरासा कॉलोनी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: ठीक है मैडम, आप ड्यूटी पीरियड में हूँ मैडम, और ड्यूटी पीरियड में ही मैं आपके कार्यक्रम में कई दिन से फोन कर रहा था, लग नहीं रहा था, लग गया आज, बहुत खुशी हुआ मैडम, बातचीत हो रहा बहुत अच्छा लग रहा है।
0: क्या ड्यूटी पीरियड क्या कह रहे हैं आप?
1: मैं एसीसीएल में सर्विस करता हूँ, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड में सर्विस करता हूँ, और ड्यूटी पीरियड में कई केंद्रों में फोनिंग में लाइव में ईमेल में और सब में जुड़ता हूँ, प्रसारण भी सुनता हूँ, और आपका कार्यक्रम में आज फोन किया मैडम, बहुत अच्छा लगा मेरे को, बातचीत हो रहा है। और आज मैं अपने पसंद के गीत बताता हूँ, फिल्म का नाम है भाग मिल्खा भाग और गीत के बोल है मस्तों का झुंड और गायक है दिव्या कुमार।
0: चलिए ये गीत तो हम आपको सुनवा देंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी तो एक आध बात तो कर लीजिए हमसे।
1: हाँ आराम से मैडम बोलिए।
0: हाँ आप बताइए क्या करते हैं, मतलब कैसा आपका वक्त निकलता है, मौसम में क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं, आपके शहर में बारिश हुई कि नहीं हुई, क्योंकि सावन का महीना शुरू हो गया है और हम तो ऐसा मानते हैं कि जब सावन आता है तो हरियाली छा जाती है।
1: जी यहाँ पर मौसम एकदम मैडम अभी बादल किया हुआ है, उमस टाइप की गर्मी है और मतलब कि हल्का मतलब लाइटिंग बादल है, वो किया है सूर्य की रोशनी है, बादल किया है, लेकिन ये पानी गिरने के कगार में, क्योंकि जब उमस गर्मी होता है मैडम तो पानी गिरता है, लेकिन कोई कहा नहीं जा सकता है कि पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, लेकिन भगवान की मर्जी है तो उस अनुसार ही पानी गिरता है।
0: बिल्कुल, चलिए अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा हमेशा की तरह करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल नहीं करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से, और इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 02228670288, दूसरा नंबर 02240024662। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ, तकनीकी सहयोग समृद्धि नाइक का, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर लेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजने को ही कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोबरधन को मंजूरी दे दी है। इससे 1.5 लाख रोजगार सृजित होंगे। यह योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके अंतर्गत देश के प्रचुर कृषि अवशेष, गोबर, पशु गोबर, गन्ना अपशिष्ट, नगरपालिका जैविक अपशिष्ट और अन्य जैव संसाधनों को स्वच्छ ईंधन और जैविक खाद में परिवर्तित कर ग्रामीण आय तथा राष्ट्रीय आर्थिक मूल्य में वृद्धि का लक्ष्य है। यह योजना 2026-27 से 2035-36 तक लागू की जाएगी। इससे कंप्रेस्ड बायोगैस देश के भविष्य के ऊर्जा मिश्रण का प्रमुख आधार बनेगी। योजना का उद्देश्य घरेलू कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन को लगभग 10 गुना बढ़ाना, बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और देश भर में चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4-लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस पर कुल 8,970 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दोनों योजनाओं के बारे में जानकारी दी।
2: पहला फैसला बायोगैस से संबंधित है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव।

0: स्कीम एक बनी है और दूसरा असम में एक 4 लेन हाईवे का फैसला लिया गया है। टोटल 32,000 करोड़ रुपीस के ये दोनों प्रोजेक्ट और स्कीम्स मिला के है। हम सब जानते हैं कि भारत की जो नेचुरल गैस का कंजम्पशन है उसमें करीब 50% इम्पोर्ट करना पड़ता है। इस 50% इम्पोर्ट को कैसे कम करें उसके लिए लगातार कई प्रयास चल रहे हैं।
1: संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 पारित कर दिया है। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी थी। विधेयक में 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई राशि को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन के विनियोजन का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि मांगी है। यह राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त अनुदान की मांग लोक लेखा समिति की 39वीं रिपोर्ट में पहचाने गए 2 विशिष्ट मदों से संबंधित है। उधर लोकसभा ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा प्रस्तुत कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 बिना किसी चर्चा के पारित हो गया। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF पूरी तरह से अलग है और इन्हें एक ही नहीं समझना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने फर्जी आंकड़े प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को प्रतिबंधित करने के लिए कड़े औषधि नियमों को अधिसूचित किया है। यह नियम औषधि नियम 1945 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत दायर सभी आवेदनों पर लागू होगा। इस संशोधन के बाद आवेदक को एक निश्चित अवधि के लिए आगे आवेदन करने से रोक दिया जाएगा। बम्बई उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपने कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख से अधिक का जुर्माना भी लगाया जो पीड़िता को दिया जाएगा। और खेलों में तन्वी शर्मा ने कोरिया मास्टर्स महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर फाइनल में तन्वी शर्मा ने श्रेयांशी वलिशेट्टी को हराया। अश्मिता चाहिला और रक्षिता रामराज भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anucha Kumar. Union Cabinet today approved Gobar Dhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees. Briefing media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said this will create 1.5 lakh jobs. Gobar Dhan marks a defining moment in India's clean energy journey. It will transform the country's abundant agricultural residue, cattle dung, press mud, municipal organic waste and other biomass resources into clean fuel, organic manure, rural income and national economic value. The scheme will be implemented from 2026-27 to 2035-36 and will establish compressed biogas as a major pillar of India's future energy mix. The scheme aims to increase domestic compressed biogas production nearly tenfold, mobilize large-scale private investment and create a vibrant circular bioeconomy across the country. The Cabinet Committee on Economic Affairs also approved construction of 4-lane highway from Baihata Chariali near Guwahati to Tezpur along NH-15 in Assam with a total project length of 135.87 kilometers worth over 8,970 crore rupees. The project will be developed on built operate transfer toll mode. The project envisages construction of an emergency landing facility in Tezpur bypass, which has been finalized in coordination with the Indian Air Force. The project includes construction of 5 major bypasses.

0: श्रोताओ, ये भजन आपने सुना फिल्म आशा से मोहम्मद रफी और नरेंद्र चंचल की आवाजों में।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: Step into the world of Nexa.
4: Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
3: Need the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
4: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
3: And now it's yours at an effective price of just 6.75 lakh rupees.
4: Yes, rupees 6.75 lakh. Valid till 31st August.
3: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
4: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
3: Nexa.

0: मैं हूँ एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: कार्यक्रम का अगला भजन फिल्म जूली से आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाज़ों

अभी आप सुन रहे थे कुछ फिल्मी भजन। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। श्रोताओं, और अब समय है कार्यक्रम युवा मंच का।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। युवा साथियों, हाजिर हैं कार्यक्रम युवा मंच के संघ के साथ और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपकी दोस्त अनुराधा। युवा साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज है बृहस्पतिवार यानी गुरुवार, और गुरुवार के दिन हम आपको देते हैं जानकारी रोजगार से संबंधित और साथ ही साथ विज्ञान जगत की भी। तो श्रोताओं, सबसे पहले आपको अंतरिक्ष से जुड़ी खबर आप तक पहुंचाना चाहेंगे और उसके बाद आपको रोजगार समाचार की भी जानकारी हम आपको आप तक साझा करेंगे। सबसे पहले अंतरिक्ष की बात करें तो नासा और इसरो के

संयुक्त NISAR उपग्रह ने अंटार्कटिका की अत्यंत स्पष्ट राडार तस्वीरें जारी की हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे हिमनदों, भूकंप, बाढ़ और पृथ्वी की सतह में होने वाले बदलावों की निगरानी पहले से अधिक सटीक हो सकेगी। और अब बात पर्यावरण की, और पर्यावरण में वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। यदि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन इसी तरह जारी रहा तो वैश्विक तापमान वृद्धि का खतरा और भी गंभीर हो सकता है। श्रोताओं, कार्यक्रम में बातें और जानकारियां तो हम और भी आपसे साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले मनोरंजन भी हम आपका करेंगे। और मनोरंजन के लिए आपके लिए लेकर आए हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आपने ट्यून के है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र और सुन रहे हैं कार्यक्रम युवा मंच। और आज के इस कार्यक्रम में हम आपके साथ साझा कर रहे हैं

जानकारी विज्ञान जगत और रोजगार समाचार की। तो सबसे पहले आपसे बात कर रहे हैं विज्ञान जगत के बारे में। तो जैसा कि आपने और हमने बात की कि पर्यावरण में लगातार जो है वो परिवर्तन हो रहा है, और वो हो रहा है हमारी जो ग्रीन हाउस की गैसें जो हैं उनके उत्सर्जन से। तो इसी तरह अगर इनका उत्सर्जन बढ़ता रहा तो जो तापमान में वृद्धि है वो लगातार बढ़ती रहेगी, और इसकी वजह से तापमान जो है वो और अधिक बढ़ जाएगा और हमारे पर्यावरण को इससे नुकसान पहुंचेगा। तो हम सभी युवा साथियों और सभी का ये फ़र्ज़ है कि अपने पर्यावरण को हमें साफ़ सुथरा रखना है, हरा भरा रखना है, पर्यावरण को लगातार हरियाली हमें वहाँ अपने आसपास जो है वो रखनी है। तो आपको अपने आसपास में कुछ ना कुछ नया जो पौधा है, कोई ना कोई नया पौधा जो है वो ज़रूर लगाना है, ताकि हमारा पर्यावरण जो है वो बचा रह सके। अब आगे आपको जानकारी देते हैं विज्ञान की जगत में अंतरिक्ष से, और एक रोचक खबर सामने आई है कि करीब 4 टन वजनी स्पेस एक्स रॉकेट का एक हिस्सा जो लंबे समय से अंतरिक्ष में भटक रहा था, इस सप्ताह चंद्रमा की सतह से टकरा गया। वैज्ञानिकों ने इस घटना से प्राप्त आंकड़ों का अध्ययन जो है वो करना शुरू कर दिया है। वहीं अगस्त में होने वाले पूर्ण सूर्य ग्रहण को लेकर वैज्ञानिक तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस दौरान कई विशेष वैज्ञानिक प्रयोग किए जाएंगे, जिससे सूर्य और पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में नई जानकारियां मिलने की भी उम्मीद है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो सिकाडा के पंख से बना नया सेंसर, जी हाँ श्रोताओं, ताइवान के वैज्ञानिकों ने चांदी की परत चढ़ाकर ऐसा अत्यधिक संवेदनशील सेंसर विकसित किया है जो बहुत कमज़ोर आणविक संकेतों का भी पता लगा सकता है। इससे भविष्य में बीमारी की जल्दी पहचान जो है वो संभव हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आपको जानकारी दें तो जो नासा है, नासा ने संयुक्त NISAR मिशन ने अंटार्कटिका की बर्फ की बेहद उच्च रिजोल्यूशन रडार तस्वीरें जारी की हैं। ये मिशन पृथ्वी की सतह, हिमनदों और प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी में महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके साथ साथ वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार पहले के अनुमान से अधिक तेज हो रही है, और यदि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं घटा तो पृथ्वी 2030 से पहले 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि की सीमा जो है वो पार कर सकती है। तो हमें अपने जो तापमान की वृद्धि है पृथ्वी की वो नहीं बढ़ानी है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने हैं, और साथ ही साथ सुनना है कार्यक्रम युवा मंच आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और अब कर रहे हैं आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

0: जी हाँ श्रोताओ, रेडियो को अपने साथ रखिए और आकाशवाणी धर्मशाला से सुनते रहिए कार्यक्रम युवा मंच। और कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं विज्ञान जगत और रोजगार समाचारों की। तो अभी तो आपसे बात कर रहे हैं विज्ञान जगत के ही बारे में, तो एक और जानकारी जो है वो आपसे साझा करना चाहेंगे। युवा साथियों, विज्ञान की दुनिया से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है। देश भर के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है, ताकि युवा वैज्ञानिक अपनी नई सोच और शोध को मंच प्रदान कर सकें। तो ये तो थी जानकारियाँ हमारी विज्ञान से संबंधित, और इसके साथ साथ आपके साथ और भी जानकारियाँ हम साझा करेंगे रोजगार से संबंधित। लेकिन उससे पहले लेते हैं ये छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक।
1: Do you play for the rush or do you play it smooth? Lead every play with the new Brezza, now available with the exciting turbo booster jet, refined K15C engine and underbody SCNG with 5-star safety rating, superior performance and features like ventilated seats, new 10.1-inch infotainment screen with premium audio. Every road is your playground. The new Brezza, now available at an introductory starting price of 7.39 lakh rupees. Book a test drive today at your nearest Maruti Suzuki Arena showroom.
0: श्रोताओ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और सुन रहे हैं कार्यक्रम युवा मंच। और कार्यक्रम में अब आपको जानकारी देंगे रोजगार से संबंधित। तो युवा साथियों, आप सभी को ये बता दें कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या के अनुसार बाल विकास परियोजना 16 जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के रिक्त पदों हेतु साक्षात्कार के माध्यम से ये भरे जाने हैं। अतः इस संबंध में इच्छुक पात्र महिला उम्मीदवारों से पदों को भरने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। युवा साथियों, इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के पद हेतु पात्रता की शर्तें हैं। महिला उम्मीदवार उस आंगनवाड़ी केंद्र के सर्वे क्षेत्र यानी फीडर एरिया से संबंधित होनी चाहिए जिसके रिक्त पद के लिए उसने आवेदन किया है। इसके साथ साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका दोनों पदों के लिए उम्मीदवार

की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जमा दो यानी 12वीं या समकक्ष अनिवार्य है। उम्मीदवार की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उम्मीदवार के परिवार की वार्षिक आय जो है वो 50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के पद हेतु चयन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा गठित चयन समिति द्वारा योग्यता के आधार पर किया जाएगा। चयन के लिए कुल अंक 25 निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें अंक तालिका में निम्न प्रकार से आवंटित किया गया है। जैसे एक क्रम संख्या एक में शैक्षणिक योग्यता के लिए अधिकतम 10 अंक निम्नलिखित तरीके से दिए जाएंगे। इसमें जमा दो में अंकों का प्रतिशत आनुपातिक आधार पर अधिकतम 7 अंक हैं। उच्च शिक्षा योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को निम्नानुसार 3 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। स्नातक के लिए अतिरिक्त 2 अंक हैं, स्नातकोत्तर या अधिक अतिरिक्त 1 अंक और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री। यदि स्नातक की डिग्री ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड के माध्यम से प्राप्त की गई है तो उनकी स्नातक की डिग्री UGC दूरस्थ शिक्षा के मानदंडों के अनुसार होनी चाहिए। अनुभव के लिए अधिकतम 3 अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे, जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, बाल सेविका, बालवाड़ी शिक्षिका, नर्सरी शिक्षिका, उच्ची पंचायत में कार्यरत सिलाई शिक्षिका, ECCE के शिशु पालक जिन्होंने 10 महीने तक काम किया है, उन्हें प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक दिया जाएगा जो अधिकतम 3 अंक होगा। इसके साथ साथ 40% और उससे अधिक विकलांगता वाली विकलांग महिलाओं के लिए 2 अंक, बशर्त कि विकलांगता का प्रकार ऐसा ना हो जो उसकी नौकरी की जिम्मेदारी के निर्वहन में बाधा उत्पन्न करता हो। SC ST OBC उम्मीदवारों के लिए 2 अंक रखे गए हैं। इसके साथ साथ राज्य नारी सदन में रहने वाली, बालिका आश्रम में रहने वाली, अनाथ, विधवा, निराश्रित, तलाकशुदा, विवाहित महिलाएं जिनके पति पिछले 7 वर्षों से लापता हैं या महिलाएं अपने पतियों द्वारा छोड़ दी गई हैं और जो अपने माता पिता के साथ रह रही हैं या एकल नारी के लिए 3 अंक जो हैं वो रखे गए हैं। युवा साथियों, इसके लिए आवेदन आपको कैसे करना है? इच्छुक पात्र महिला उम्मीदवार उपरोक्त पदों के लिए आवेदन हेतु अपना प्रार्थना पत्र सादे कागज पर बाल विकास परियोजना अधिकारी सुलह स्थित भेडू महादेव के कार्यालय में स्थित वांछित प्रमाण पत्रों की सत्यापित छाय प्रतियों सहित आज से दिनांक 18 अगस्त 2026 तक जमा करवा सकते हैं। साक्षात्कार 21 अगस्त 2026 को, समय सुबह 10 बजे, स्थान कार्यालय उपमंडल अधिकारी धीरा में। उपरोक्त पदों हेतु अधिक जानकारी के लिए आप बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय सुलह स्थित भेडू महादेव में निम्नलिखित मोबाइल नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर हैं 01894 275375 और 94186872 63। मोबाइल नंबर एक बार फिर से नोट कीजिए, 01894 275375 94186872 63। इन मोबाइल नंबरों पर इससे संबंधित जानकारी जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, जानकारियां तो हम आपसे और भी साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले करेंगे आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और सुन रहे हैं कार्यक्रम युवा मंच। और कार्यक्रम में अब एक और रोजगार सूचना जो वो है आपको देते हैं, वो है उपमंडल पालमपुर से संबंधित। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना के अनुसार बाल विकास परियोजना सुलह जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के रिक्त पदों हेतु साक्षात्कार जो है वो भरे हो रहे हैं। अंततः इस संबंध में इच्छुक पात्र महिला उम्मीदवारों से निम्नलिखित पदों को भरने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के पद हेतु पात्रता शर्तें हैं, उम्मीदवार उस आंगनबाड़ी केंद्र के सर्वे क्षेत्र से संबंधित होनी चाहिए जिसके रिक्त पद के लिए उसने आवेदन किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जमा 2 बारहवीं या समकक्ष अनिवार्य है। उम्मीदवार की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवार के परिवार की वार्षिक आय 50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के पद हेतु चयन सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा गठित चयन समिति द्वारा योग्यता के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक पात्र महिला उम्मीदवार उपरोक्त पदों के

लिए आवेदन हेतु प्रार्थना पत्र सादे कागज पर बाल विकास परियोजना अधिकारी सुलास्थित भेदू महादेव कार्यालय में सभी वांछित प्रमाण पत्रों की सत्यापित छाया प्रतियों सहित आज से दिनांक 19/8/2026 तक जमा करवा सकते हैं। साक्षात्कार की तिथि है 22 अगस्त 2026 और समय है 10:00 बजे। स्थान कार्यालय उपमंडल अधिकारी पालमपुर। और उपरोक्त पदों हेतु सभी जानकारी के लिए आप बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय स्थित भेदू महादेव में निम्नलिखित मोबाइल नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 01894275375 और 94186872 63। मोबाइल नंबर एक बार फिर नोट कीजिए 01894275375 और 94186872 63। सूचना समाप्त हुई।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, अब जानकारी देते हैं आपको आज के शीर्ष कार्यक्रमों की। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरमई सांझ। 6:30 का समय रहेगा कार्यक्रम मौजा ग्राइंडिया का। कार्यक्रम किसान वाणी 7:10 पर आकाशवाणी शिमला से रिले किया जाएगा। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस।

रात्रि 9:15 पर एक ही अभिनेता के क्रम में आज आप सुनेंगे अभिनेता अरबाज खान की फिल्मों के गीत। रात्रि 9:30 का समय रहेगा कार्यक्रम शामी गजल का। और रात्रि 10:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 News@9, रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी रूपरेखा हमारे आज की शेष कार्यक्रमों की।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम अश्विनी कुमार मौदगिल है। मैं लगभग 40-45 साल से खेती कर रहा हूँ। फसल बीमा योजना हमें मुआवजा जो देती है उससे हमारी मदद हो जाती है। मेरे को खरीफ 2023 में 2,80,000 रुपया मिला इसका। हमारे इर्द गिर्द किसान है, उनको हम कहते हैं कि आप भी बीमा कराओ तो उसका आपको भी फायदा मिलेगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कुसुमटी विधानसभा क्षेत्र में 48 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन किए। इस अवसर पर मशोबरा में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं के आज उद्घाटन व शिलान्यास किए गए हैं, उनसे पूरे विधानसभा क्षेत्र में विकास को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को स्वच्छ व आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि इसी के तहत यहां से पंचायतों को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से ई वाहन प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में आने वाले समय में 700 पंचायतों को ये ई वाहन दिए जाएंगे और अभी महज पायलट प्रोजेक्ट के तहत 450 करोड़ रुपए की लागत से 133 ई वाहन पंचायतों को दिए जाएंगे।
1: हमारा लक्ष्य है कि हिमालय और पर्यावरण की रक्षा करते हुए हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और सबसे समृद्धशाली राज्य बनाए। इसी दृष्टिकोण से अभी हमने यहाँ ई व्हीकल जो पंचायतों को दी है स्वच्छता के लिए, उसका अभी शुभारंभ किया। पूरे प्रदेश में आने वाले समय में 700 पंचायत में इस ई व्हीकल का वितरण किया जाएगा। अभी महज पायलट प्रोजेक्ट के तहत 4.5 करोड़ की लागत से 133 ई व्हीकल पंचायत को दी जाएगी और जो पंचायत है वो उसका संचालन करेगी, वो उसमें ई व्हीकल के लिए अपना ही ड्राइवर रखेगी और पंचायत का जो फंड हम उनको उपलब्ध करवाएंगे उससे उसकी सैलरी भी उनको उपलब्ध करवाएगी।
0: लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने हिमाचल प्रदेश से जुड़ी विभिन्न सड़क परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग 305 के तहत सैंज लुहरी बंजार ओट मार्ग पर बंजार से ओट तक सड़क के सुधार और टायरिंग के लिए 25 करोड़ 11 लाख रुपए की राशि जारी करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से जलोड़ी सुरंग परियोजना के लिए 1,775 करोड़ रुपए की स्वीकृति की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह भी किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने मंत्रालय के अधिकारियों को स्वीकृति प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा विक्रमादित्य

0: के राष्ट्रीय राजमार्ग 303 पर नगरोटा बगवां रानीताल सड़क के लिए 395 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने के आग्रह पर केंद्रीय मंत्री ने सैद्धांतिक सहमति भी प्रदान कर दी है। नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश को सड़क अवसंरचना के विकास के लिए हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि करोड़ों का कर्ज लेने के बावजूद सुक्खू सरकार चुनाव के समय लोगों को दी गई गारंटियां भी पूरी नहीं कर पाई। आज शिमला में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हितों की बजाय एक सिंडिकेट की तरह काम कर रही है। राजेंद्र राणा ने कहा कि वर्ष 1971 से 2022 तक विभिन्न सरकारों ने कुल 68,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, जबकि वर्तमान सरकार ने अपने 4 साल के कार्यकाल में ही लगभग 44,600 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार की नीतियों व वादा खिलाफी से प्रदेश का हर वर्ग त्रस्त है।
1: हिमाचल प्रदेश में लोगों की चुनी हुई सरकार ना चल के बल्कि एक मित्रों की सिंडिकेट सरकार के रूप में काम कर रही है और इसने जगह जगह भ्रष्टाचार की फैक्ट्रियां खोल के रखी हैं। आज प्रदेश की जनता इस बात को पूछ रही है कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने 4.25 साल में जो 44,600 करोड़ रुपया कर्जा लिया, अगर इनकी नीयत साफ होती तो प्रदेश में सरकार बनाने से पहले जो उन्होंने गारंटियां दी थी वो गारंटियां पूरी होती, क्योंकि बहुत भरकम रकम जो है 44,600 करोड़ रुपए जो कर्जा लिया है उसे गारंटियां पूरी करते। आज प्रदेश की महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि कब उनको 1500 मिलेगा, नौजवान इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको नौकरी मिलेगी, और इसके अलावा जो 300 यूनिट बिजली की गारंटी इन्होंने दी थी कि फ्री देंगे, उल्टा इन्होंने बिजली के बिल जो है 2 से 2.5 गुना बढ़ा दिए, इसलिए आज प्रदेश की जनता त्रस्त है।
0: नगर व ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि जन शिकायतों का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वे आज बिलासपुर में आयोजित जिला स्तरीय जन शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। धर्माणी ने कहा कि जनता से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभाग शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। बैठक में विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों ने जिला से जुड़े जनहित के कई मुद्दे उठाए, जिन पर राजेश धर्माणी ने संबंधित विभागों को आवश्यक व समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में विधायक जेआर कटवाल व त्रिलोक जम्वाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
2: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुरमई सांझ।

कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में गाए फिल्म कारवां के इस गीत के साथ।

0: साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
3: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ।
2: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
3: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
2: जल्दी विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
4: कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए फिल्म आन विलो सजना का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

0: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price, starting from just 9.67 lakh rupees.
0: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 31st August.
1: Own the style icon at an EMI of just 899 rupees per month.
0: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbag as standard.
1: Hurry, limited stock available.
0: Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
1: Step into the world of Nexa.
0: Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now it's yours at an effective price of just 6.75 lakh rupees.
0: Yes, rupees 6.75 lakh. Valid till 31st August.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूं एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
4: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरमई सांझ और कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मदन मोहन के संगीत निर्देशन में, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत, गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और फिल्म का नाम है चिराग।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरमई सांझ, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 6:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मौजा ग्राइंदियां।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। किसान साथियों, हाजिर हैं कार्यक्रम मौजा ग्रायदियाँ के साथ, और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ अनुराधा। किसान साथियों, कहा भी गया है उत्तम खेती मध्यम व्यापार और उद्यम चाकरी, यह कहावत आज भी हमें खेती के महत्व का एहसास कराती है। खेती केवल अन्न उगाने का साधन नहीं बल्कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव भी है। किसान अपने परिश्रम से खेतों में हरियाली लाता है और हमारे घरों तक भोजन पहुंचाता है। आज का किसान भी बदल रहा है। आधुनिक तकनीक, ड्रिप सिंचाई, जैविक खेती, उन्नत बीज और मौसम की सही जानकारी के साथ खेती पहले से अधिक वैज्ञानिक और लाभदायक बनती जा रही है। साथ ही मशरूम, मधुमक्खी पालन, फल सब्जी उत्पादन और औषधीय पौधों की खेती जैसे नए विकल्प किसानों की आय बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम भी बात करेंगे इसी से संबंधित कि आप किस तरह की खेती अपने रोजगार से संबंधित अपने खेतों में लगा सकते हैं या अपने घरों में उगा सकते हैं, ताकि आप कुछ ना कुछ जो रोजगार से संबंधित वो कार्य जो है वो कर सकें। लेकिन कार्यक्रम के आरंभ में आपका कर रहे हैं मनोरंजन इस प्यारे से लोकगीत के साथ।

0: Step into the world of Nexa.
1: Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
0: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
1: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
0: Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags.
1: And now it's yours at an effective price of just 5.79 lakh rupees.
0: Yes, rupees 5.79 lakh. Valid till 31st August.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today.
0: Hurry, offer still stocks last. TNC apply.
2: Nexa.
3: MCA, MBA, MA History, Economics, Political Science 100% ऑनलाइन कोर्सेज के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे परीक्षा।
4: हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र जो कि UGC DAB से मान्यता प्राप्त है, घर बैठे शिक्षा प्राप्त करने का सुनहरा मौका।
3: नए सत्र के लिए प्रवेश आरंभ, आवेदन की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2026।
4: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9418335203, 9218700111।
5: श्रोताओ, इस प्यारे से लोक भजन और विज्ञापनों के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम मौजा ग्रैंडिया में। किसान साथियों, आज हम बात कर रहे हैं ऐसी खेती की जो कम जगह, कम लागत और कम समय में अच्छी आमदनी का अवसर देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशरूम की खेती की। तो आइए जानें कि कैसे यह आधुनिक खेती युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए आत्मनिर्भरता का एक नया रास्ता बन रही है। तो आपको सुनवा रहे हैं ये भेंट वार्ता।
6: किसान साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी अहां दा प्रयास रहंदा कि हर दिन एक नित नई जानकारी अहां तुहां तक पहुंचाइए। चाहे वो अहां दे कृषि वैज्ञानिकां द्वारा दित्ती गई जानकारी होवे या फिर अहां दे उन्नत किसान बागवान साथियों कन्ने कीती गई गलबात होवे। उसी कड़ी विच अज मेरे कन्ने जुड़ा करदे ने एक उन्नत किसान जिहड़े कि मशरूम कन्ने इहदे सोगी मछली पालन दा काम जिहड़ा सा करदे हन ओवा करदे ने इहनां कन्ने गलबात। राम राम जी।
7: राम राम जी।
6: जी अपना नाम दसा।
7: राम सिंह पुत्र श्री हरबंस लाल जी।
6: हाँ जी।
7: ग्राम देरिया।
6: अच्छा।
7: शमीरपुर ब्लॉक कांगड़ा पौंदा घरे दा।
6: हाँ जी।
7: इत्थे दा ब्लॉक जे है साडा रैत ब्लॉक पौंदा।
6: अच्छा। यानी कि घर तो हां दे देरिया ने।
7: घर देरिया
6: कने इस जगह दा क्या नाम है?
7: इस जगह अरनी।
6: अरनी।
7: हां डुगियारी।
6: अच्छा, ता मशरूम दा काम करदे है ना?
7: मशरूम दा प्लांट भी लाया जी।
6: हां जी।
7: कने मशरूम दा भी करदे कन डिंगरी दा भी करदे।
6: अच्छा।
7: मछली पालन दे टैंक बनाए हे मैं 5000 स्क्वायर मीटर दे।
6: हां जी।
7: कने बगीचा भी लगाया कने।
6: अच्छा।
7: कने सब्जी दा काम भी करदे दे वाले खेती।
6: अच्छा, ता सबसे पहला गल करदे ना मशरूम दी, किन्ने साल हुई है मशरूम दा काम करदे?
7: मशरूम जे 3 साल हुई है। गर्मी घट सी बिकदा 2 महीने गैप आ जाना है।
6: अच्छा।
7: जून जुलाई कहते अगस्त पहले आने सितंबर तीन सारे चालू हो जाने।
6: अच्छा, जेडे मशरूम दे जेडे बैग होंदे ना इहदी तुहां भर्ती आपू करदे बने बने
7: प्लांट जिन्हें बड़े प्लांट लाए तिना भर्ती करी की भेज दे। ज्यादातर मैं जो लोंदा यूनिवर्सिटी पालनपुर ते लेंदा।
6: अच्छा।
7: मतलब विश्वविद्यालय ते कने कदी दबारी मतलब एक हॉर्टिकल्चर आले रखे बैजनाथ लखे।
6: अच्छा।
7: मतलब तिना ही प्लांट बनाया बैजनाथ ते भी लोंदा। कने
6: किन्ने किलो वाला बैग लगांदे तो? हां
7: इतु सारे जे 10 किलो वाला बैग चलदा।
6: अच्छा।
7: कने जेड़ा की प्राइवेट आले दिंदे से 10 किलो दिन उस पे तिना 7-7.5 किलो ही हुंदा। कने जेड़ा की मतलब यूनिवर्सिटी दे कने हॉर्टिकल्चर आले दे बैजनाथ ते लोना
6: हां
7: पूरा 10 किलो ही हुंदा।
6: ₹100
7: बाद अजकल 22-23 रुपये पर मतलब जीपा का 200 बैग का किराया आई जाता 11-12 रुपये पर बैग सह पी जाता दिवाली में।
6: अच्छा
7: जी जी।
6: तो राम सिंह जी, अगर गल की जाए ना इसके बाद एक बैग जिया चल तो हाँ बैग मंगवा ले तो हाँ प्लांट अंदर लगाई था
7: जी,
6: किन्ने दिन च सह फिर तैयार हो जाना?
7: जी हाँ, मतलब इस तरीके ना होंगे कि यहाँ 17-18 दिन के बाद केसिंग करना होंगी।
6: हाँ।
7: केसिंग तेना भेजी होंगी।
6: अच्छा, केसिंग क्या चीज होंगी?
7: केसिंग होंगी दिवाली आपू बनाई होंगी। आम तो बनाई होंगी केसिंग अलग ही बनाना पौंदी, आपू मिट्टी होंगे गोबर होंगे।
6: अच्छा।
7: इस बीच मतलब ये होंगे ज्यादातर मतलब कि साढ़े मित्र कीटाणु ज्यादा तादाद च होंगे ताकि दवाई तना बैगे के उपर जो पानी है जल्दी मशरूम निकले।
6: अच्छा, कोई खाद टाइप होंगी होनी
7: है? हाँ, टाइप च बनाई।
6: अच्छा, जी तुम दसिया कि 10 किलो वाला बैग लगभग तुम लगाते हैं
7: जी जी,
6: तो अगर गल कर 10 किलो च उत्पादन कितना आना एक ही बैगे च?
7: एक बैग च दवाई 3.5 किलो के उपर नहीं चलता।
6: अच्छा, कितनी बारी निकलता है?
7: मतलब लगातार करी करी कोई मतलब पहले तो दवाई मतलब शुरुआत च ठीक तादाद च निकलता, फिर आस्ता आस्ता घटी जाता कोई 1.5 महीना 1.5-2 महीने चली रहते बैग।
6: अच्छा, इससे बाद क्या फिर बैग खाली कुछ नहीं?
7: जल बैग होता तो इसकी खाद बनाई दे, हम प्लांट बनाए होंगे नहीं कैंचुआ खाद प्लांट बनाए बनाया प्लांट करने।
6: अच्छा,
7: इन्हें बैगों की खाद अहम इस प्लांट च पाई दे,
6: हाँ जी,
7: फिर 5-7 महीने के बाद दूई खाद भी पाते कन्ने गोबर वगैरह,
6: हाँ जी,
7: फिर साढ़े खेती कन्ने आ जाए।
6: अच्छा अच्छा, जी तुम दसिया ना कि तुम्हारे घर जड़े सह देरियां पौंदे ने, तो इतू जड़ा सह तुह क्या जमीन मुल लेके इतू बनाया?
7: हाँ जी, ये 2008 च 9 च 10 च,
6: हाँ जी,
7: ये मैं 3 साल दुबारी 27 के नाल प्लाट खरीदिया।
6: अच्छा, देखा ये जड़ी खड है कौन है खड बक्का?
7: मांझी खड।
6: मांझी, देखा पानी दी तो कोई कमी नहीं है ना?
7: कोई कमी नहीं, मैं मोटर भी लाइयो, इंजन भी रखे, 2 इंजन रखे, मोटर लाइयो, टुल्लू पंप लाइयो,
6: हां जी,
7: ऊपर ते पुल भी बनाई ही जाई काले पर पिछली वाली फ्लड जला फ्लड देना खुल रही थी सारी।
6: अच्छा अच्छा, जी जल तो हाँ ये शुरू किया है ना मशरूम का काम,
7: जी जी जी,
6: इससे पहले तो हाँ कुछ सिखलाई ले ही?
7: हाँ जी, हाँ मैं ट्रेनिंग की थी 2 बारी मतलब 16 की थी ट्रेनिंग जी।
6: हाँ जी,
7: मतलब मशरूम प्लांट बारी जो की थी ना प्लांट है बड़ा।
6: हाँ जी,
7: एक बारी पालनपुर भी ली हुई मैं मतलब।
6: अच्छा,
7: हाँ, 3 बारी ट्रेनिंग की थी मैं जी।
6: अच्छा, इस ताई जी कोई अनुदान वगैरह भी मिला विभाग से?
7: 8 लाख रुपया सब्सिडी साइज दिता विभाग जी।
6: अच्छा,
7: ये मतलब 1,88,000 रुपया औसत बैद है, मतलब टोटल अमाउंट था दुबारी मतलब प्लांट का।
6: हाँ जी,
7: अच्छा, तो इस बीच जो है सर दुबारी 8 लाख रुपया गवर्नमेंट का होंगे, शायद 3 साल के बाद पाते हल दिता नहीं है।
6: अच्छा,
7: हाँ जी।
6: अच्छा, इसके बाद तुम्हारा उत्पादन तैयार हो गया
7: जी जी,
6: फिर ये कुछ बेचना कुछ हो जाएगी?
7: इंया होंगे कि दुबारी के भी तो मंडी वगैरह ले जाते।
6: हाँ।
7: मैं मंडी नहीं लींदा।
6: अच्छा,
7: मैं करता कि दुबारी मैं राती तोड़ने मतलब राती तोड़ी साफ कर रखने भ्याग तड़के मतलब पैकिंग करने के तोली लेने के मैं दुकाना बेची लगा।
6: अच्छा,
7: जी बिकन।
6: हाँ।
7: दुकाना जो फालतू जल हो जाते तो मैं मोटरसाइकिल पर चक्कर भी लगाई ना मैं लोकल च बेची लें।
6: अच्छा, नजदीक कौन बाजार पौंदा तो हाँ जो
7: नजदीक गगल वगैरह ही।
6: अच्छा, बिकी जाता भी है ना?
7: हाँ जी, बिकी जाता दुकाना वाले दे दें।
6: हाँ जी,
7: बाकी फालतू ज्यादा हो जाता तो हम ग्रां च भी चक्कर लाई दें मोटरसाइकिल।
6: इसके बाद गल करते थे तो हाँ शुरू जिक्र किया हाँ कि मछली पालन का भी जोड़ा था तो हाँ काम करते हैं
7: जी जी,
6: जिहड़ा ये तालाब मैं देखा करता है।
7: हाँ जी,
6: ये कितने बाय कितने तालाब है
7: ये? जी मतलब टोटली 5,000 स्क्वायर मीटर दे टैंक बनाए हैं मैं।
6: अच्छा,
7: मतलब गवर्नमेंट दे थ्रू बनाए हैं। 1.5 लाख रुपया इस बीच गवर्नमेंट की सब्सिडी भी मिली ही नहीं जो, मतलब मेरा तो अपना खर्चा कम से कम 7-8 लाख रुपया आई है।
6: हाँ जी,
7: तदों तो लेके दुबारी मतलब ये चले हो।
6: हाँ जी,
7: एक बारी फ्लड पे गई थला एक बड़ा टैंक जो इसते भी बड़ा टैंक था सर मतलब दरिया साफ हो गया।
6: अच्छा, नहीं तो ये यानी कि कच्चा है आखे वक्त की दीवारा कच्चियां दी दी है ना?
7: दीवारा कच्चियां रखना इदी वास्ते पौंदी।
6: हां जी,
7: कि मछली जे है

0: खुद फीड तैयार कर लेंदी कुछ
1: अच्छा,
0: कच्चा होता
1: अच्छा।
0: कच्चे पक्का होता दोबारी फीड टोटली फीड ही पाना पौंदी थी।
1: हाँ जी, तो इस टाइम तालाब च मछलियां हैं निश्चय?
0: इस तालाब च हांजी, इस भी हैं थले वाले की थले बनाया तालाब।
1: अच्छा,
0: ये दो तालाब ठीक ने, बाकी त्रीय तालाब रुड़ी गया है।
1: अच्छा, दरिया ही होना ना खड्डा ना?
0: दरिया जदों फ्लड पिया हद बाई 2009 मतलब 21 च ना।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: हाँ 21-22 च
1: तो बीच मछलियां रुड़ी गई होनी।
0: मछलियां मेरी कम से कम 250-300 क्विंटल रुड़ी गई थी।
1: अच्छा,
0: इस भी रेता पै गई है मछली, इसकी भी तलाई भी चली गई।
1: हाँ चलो, पानी उछली गई होना तो मछली तो निकली जाना है ना।
0: रेता भरूगी है, रेता कम से कम पानी तो भी 3 फुट आई था।
1: अच्छा, तलाई जेड़ा पानी है ये जमीन का निकलिया कि दरिया का?
0: सब कुडान पानी है।
1: अच्छा,
0: इस तलाई च ही निकले, ताई में मछली टैंक बनाए।
1: अच्छा,
0: नीचे भी मतलब टैंक मतलब जमीना च ही निकलिया।
1: हाँ जी,
0: ये भी जमीना च निकलिया।
1: हाँ जी,
0: नीचे बनाया हाँ, उस बीच भी जमीना च निकलिया।
1: अच्छा,
0: सारे पानी को डानी था सारे।
1: अच्छा, तो बीज साले साल पाते कि एक बारी पाया टैंक सही?
0: एक बारी पाएगी भी दबारी मतलब चली रहा, फिर साले साल दबारी मतलब इस तरीके ना होंगे कि दबारी बीज तैयार होंगे, फिर इस बीच सैटिंग करना पौंदी इहदी।
1: हाँ,
0: फिर जियां कि दबारी समय के मुताबिक चलो सीजन आई जाना गर्मी का अप्रैल महीने च।
1: हाँ जी,
0: तह नर मादा अलग अलग करी दी मतलब।
1: अच्छा,
0: तो
1: तिन्हां दी पहचान कियां करनी?
0: पहचान इयां करदे हां कि मछली लैनी किने तिस दे पिछे ते दबारी हां इस तरीके प्रेस कर दे, जिस खून निकला तिस बिच ए मादा, कि जिस किच मतलब सफेद पान बीरे टाइप निकलना।
1: हां,
0: छा हां नर छा लग कर देने, नी ते दबारी मतलब नर मादा इकट्ठे हों ते बच्चे खाई जांदे।
1: अच्छा, तो इस ताईं तो बड़ी जड़ी सह मेहनत करना पौंदी
0: नी? हां, जाले सेट करना पौंदा।
1: अच्छा, कि तालाब खाली करना पौंदा?
0: ना, तालाब नहीं खाली करना पौंदा,
1: थोड़ा पानी घटाना पौंदा होना ना।
0: घटाना नहीं, इक साइड जाले लाई दी होंदे ना थल्ले।
1: अच्छा,
0: थले पत्थर लगाए देने।
1: हाँ जी,
0: जाले लगाए देने।
1: हाँ जी,
0: उतने एरिए भी मतलब वही मतलब।
1: अच्छा,
0: जिस टाइम जी मतलब प्रेगनेंट हो जाती मच्छी ना, फिर चाहे मच्छी अलग करी दे ताकि तेने अंडे देने, तो दुई मच्छी जे बड़ी नर जे ऐसा है।
1: हाँ,
0: या दुई मच्छी और भी होवे।
1: हाँ,
0: मादा होवे या नर होवे खाई जाती।
1: तो कुछ लिया तो हाँ बीज जल शुरू किया है?
0: हाँ, दिवाली गुप्त गंगा आ लेंगे लिया मतलब फिशरी डिपार्टमेंट आ लेंगे।
1: अच्छा,
0: हाँ जी,
1: तो ये भी तो हाँ ट्रेनिंग ली होनी मछली पालन की है ना? कुदू ले ही है?
0: कांगड़े ले ही जी मतलब। डोबरी ली हो ट्रेनिंग की दी है।
1: अच्छा, जी मछली है जलू निकालनी है तो कितने टाइम बाद निकाल दे? की रोज ही निकाल दे? चलो मांग आई है तभी निकाल दे?
0: इन नहीं निकाल दे दिवाली मतलब, वहां ज्यादा कोशिश कर दे की दिवाली मतलब जिन्हें की मतलब डैम बंद हो उस टाइम निकालनी है, तो सारा रेट ये है ठीक मिली जाता।
1: अच्छा, बरसाती?
0: बरसाती
1: हाँ जी,
0: रेट ठीक मिली जाता।
1: हाँ जी,
0: कने बिकी जाती है।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: हाँ जी।
1: अच्छा, तो कुछ पता है कि कौन किस्म की मछली है तो हाँ भाई टैंक च?
0: हाँ मतलब जेडे पहले पाए थे दिवाली कॉक फिश पाए मतलब।
1: अच्छा,
0: कने और भी के भी महाशेर भी पाई दी, बाकी और भी रंगीन भी पाई दी।
1: इन्हें जिया कुछ दाना भी पाते?
0: दाना तो यह कच्चे तलाए से अहां तो नहीं पाए अजी तक जी मतलब सच्ची गल है क्लियर।
1: हाँ,
0: जेड़े पहले गोबर वगैरह जेड़े पाया कने चोकर वगैरह जेड़े पहली है बारी है पाई हुए।
1: हाँ जी,
0: उस टाइम ही है पाई कने तिसे बाद कच्चे तलाए से अपने आप ही मतलब फिर तैयार कर लेंगी मतलब।
1: अच्छा अच्छा, जी कितना टाइम हुआ तो हाँ जो इसे तालाब बनाए हो?
0: इन्हें हुई है चौथा साल चले।
1: चौथा साल?
0: हाँ,
1: कुछ ऐसा दसा कि तो हाँ जलू मछियां पकड़ियां था कितने जिनकी बड़ी से बड़ी मच्छी कितनी इस
0: छे किलो दी थी?
1: अच्छा, 6 किलो तक पकड़ी तो हाँ ना, देखा कहीं चलो इतनी बड़ी मछली तो हाँ पकड़ी होनी ना, तो तुहां दे चेहरे पर भी जड़ी सा रौनक आई होनी की नहीं है ना? इस से सोगी चीज तो हाँ दसिया कि बगीचा भी तो हाँ लगाया, क्या क्या लगाया बगीचे?
0: बगीचा मेरे अखरोट चले जी।
1: अच्छा,
0: जापानी फल भी चले हो?
1: हाँ जी,
0: नींबू चले हो, पलमन चले हो, आड़ू चले हो, 50-60 अमरूद भी हैं, उसके बाद 243 अनार थे।
1: अच्छा,
0: पर अनारा नाला मैं उखाड़ी ते कि अनार की संभाल सारे ते नहीं हुई। मैं सही ढंग ने कि किसी जो दिवाली फुल पाने बाद कन्नै स्प्रे जे है हर 15 दिन ते बस स्प्रे करना ही पौंदा।
1: हाँ जी,
0: जे स्प्रे ना करिए ते बरखा पेगी ते दुम्मे दिन फिर स्प्रे करना पौंदा, जे ना करिए ते कीड़ी जे है तुसी डंगी जांदी ना मतलब अंदर अनार जे है खराब हो जांदा।
1: हां, अच्छा, तकरीबन तो हां लगभग सारे फलां दे पौधे जेड़े से लगाए हुए ना?
0: हां, काफी ज्यादा तारा लगाई गया।
1: अच्छा,
0: दूसरी गल ये है कि दिवाली मतलब इतनी मैं ये प्लांट जो ऑर्गेनिक रखे मैं इस केमिकल वगैरह बिल्कुल नहीं पाता।
1: अच्छा,
0: घा वगैरह जो है मैं लेडीज लगाता इतनी दिवाली तिने घा कटाई लैंदा, जिन्हें उन्हें सब्जी लगाई हो तो घा जो ऐसा मैं हाथों में कढ़ना।
1: अच्छा,
0: ये नहीं करते कि दिवाली मतलब दवाई पाई थी पहले छली पाई छली घा हाँ हाथों ही टालना।
1: अच्छा,
0: मतलब ये नहीं करना कि दिवाली हाँ छलिए दवाई पाई थी फिर गुडाई नहीं होनी फलाना नहीं, मतलब हाँ छुट ले गई जिस टाइम ही मैं प्लाउट लिया है।
1: हाँ जी,
0: उस टाइम ते ले की गाली का दब्बर था।
1: हाँ जी,
0: हड किस्म ले थी।
1: हाँ जी,
0: फिर मैं जेसबी ने काफी कम

0: कम को 40-42 लाख रुपया खत्म के तेरी बार।
1: अच्छा
0: मिली तो सस्ता गया पर
1: हाँ जी।
0: जिस टाइम लिया था मैं कोई 28-30 हज़ार रुपया पर कनाल ले लिया है।
1: हाँ जी
0: कने उसके बाद बारिश में इसी पर मतलब साइया कनाल ही पर मतलब ज्यादा नहीं था दबाई कोई 42-43 लाख रुपया और खर्चिया
1: बराबर करनी है।
0: पहले बराबर की खड्डे पारे तिश्ती जो टोला है पत्थर इतने मैं पत्थर बेच दिता मिस्त्री लगाए बनाने आले पत्थर बनाने आले तिन्होंने खाडू बनाए की बेच दे रहे।
1: हाँ जी
0: तहन 8-10 साल खाडू भी बनाए की बेच दे रहे पत्थर भी बेच दे रहे पूरी जमीन प्लेन करी थी तो हाँ नजर मारा जमीन ने ये बन बनी हुई कहने कागजा बिच भी अब बनने रही बगीचा बनी
1: बिल्कुल। हाँ जी ता जी हम सब्जी वहाँ चलते हैं।
0: हाँ जी
1: क्या क्या लगाया इस टाइम सब्जी?
0: इस टाइम मैं बैंगन लगाई जी।
1: हाँ जी
0: टमाटर लगाए हो टमाटर करने दी मिर्चा है उसके बाद करेला था इस पहाड़ लगाया।
1: अच्छा
0: खीरा लगाया दानियां लगाइया बाकी मैं एक ऑर्गेनिक तलड़ी जब मैं निकालता दबारी पूरी है बारिश करना दबारी ये लगाई अगे देख नजर मारनी तो हाँ ये तलड़ी निकली जी जल 5-6-7-7-8-8 क्विंटल निकली जी साढ़ी 150 रुपये पर किलो बिकी जाती।
1: अच्छा
0: भी हाँ ऑर्गेनिक रखी लौंकुए बेली लगाइया ये भी ऑलरेडी ऑर्गेनिक होंगी इसी यूरिया इं भी सड़ी है तो यूरिया जो है तुआ करी जाता इसी सुखी जाता सुकाई जाता बेली जेड़ा भी कम करा ऑर्गेनिक ही करा दे बारी मतलब अहां इसी केमिकल वगैरह
1: बिल्कुल
0: वगैरह कभी नहीं करा।
1: राम सिंह जी तो जो कुदू ते प्रेरणा मिली कि ऑर्गेनिक प्राकृतिक तरीके जो सब्जी तैयार की
0: खरी गल महा विश्वविद्यालय दबारी पालमपुर भी सांझो सदे भी रेंदे अहां भी जाते रहते के बी के आले सांझो ले जाते के बड़ी हर जगह दबारी जायका आले नींदे रहे सांझो।
1: हाँ जी
0: मतलब कई जगह दबारी जल कोई मिनिस्टर का प्रोग्राम हो तभी नींदे रहे।
1: हाँ जी
0: के बड़ी दबारी मतलब जिन्हें की और कोई इतू साढ़े आल ज्यादा नहीं तो मैं साले दे 2-3 प्रोग्राम दबारी एग्रीकल्चर आले कदी जायका आले कदी एग्रीकल्चर आंदे रहते इतू अफगानिस्तान की टीम भी एक बड़ी मेरे आले इतू आई चुकी।
1: अच्छा
0: चीफ सैकटरी भी आई हो दबारी मतलब जेड़े की सारे दबारी मतलब डिपार्टमेंटा दे हुंदे दबारी शिमले बैठे एज ए सीएम ही बोलते थे नहीं।
1: हां जी
0: सब इतू आई की बैठी हो दबारी मतलब
1: बिल्कुल देखा बड़ी खुशी की गल है देखा चलो अहां दे किसान इतने बड़े स्तर पर चलो खेती करते हैं ना। अच्छा तो चलो तो जी सब्जी तो बिल्कुल प्राकृतिक तरीके तैयार करनी है
0: जी जी जी
1: जलू ये बेचनी है ता उसी रेट है के बिकी पांदी जी हां सोने की
0: पैसा नहीं मिलता पूरा सांझो जी गल ये है कि पूरा मतलब खर्चा पूरा नहीं हुंदा।
1: हां जी
0: पर हां ये दिख दे कि गल ये है कि शुद्ध खाक ने शुद्ध खिला।
1: हां जी
0: हां तो इस बीच पैसा ही जिंदगी नहीं हुंदा।
1: हां
0: सो इफ वेल्थ इज लास्ट नथिंग लास्ट इफ हेल्थ इज लास्ट समथिंग लास्ट बट इफ करेक्टर इज लास्ट एवरीथिंग लास्ट हां अपने करेक्टर जो हां इस तरीके मेंटेन रखिया कि ज्यादा नहीं अपने घर दे भी साड़ी सब्जी वगैरह जेड़े भी खांदे ते दबारी गल शुद्ध मतलब सर्दी बीमारियों से बची रहना।
1: हाँ जी
0: कहने हाँ देखते कोई और भी खांदा साले हल तत बाई से बीमारियों से बचे रहना करीब
1: बिल्कुल। हाँ जी तो तुहां दी कितनी उम्र होई है?
0: मेरे इस टाइम 71 साल चले।
1: अच्छा तो इतना भरी जी देखा ये मछली फार्म संभालना मशरूम बगीचा ये सारा ही था कल्ले काम कर देगी
0: कल्ला ही करता है बाकी समय के मुताबिक लेबर की जरूरत होती है लेबर मंगाई लैंदा।
1: अच्छा जी राम सिंह जी देखा अहां दी जिहड़ी युवा पीढ़ी है ना सा देखा नौकरी पिछे था तू घूमा कर दी ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਖਾ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਹਨ ਉਸ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੀ ਤੁਹਾਂ ਕਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ?
0: ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਤਦਵੀਰ ਤਕਦੀਰ ਜੋ ਬਦਲੀਂਦੀ
1: ਹਾਂ
0: ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾ
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਕਿ ਸੱਚੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾ
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਫਲਾਣਾ ਪਵੇ
1: ਜੀ ਜੀ
0: ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜੇ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਦੁਬਾਰੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਕਾਲੇ ਸਕਦਾ ਹਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਬਾਕੀ ਕੇ ਵੀ ਕੇ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾ ਦੇ
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰੀ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੁਬਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਦੁਬਾਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੇ ਐਸਾ ਹੈ ਅਗਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰੀ ਆਦਮੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ
1: ਜੀ। ਹਾਂਜੀ
0: ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ
1: ਜੀ
0: ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਚਾਹਤਾ ਪ੍ਰੇਮਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ
1: ਲੱਗੇ ਜੀ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਅਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਂ ਅਹਾਂ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਂ ਕਰਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
2: तो किसान साथियों अभी आपने ये जानकारी जो है वो बिल्कुल सुनी होगी और उम्मीद है कि मशरूम की खेती से जुड़ी यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। यदि आप भी खेती में कुछ नया करना चाहते हैं तो मशरूम की खेती एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। नई सोच अपनाइए, आधुनिक तकनीकों से जुड़िए और आत्मनिर्भर

0: भारत के निर्माण में अपना योगदान दीजिए।
1: Step into the world of Nexa.
2: Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
2: Presenting the bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
1: Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags.
2: And now it's yours at an effective price of just 5.79 lakh rupees.
1: Yes, rupees 5.79 lakh. Valid till 31st August.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the bold Baleno today.
1: Hurry, offer still stocks last. TNC apply.
3: Nexa.
0: तो श्रोताओं, हम अपने अन्नदाताओं का सम्मान करें, खेती को नई सोच और नई तकनीक से जोड़ें और कृषि को समृद्ध बनाने में अपना योगदान दें, क्योंकि जब खेत हरे भरे होंगे तभी हमारा देश खुशहाल और आत्मनिर्भर बनेगा। इसी के साथ अब कार्यक्रम का समय हो रहा है पूरा। कार्यक्रम को संपन्न करने से पहले आपको ये बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग हमें दिया विकास पठानिया ने, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह, और अब अपनी दोस्त अनुराधा को कार्यक्रम संपन्न करने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजा ग्रांदियां। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोबरधन को अपनी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके अंतर्गत देश के प्रचुर कृषि अवशेष, पशु गोबर, गन्ना अपशिष्ट, नगर पालिका जैविक अपशिष्ट और अन्य जैव संसाधनों को स्वच्छ ईंधन और जैविक खाद में परिवर्तित कर ग्रामीण आय और राष्ट्रीय आर्थिक मूल्य में वृद्धि का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
5: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को ऐड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
4: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बेहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4-लेन राजमार्ग के निर्माण को भी अपनी मंजूरी दे दी है। इस पर कुल 8,970 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। परियोजना से यात्रा का समय घटकर आधा हो जाएगा। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी थी। विधेयक में 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई राशि को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन के विनियोजन का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। उधर लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता को सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य

0: मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने बताया कि 19 लाख परिवारों का बिजली का बिल शून्य हो गया है। श्री जोशी ने कहा कि योजना के अंतर्गत 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए कमाए हैं। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में एथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बंबई उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई है। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख से अधिक का जुर्माना भी लगाया जो पीड़िता को दिया जाएगा। केरलम के तिरुवनंतपुरम में युवा मोर्चा ने सचिवालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला है। प्रदर्शनकारियों ने लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में शामिल होने के बावजूद पिछले 2 वर्षों से नियुक्ति पत्र न पाने वाले उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग की है। तन्वी शर्मा ने कोरिया मास्टर्स महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। प्री क्वार्टर में तन्वी ने श्रेयांशी वली शेट्टी को हराया। अश्मिता चालिया और रक्षिता रामराज भी सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. The Union Cabinet today approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees. Briefing media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Mr. Ashwani Vaishnav said the scheme will create 1.5 lakh jobs. He said Gobardhan marks a defining moment in India's clean energy journey. The scheme will establish compressed biogas as a major pillar of India's future energy mix. Mr. Vaishnav said the Cabinet Committee on Economic Affairs also approved construction of 4-lane highway from बाईहट्टा चरियाली नियर गुवाहाटी टू तेजपुर इन असम।
2: आज का दूसरा बड़ा फैसला है असम में।
3: टुडेज सेकंड मेजर डिसीजन इज रिलेटेड टू एन इम्पोर्टेंट हाईवे प्रोजेक्ट इन असम। इट इज द बाईहट्टा चरियाली तेजपुर 4-lane हाईवे स्ट्रेचिंग फ्रॉम बाईहट्टा चरियाली लोकेटेड जस्ट आउटसाइड गुवाहाटी टू तेजपुर। द हाईवे विल बी 135 किलोमीटर लॉन्ग विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 8,970 करोड़ रुपीज। इट विल ऑल्सो बी कनेक्टेड टू द ब्रह्मपुत्र टनल इन द फ्यूचर।
2: आगे जाके ब्रह्मपुत्र टनल को भी ये जोड़ेगा।
1: The Parliament has passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha had already passed the bill. When the House assembled at 2:45 p.m. after the second adjournment, Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bill for consideration and return. After completing the business, the Rajya Sabha was adjourned for the day. Early in the day, both Houses of Parliament witnessed repeated adjournments following opposition ruckus over several issues, including alleged police action during students' protest over NEET issue. In Jharkhand, the students' agitation over alleged irregularities in the Jharkhand Public Service Commission and Jharkhand Staff Selection Commission examinations entered its 13th day today. Students continue their protest at Jaipal Singh Munda Stadium in Ranchi, pressing for the demands. Meanwhile, the issue triggered uproar both inside and outside the Jharkhand Assembly on the opening day of the monsoon session. BJP and NDA legislatures staged a strong protest in the Assembly premises over the issue, demanding the resignation of the Chief Minister and a CBI inquiry into the alleged irregularities. The CID has arrested 5 more accused from Ranchi and Lucknow, taking the total number of arrests in the case to 19. In Kerala, a massive protest march was organized to the Secretariat in Thiruvananthapuram under the leadership of Yuva Morcha, demanding justice for candidates who have not received appointment orders for the past 2 years, despite being included in the PSC rank list. The march turned violent after the police blocked the protesters with barricades as they attempted to storm the Secretariat building. Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu has debunked the claims, stating that the government plans to

इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान और बागवान भाई बहनों को हमारा
7: नमस्कार।
6: किसानवाणी कार्यक्रम के इस अंक में मैं हूँ दिनेश ठाकुर।
7: और मैं शैलजा शर्मा।
6: शर्मा जी, कैसे हालचाल है?
7: जी बहुत बढ़िया है दिनेश जी, आप सुनाइए।
6: बिल्कुल बढ़िया शर्मा जी, और उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान और बागवान भाई बहन भी बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपने कृषि और बागवानी के कार्य को अच्छी तरह से कर रहे होंगे।
7: जी किसान श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, किसान वाणी कार्यक्रम के माध्यम से हम केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते रहते हैं।
6: किसान वाणी कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के मीडियम वेव से प्रत्येक मंगलवार, वीरवार, शनिवार को साय 7:10 से 7:45 तक आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किया जाएगा। उसी समय आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से भी इसे रिले किया जाएगा।
7: जी
6: तो शर्मा जी, किसान वाणी कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम काम की बातों में अपने किसान और बागवान भाई बहनों को जानकारी देंगे सेब में माइट कीट प्रबंधन के बारे में।
7: माइट एक सूक्ष्मदर्शी जीव है जो मकड़ी वर्ग से संबंध रखता है। माइट की मुख्य दो प्रजातियां जो सेब को नुकसान पहुंचाते हैं वो हैं यूरोपियन रेड माइट और टू स्पॉटेड स्पाइडर माइट। हिमाचल प्रदेश के बागीचों में रेड माइट का प्रकोप अधिक पाया गया है। यूरोपियन रेड माइट फलों का एक हानिकारक जीव है। आमतौर पर यह सेब, बेर, चेरी, नाशपाती और प्रून को हानि पहुंचाते हैं। यूरोपियन रेड माइट मुख्यतः सेब को हानि पहुंचाता है।
6: शर्मा जी, माइट के जीवन चक्र के बारे में अगर हम बात करें तो यूरोपियन रेड माइट अंडे की अवस्था में सदियां गुजारते हैं। अंडे आमतौर पर छोटी शाखाओं और टहनियों के निचले किनारे पर दिए जाते हैं और वे अक्सर दो शाखाओं और गुहा के आसपास पाए जाते हैं। अंडे से लार्वा सेब की गुलाबी कली अवस्था के दौरान निकलना शुरू होते हैं और ये प्रक्रिया एक महीने तक चलती रहती है। लार्वा कोमल पत्तियों से रस चूसता है। अपरिपक्व अवस्थाएं पत्तियों के निचले हिस्से से रस चूसती है और वयस्क दोनों सतहों पर पाए जाते हैं।
7: हालांकि माइट नई कोंपलों से रस चूसते हैं, रेड माइट की सभी अवस्थाएं और व्यसक पत्तियों से हरित पदार्थ को चूसते हैं। आरंभ में पत्तों पर छोटे छोटे हल्के धब्बे दिखाई देते हैं। जैसे जैसे नुकसान बढ़ता जाता है पत्ते फीके हरे रंग के दिखाई देते हैं। बाद में ये पत्ते अपनी चमक खो देते हैं। इसके प्रकोप से सेब में फल छोटे रह जाते हैं और गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है और फल समय से पहले झड़ने लगते हैं। जिन बागीचों में माइट का आक्रमण अधिक होता है वहाँ अगले वर्ष कम फूल आते हैं और फल कम लगते हैं और कच्चे व छोटे आकार के होते हैं।
6: बागवान भाइयों, सितंबर से अक्टूबर तक वयस्क माइट बीमे और टहनियों पर उतर आती है और गहरे लाल अंडे देकर स्वयं ही मर जाती है। सर्दियां माइट अंडे के रूप में बीमों व टहनियों के खुरदरे भागों पर चिपक कर गुजारती है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे सिंदूर छिड़का हुआ हो। यदि बीमों को लेंस की सहायता से देखें तो माइट के लाल रंग के अंडे नजर आते हैं। सेब की गुलाबी कली अवस्था आने पर इसमें से लार्वा बाहर आकर पत्तियों का रस चूसना शुरू कर देता है और यदि तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस और नमी 85% हो तो अवयस्क माइट अवस्था 14 दिनों में पूरी हो जाती है और पूरा जीवन चक्र लगभग एक महीने में पूरा हो जाता है। माइट की एक वर्ष में 5 से 8 पीढ़ियां होती है।
7: जी बात करें अगर माइट की निगरानी, लेकिन बाद में पत्ते से रस चूसती है तब इसके लक्षण पत्तों पर दिखाई देते हैं। माइट की सही संख्या जानने के लिए कई तरीके हैं। इसके लिए लेंस द्वारा प्रति ब्लॉक 10 पौधों में से प्रत्येक पौधे से 10 पत्तियों की जांच करें और माइट की संख्या गिनें। सेब के बागीचों की निगरानी प्रतिदिन करें। नियमित रूप से उस भाग की जांच करें जहां पर अंडे और लार्वा पाए जाते हैं और इन्हें तुरंत हटा दें।
6: शर्मा जी, बात करें माइट के प्रबंधन के बारे में, तो बागवान भाइयों, यदि प्रति पत्ता 5 से 8 वयस्क माइट दिखाई दे तो उस स्थिति में इसका प्रबंधन करना अनिवार्य हो जाता है। सर्दी में सेब के बागीचों का निरीक्षण करें, यदि लाल रंग की टहनियों पर दिखाई दें तो इन्हें काट छांट करके नष्ट कर दें। सेब के पौधों की हरित कली अवस्था से लेकर टाइट क्लस्टर अवस्था पर हॉर्टिकल्चर मिनरल तेलों का 4 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में छिड़काव करें। यदि माइट का आक्रमण फिर भी दिखाई दे तो पंखुड़ी, पात और अखरोट के आकार के फल विकास अवस्था में ग्रीष्मकालीन तेलों का पुनः छिड़काव करें। अगर माइट की संख्या 8 से 12 प्रति पत्ता है तो माइट नाशक जैसे प्रोप्राजाइट या हेक्सीथायोजॉक्स का 200 मिलीलीटर प्रति 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।
7: किसान भाइयों, अब बात करते हैं सेंजो स्केल की। सेंजो स्केल सेब, नाशपाती, आड़ू और प्लम में पाए जाने वाला कीट है। यह कीट फल के रस को चूसकर पौधों में जहरीला पदार्थ छोड़ते हैं। स्केल के आक्रमण से फलों पर लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और समय पर इस कीट का उपचार न किया जाए तो ये कुछ वर्षों में पूरे पौधे को सुखा देता है। बात करें इसके जीवन चक्र की, अविकसित नर और मादा कीट एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मादा पंख रहित होती है और भूरे रंग के ढाल के नीचे छुपी रहती है। नर लंबे और 2 पंख वाले होते हैं। सेंजो स्केल के अवयस्क क्रॉलर कहलाते हैं, जो उपयुक्त जगह की तलाश में कुछ समय घूमते रहते हैं। नर स्केल को व्यस्क बनने में 25 दिन और मादा को 30 दिन लगते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं

0: इसके नुकसान के लक्षण के बारे में।
1: भगवान भाइयों, ये कीट पौधे के तने, शाखाओं और फलों से रस चूसता है, जिससे बैंगनी लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, जबकि फल की सतह पर गुलाबी रंग के धब्बे नजर आते हैं। अधिक आक्रमण की स्थिति में पौधे का विकास पूरी तरह रुक जाता है, परिणाम स्वरूप पौधे का वास्तविक आकार बदल जाता है, जिस कारण पौधे मर भी सकते हैं। इस कीट द्वारा ग्रसित पौधे इस तरह दिखाई देते हैं जैसे इन पर राख गिराई गई हो। बागवान भाइयों, निगरानी की अगर हम बात करें तो फेरोमोन पौष की मदद से वयस्क नर स्केल की उड़ान की निगरानी की जा सकती है।
0: जी, बात करें इसके प्रबंधन की तो सेब के बागीचों में सेंजो स्केल की प्रभावी नियंत्रण हेतु सेब के पौधे के आधा इंच हरी कली अवस्था पर हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल का छिड़काव 4 लीटर प्रति 200 लीटर पानी की दर से करें। यदि संख्या अधिक हो तो पहले छिड़काव के 2 सप्ताह के बाद दूसरा छिड़काव किया जाना चाहिए, क्योंकि सेंजो स्केल पौधे के सभी हिस्सों पर आक्रमण करता है, इसलिए छिड़काव सभी हिस्सों पर बराबर होना चाहिए। यदि फिर भी स्केल का प्रकोप जारी रहता है तो ऑक्सीडेमेटिन मिथाइल नामक कीटनाशक का छिड़काव 200 मिलीलीटर प्रति 200 लीटर पानी की दर से करें।
1: शर्मा जी, बात करें वूली एफिड के बारे में तो वूली एफिड सेब का एक हानिकारक कीट है। वूली एफिड का जीवन चक्र और क्षति के लक्षण सेब में लगने वाले अन्य एफिड से भिन्न होते हैं। वूली एफिड आमतौर पर घाव, पेड़ की शाखाओं, कटे फटे भागों पर समूह के तौर पर पाए जाते हैं। वूली एफिड एक बैंगनी रंग का कीट है। ये कीट आकार में 1 मिलीलीटर तक लंबा होता है।
0: जी, बड़े पौधों को आमतौर पर इस कीट से थोड़ा नुकसान होता है, लेकिन युवा पौधों को बहुत ही अधिक हानि पहुंचती है। ये कीट जब पौधों पर हमला करते हैं उस समय इनका नियंत्रण बहुत मुश्किल हो जाता है। एफिड पौधे के सभी हिस्सों से रस चूसता है, फलस्वरूप फल और शाखाओं को भी प्रत्यक्ष नुकसान होता है और पौधों के स्वास्थ्य में क्रमिक गिरावट आती है। चिपचिपा सफेद रुईदार पदार्थ बगीचे के कार्य के संचालन जैसे फल उतारने और कांट छांट में हस्तक्षेप करता है। एफिड के जीवन चक्र में अविकसित क्रॉलर और 2 प्रकार के व्यस्क होते हैं, पंख वाले और दूसरे पंख रहित व्यस्क। पंख रहित व्यस्क मादा होती है और युवा पैदा करती है। एक मौसम में एफिड की 20 पीढ़ियां हो सकती हैं।
1: बागवान भाइयों, वूली एफिड में निगरानी की अगर हम बात करें तो वूली एफिड की निगरानी करते समय प्रति पौधा 5 कटे फटे अंगों की जांच करें। जीवित एफिड की मौजूदगी निर्धारित करने के लिए एफिड समूह सावधानी पूर्वक जांच करें। पर्यावरण हितेशी कीट जैसिक, लेडी वर्ड विटल और सिरफिड फ्लाई लार्वा पूरी तरह से एफिड के समूह को नष्ट कर सकते हैं। वूली एफिड का नियंत्रण उस समय करें जब 10% कटे भाग एफिड के समूह से पीड़ित हो। सेब उत्पादकों को अपने बागीचों में वूली एफिड के प्रवसन की निगरानी करते रहना चाहिए।
0: बात करते हैं इसके नुकसान के लक्षण के बारे में। कीट की अप्रौढ़ अवस्थाएं और व्यस्क छाल और भूमिगत हिस्सों से लगातार रस चूसते हैं। भारी आक्रमण की स्थिति में पत्ते पीले पड़ जाते हैं, जिन्हें आसानी से दूर से देखा जा सकता है। इस कीट के आक्रमण से जड़ों में गांठें पड़ जाती हैं और पौधे से सही मात्रा में खुराक और पानी संचार नहीं हो पाता।
1: शर्मा जी, बात करें वूली एफिड के प्रबंधन के बारे में तो फल तोड़ने के उपरांत वूली एफिड की रोकथाम के लिए पौधे के तौलिए में 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में क्लोरोफायरीफॉस कीटनाशक का घोल बनाकर सिंचाई करें। सर्दियों में एफिड ग्रसित टहनियों को कांट छांट करके नष्ट कर दें। फलदार सेब के पौधों में जून से अक्टूबर में क्लोरोफायरीफॉस 400 मिलीलीटर प्रति 200 लीटर पानी का छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि इस समय वूली एफिड को मारने वाले शत्रु कीटों की संख्या अधिक होती है। कीट द्वारा प्रकोपित पौधे के तने के आसपास निकलने वाली छोटी छोटी टहनियों को काट दें। सेब के पौधे की कांट छांट के बाद घाव पर चौबाटिया पेस्ट या ताजा गोबर या मिट्टी का लेप लगा दें। तो शर्मा जी, ये तो रही कुछ एक जानकारी सेब में माइट कीट प्रबंधन के बारे में। अब अपने किसान और बागवान भाई बहनों को हेमराज चंदेल की आवाज में सुनाएंगे एक लोकगीत।

0: तो किसान भाइयों, ये तो सुना आपने हेमराज चंदेल की आवाज में लोकगीत। अब आपको सुनवाते हैं जानकारीपूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण। विषय है सेब के बागीचों में रोग व कीट प्रबंधन। बात करेंगे डॉक्टर सुषमा भारद्वाज से। कुलदीप।
1: किसान और बागवान भाई बहनों नमस्कार। कार्यक्रम के माध्यम से हम समय समय पर आपको विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी देते रहते हैं। आज हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं सेब के बागीचों में माइट एवं अन्य कीट प्रबंधन के बारे में, और हमें अधिक जानकारी देंगी डॉक्टर सुषमा भारद्वाज। डॉक्टर सुषमा भारद्वाज का हम अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं।
2: नमस्कार।
1: तो हमारे जो बहुत से किसान और बागवान भाई बहन हैं जिन्होंने सेब के बगीचे लगा रखे हैं, तो कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि सेब के पौधों में कितने प्रकार के कीट लगते हैं जो कि सेब की फसल को हानि पहुंचाते हैं।
2: सेब में बहुत प्रकार के कीट जो है वो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, आइडेंटिफाई हो चुके हैं। भारतवर्ष में लगभग 300 प्रकार के कीट सेब के ऊपर पाए गए, लेकिन सारे कीट जो हैं वो हमारे बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते। इन 300 कीट में से कुछ कीट तो बहुत इंपॉर्टेंट होते, 10 से 12 कीट हैं जो हमें आर्थिक नुकसान भी पहुंचाते हैं। लेकिन हम उन्हीं कीटों के बारे में बात करेंगे जो हमें आर्थिक हानि पहुंचाते हैं, जिनका नंबर 7-8 के करीब ही रहता है। तो ये लगभग 7-8 ऐसे कीट हैं जो हमारे सेब के पौधों पर नुकसान पहुंचाते हैं और किसान बागवान को आर्थिक नुकसान भी इनसे हो जाता है।
1: महत्वपूर्ण कीटों की बात की, सबसे पहले तो उनके विषय में थोड़ी सी जानकारी हमारे बागवान भाई।

0: को
1: जी
0: दीजिए।
1: जी कीट बहुत प्रकार के हैं, लेकिन सब कीट जो हैं वो हानिकारक नहीं होते। कुछ हमारे कीट जो हैं वो हानिकारक कीट हैं और कुछ हमारे उपयोगी कीट भी हैं। तो दो श्रेणियों में हम कीटों को बांटते हैं। जो हानिकारक कीट हैं उसमें हमारे आ जाएंगे, जैसे आप कहते हैं माइट है, वो कीट तो नहीं, एक जीव है, पर सेब का बहुत ही महत्वपूर्ण जीव है, हानि पहुंचाता है। उसके बाद सेंजोस्केल आ जाता है, जो कि काफी पुराना कीट है, वर्षों से है, लेकिन अभी भी इसके नुकसान देखने में मिलते हैं। इसके पश्चात हम वुली एफिड अगर ले लें, वुली एफिड भी एक काफी हानिकारक कीट है। और उसके बाद कुछ हमारे बोरर्स हैं, जिन्हें हम तना छेदक भी कह सकते हैं, रूट बोरर या जड़ छेदक, ये दो बोरर हैं। तो जो जड़ छेदक है वो काफी हद तक नुकसान पहुंचाता है फार्मर्स को, तना छेदक है वो भी हानि पहुंचाता है, लेकिन उसको हम आसानी से देख पाते हैं। और इसके पश्चात हमारे पास बीटल्स हैं, भृंग बोलते हैं जिन्हें हम, डिफोलिएटिंग बीटल्स या पत्ते खाने वाले भृंग, ये भी बहुत ज्यादा हानि पहुंचाने वाले हैं, बरसात के मौसम में आते हैं। और इसके साथ साथ एक हमारे पास है जिसको हम लीफ रोलर कहते हैं, वो एक लीफ को पहले नुकसान करता है, उसके बाद वो फल पे चला जाता है।
0: कब ये आरंभ होते हैं, कैसे हमारे जो किसान और बागवान भाई बहन इन्हें पहचान कर सकते?
1: सबसे पहले माइट ले लेते हैं। माइट एक ऐसा जीव है जो मकड़ी जाति से संबंधित है, और इसकी 8 टांगे होती हैं, और जो इसका शरीर है वो बहुत ही छोटा होता है, जैसे 0.4 मिलीमीटर इसका साइज है, तो आप देख सकते हैं। और जो सेब की माइट है गहरे
0: जी
1: लाल रंग की है, और इसे बागवान देख सकता है नंगी आंखों से भी। जैसे आज का समय आ रहा है, तो कुछ ही दिनों में उसे अपने पत्तों को उल्टाकर देखना चाहिए बागवान को, उसके पीछे उसे दिखेगा कि छोटे छोटे महीन कीड़े चल रहे हैं, वो माइट भी हो सकती है। और ये माइट जो है क्या करती है, धीरे धीरे ये पत्ते के हरे रंग को खाना शुरू करती है, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं।
0: जी
1: तो क्लोरोफिल के ऊपर फीड करती है, और कुछ ही समय में अगर इसकी संख्या बढ़ जाती है तो बागवान देखेगा कि पत्ते जो है वो धीरे धीरे फीके होने लग जाते हैं, मतलब पत्तों का जो गहरा हरा रंग है वो धीरे धीरे फीके होने लगता है। और जो सबसे बड़ी पहचान है कि अगर बागवान को अपने बागीचे में पत्ते थोड़े फीके दिखाई दें और लगे कि उसमें कोई गहरा अच्छा रंग नहीं है, उसमें कोई चमक नहीं है, तो सबसे पहले बागवान को यह शक करना चाहिए कि बगीचे में कहीं माइट का प्रकोप तो नहीं हो गया है। और इसके लिए ये अपने किसी नजदीकी कार्यालय में या जो हमारे अनुसंधान केंद्र है वहां वो अपने पत्ते लाएं, और माइक्रोस्कोप के नीचे उनको देख के बता दिया जाता है कि इसके पीछे माइट है और माइट का जो प्रकोप है वो बगीचों में शुरू हो गया है। और शुरू में ऐसा होता है कि थोड़े से माइट होते हैं, जैसे मई एंड तक या जून के मध्य तक माइट काफी कम रहते हैं, 4-5 माइट पर पत्ता। तो इस समय हमें ज्यादा परेशानी की होने की जरूरत है, क्योंकि 4 से 5 माइट या 6 माइट भी हो जाती है तो कोई ऐसा नुकसान बढ़ता नहीं है। लेकिन अगर माइट की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगे, एक पत्ते पे 8 से 10 माइट दिखाई देने लग जाएं, तो फिर बागवान को थोड़ा चिंतित होना पड़ता है। ऐसे समय में वो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की भी सलाह ले सकते हैं, क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र में वो आ सकते हैं और वहां वैज्ञानिक से सलाह करें, वो उनको कोई ना कोई उसके रोकने का, रोकथाम के तरीके बताएंगे। यदि बहुत ही बढ़ जाती है माइट, जैसे जुलाई के महीने में अक्सर माइट की संख्या बढ़ने लग जाती है, क्योंकि माइट को मौसम का प्रभाव काफी प्रभावित करता है, जैसे
0: जी
1: ये जो ह्यूमिडिटी है,
0: जी
1: आर्द्रता अगर बढ़ने लग जाए और जो तापमान है वो हमारा 22-23 डिग्री और 24-25 डिग्री के आसपास रहे, तो माइट बहुत अधिक तीव्रता से बढ़ती है। और किसान को पता होना चाहिए कि अब जैसे ड्राई सीजन चल रहा है तो माइट शायद इतना ना बढ़े, लेकिन जैसे आर्द्रता 70% से ऊपर बढ़ने लगती है तो माइट का प्रकोप भी बढ़ने लग जाता है, और वो अधिकतर हमारे बरसात के मौसम में होता है। तो ऐसे समय में किसान को पहले ही थोड़ा अपने पत्तों को देखना, जांचना, मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है माइट में,
0: जी
1: मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। अगर एकदम अगर माइट की संख्या नहीं बढ़ रही है तो उसको किसी भी प्रकार के माइट नाशी का प्रयोग ना करें, लेकिन अगर संख्या बढ़ने लगती है तो फिर माइट नाशी का भी प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे उसमें हमारे जो यूनिवर्सिटी द्वारा बताए गए प्रस्तावित माइट नाशी हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, वो ओ माइट है, मैजिस्टर है, और सदना और ओबेरॉन, ये कुछ माइट नाशी हैं, अच्छे माइट नाशी हैं। लेकिन मैं इस माध्यम से यही बताना चाहूंगी कि प्रयोग तब करें अगर माइट की संख्या ज्यादा हो, अदरवाइज कोई प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब बिना कारण के प्रयोग करना भी एक बहुत ही खतरनाक और हानिकारक हो सकता है।
0: तो आपने बहुत अच्छी बात की कि कम संख्या में और आपकी फसल को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं तो आपको इन माइटनाशियों का प्रयोग बिल्कुल भी
1: नहीं
0: नहीं
1: करना है।
0: करना
1: जी
0: है।
1: जी
0: जी
1: और इसके साथ साथ किसानों को यह भी देखते रहना चाहिए कि आपकी फसल पे अगर किसी भी प्रकार के और कीड़े आ रहे हैं तो उनका भी साथ साथ निरीक्षण, क्योंकि बागीचों में मॉनिटरिंग जो पार्ट है वो बहुत ही आवश्यक है बागवानों के लिए। किसी भी प्रकार का स्प्रे किसी अपने पड़ोसी बागवान के कहने पे या उनके बगीचे में अगर समस्या है तो आपको अपने बगीचे में वो समस्या नहीं समझनी चाहिए, अक्सर ऐसा होता रहता है, लेकिन हर बगीचे का जो हिसाब किताब है वो अलग है। उसके बाद जैसे दूसरे कीड़े हैं, सेंजोस्केल है या वूली एफिड है, वो भी इस समय पे आते हैं, क्योंकि अब ये मई जून जुलाई के जो महीने हैं इसमें कीड़ों का प्रकोप आता है। बस वो मॉनिटरिंग करके अगर समस्या आती है, जैसे अब मैं सेंजोस्केल की अगर बात करती हूँ, तो सेंजोस्केल का पहले टहनियों पर प्रकोप आता है, और सेंजोस्केल भी बहुत महीन

0: कीड़ा है। सेंजो स्केल का जो रंग है वो वैसे पीला रंग होता है, लेकिन सेंजो स्केल क्या करता है, एक अपने शरीर पे कवच बना लेता है, उस कवच का रंग और छाल का रंग सेम होता है एक सा, तो बागवान को पहचानने में मुश्किल होती है क्योंकि ये भी महीन कीड़ा है। तो बागवान को ये देखना चाहिए कि इसका जब ज्यादा प्रकोप हो जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि टहनियों पे या तनों पे जैसे एक राख सी छिड़क रखी हो, और हाथ लगा के देखें अगर वो उसके हाथ में लग रही है राख, या दबा के देखें तो उसमें से पानी निकलता है, तो समझ लें कि हमारे सेंजो स्केल की समस्या आ गई है। क्योंकि बहुत सारे बागवान समझ नहीं पाते सेंजो स्केल की जो इन्फेस्टेशन है, लेकिन अगर ये सेब पे आ जाता है सेंजो स्केल तो ये सेब के ऊपर लाल धब्बे छोड़ता है।
1: सेंजो स्केल का जो आक्रमण या प्रकोप किस समय में और कब होता है?
0: जी, इसका प्रकोप ज्यादातर देखने में आएगा मई के बाद, मई के महीने में जैसे तापमान बढ़ेगा 25-26 डिग्री 30 के आसपास जब तापमान हो जाता है, इससे ज्यादा बगीचों में जाता भी नहीं है, तो उस वक्त ये मल्टीप्लाई होता है काफी अधिक मात्रा में। और इससे पहले तो ये एक सुप्त अवस्था में पड़ा होता है सर्दियों में, और अप्रैल में जैसे गुलाबी कली के आसपास इसमें से बच्चे निकलने आरंभ हो जाते हैं और वो सेब के बागीचों में फैलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ज्यादातर ये कंट्रोल हो जाता है। मैं बागवान भाइयों को यही कहना चाहती हूँ कि जब आपका सुप्त अवस्था खत्म होती है, डोरमेंसी पीरियड सेब का खत्म हो जाता है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट और आवश्यक छिड़काव है वो है हॉर्टिकल्चर मिनरल तेल का। वो छिड़काव करने से हमारा सेंजो स्केल माइट पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, और हॉर्टिकल्चर मिनरल तेल जो है ये एक बहुत ही अच्छे प्रकार के तेल हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक पार्ट है, इको फ्रेंडली है, कई वर्षों से होते आ रहे हैं सारे सेब बागीचों में, लेकिन अब जो है ये हॉर्टिकल्चर मिनरल तेल के रूप में आ रहे हैं और शुद्ध तेलों में इनको मानते हैं हम लोग, सफेद रंग के होते हैं। और इनकी जो मात्रा रहेगी वो 4 लीटर तेल एक ड्रम में 200 लीटर पानी में आपको डालनी है, और जो समय रहेगा वो टाइट क्लस्टर स्टेज से लेके पिंक बर्ड स्टेज तक इसको हमने लेना है। और एक ध्यान देने की बहुत आवश्यक चीज है कि बागवानों को अपने ड्रम, सब बागीचों में ड्रम होते हैं, उन ड्रम को नाप के रखें, 200 लीटर पानी से ज्यादा उसमें पानी नहीं होना चाहिए।
1: आपका कहने का तात्पर्य है कि जो पानी और दवाई का जो अनुपात है वो सही
0: जी
1: होना
0: सही
1: चाहिए,
0: होना
1: वो
0: चाहिए,
1: बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होना
0: नहीं
1: चाहिए।
0: होना
1: अगर
0: चाहिए,
1: अनुपात ऊपर नीचे होगा तो उतना असर उस दवाई का आपके अपने बगीचों पर
0: कम हो
1: नहीं
0: जाएगा।
1: हो पाए,
0: जी जी
1: नहीं होगा
0: जी
1: या कम होगा।
0: या कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें मतलब ना खराब हो गया तो आगे असर भी उसका कम हो जाएगा, प्रभाव ही कम हो जाएगा। तो तेल का स्प्रे जो मैं कह रही हूँ, हॉर्टिकल्चर मिनरल तेल का स्प्रे बहुत जरूरी है, और इसको हमेशा करें। कई कुछ बागवान ऑल्टरनेट ईयर पे करते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी स्प्रे है, और वैसे भी इको फ्रेंडली अप्रोच की तरफ हम जाते हैं, करते भी हैं बागवान, लेकिन मैं फिर भी ये बताना चाहती हूँ कि हर साल करें इसको, जिससे आपके माइट कि जो अंडे होते हैं उन दिनों पेड़ों पे होते हैं वो मर जाते हैं। 90% अंडे जो माइट के हैं वो तेल के स्प्रे करने से खत्म होते हैं, और जो सेंजो स्केल है वहीं सफोकेशन से मर जाता है। तो इसको हर साल करें, बाकी आप कीटनाशी वगैरह तो छोड़ भी सकते हैं, वो भी यथासमय या टाइम हो तभी करें, या जरूरत हो तो आवश्यकता पे, लेकिन
1: जी
0: तेल का आपने करना ही है। इसके बहुत सारे अच्छे असर जो है वो पेड़ों के ऊपर होते हैं।
1: जी
0: जी
1: तो डॉक्टर भारद्वाज, अगर आप वूली एफिड के बारे में कुछ और जानकारी हमारे
0: जी
1: किसान और
0: जी
1: बागवान भाई बहनों को देना चाहें।
0: हाँ जी, वूली एफिड बहुत पुराना कीड़ा है, 1920 में विदेशों से हमारे देश में एक बार आया था, लेकिन अभी तक भी ये बुरी तरह से बागवानों को प्रभावित करता रहता है, क्योंकि थोड़ी बरसातें भी कुछ सालों से बागीचों में कम हो गई है, तो उसमें ये फिर ज़्यादा पनपता है।
1: जी
0: पहले के समय में बरसातें बड़ी होती थी तो ये धुल जाता था,
1: जी
0: मतलब इसके जो बच्चे हैं वो पानी में निकल जाते थे, धुल जाते थे, लेकिन जैसे बरसातें कंपेरेटिवली काफ़ी कम हुई है पहले से, तो इसका आप सारे साल का ही मतलब ये बागवानों को सारे साल में ही तंग करता रहता है। तो इसकी पहचान तो सारे बागवान ठीक से जानते हैं, क्योंकि वूली एफिड इसके नाम से लगता है कि अपने शरीर से ये वूल निकालता रहता है, रुई के फाहे से बागीचों में दिखते रहते हैं, तो समझ आते हैं बागवान की ये वूली एफिड का प्रकोप आ गया है। लेकिन इसका जो ज़्यादा हानि है वो है कि जहाँ से ये रस चूसता है वहाँ ये गांठें बन जाती हैं, वहाँ ये जड़ों में भी होता है और तने पे भी होता है। जैसे सेंजो स्केल है वो सिर्फ तने पे होता है और टहनियों
1: जी
0: पे, लेकिन वूली एफिड तने, टहनियाँ और जड़ें, तो ज़्यादा जो ये हानिकारक है वो जड़ों पे है, क्योंकि जड़ें ऐसी चीज़ है जो हमें दिखाई नहीं देती, हमारी नज़र से बाहर है, तो वहाँ ये कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई होता रहता है और वहाँ क्या करता है, गांठें बना देता है, और सारी जड़ें जो है गांठों में ही परिवर्तित हो जाती हैं, गुच्छे बन जाते हैं, और ऐसी गांठें, ऐसी जड़ें जिनमें गांठें बन जाए वो अपना कार्य पूरे नहीं करती।
1: हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर वूली एफिड की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो आपने बात की कि ये जो सेब के पौधों की जड़ों में भी अधिक पनपता है, तो कब हमारे जो बागवान भाई बहन है कब निरीक्षण कर सकते हो, किस प्रकार से उन्हें निरीक्षण करना है अगर जड़ों का निरीक्षण वो करना चाहते हैं वूली
0: जी
1: एफिड के
0: जी
1: बारे में?
0: जी जी जैसे सर्दियों में हर बागवान तौलिये वगैरह बनाते हैं, तो उस वक्त देख लें कि जड़ों में गांठें हो तो दिखाई दे जाती हैं, तो वो समझ जाएंगे कि इसका वूली एफिड का प्रकोप है। और यही जो वूली एफिड जड़ों में है कुछ समय के बाद ये तनों पे चला जाता है, कुछ तो जड़ों में ही रहता है हमेशा, लेकिन इनके जो बच्चे होते हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं और वो चले जाएंगे ऊपर पूरे तनों में, और जो तने की वूली एफिड है अगर जड़ों में ना हो तो तने से वो कई बार नीचे चली जाती है।

0: तो दोनों वूली एफिड को हमें मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश तो करें कि फल उतारने के बाद जैसे अक्टूबर में अगर वूली एफिड ज़्यादा है तो ड्रेंचिंग कर लें, एक कीटनाशक है क्लोरपाइरीफॉस है इसकी ड्रेंचिंग कर लें, और एक एक तौलिए में दो दो तीन तीन बाल्टी अगर हम अच्छे से डालेंगे और थोड़ा पहले उसमें थोड़े छेद कर लें जगह जगह पे हल्के से, और उसके बाद हम कीटनाशक का घोल डालें तो वो नीचे तक चला जाता है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। ये दो प्रकार से हमें सहायता करेगा, जैसे रूट बोरर को भी रोकेगा जड़ छेदक को और वूली एफिड की गांठों को भी। तो ये अगर जिन जिन बागीचों में हैं तो ये प्रैक्टिस करें वो फल उतारने के बाद। और उसके बाद ऊपर की वूली एफिड तो फल उतारने के बाद ही एक ऊपर भी स्प्रे कर दें, क्लोरपाइरीफॉस का कर सकते हैं, जिसकी मात्रा होगी उसकी 200 मिलीलीटर 200 लीटर पानी में यानी कि एक ड्रम में, और ड्रेंचिंग के लिए होगा 400 मिलीलीटर आपका एक ड्रम में
1: जी।
0: तो इस प्रकार से आप इसको रोक सकते हैं
1: जी। तो इसके अलावा कुछ और कीट जिनके बारे में आप हमारे बागवान भाई बहनों को जानकारी देना चाहें?
0: जैसे रूट बोरर की समस्या अभी डे बाय डे बढ़ती जा रही है, सब बागवान कहते हैं ये रूट बोरर का बहुत प्रकोप है। ये एक भृंग है काफ़ी बड़ा और बरसातों में आता है, जैसे ही हमारी बरसात शुरू होती है तो रूट बोरर के बड़े बड़े भृंग 6-7 सेंटीमीटर लंबे भृंग होते हैं ये आने शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद ये क्या करते हैं कि जितना भी बेसिन एरिया है तौलियों में अंडे दे देते हैं, और एक एक जो मादा रूट बोरर है वो 200 से 300 अंडे देती है, और उसमें से फिर धीरे धीरे बच्चे निकलेंगे और पहले तो वो ऊपरी सतह पे अटैक करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे वो जमीन में जाके रूट के अंदर घुस जाते हैं, और एक रूट बोरर का जो जीवन चक्र है वो 2 से 3 साल तक ये आपके पेड़ों में रहेंगे अगर एक बार ये घुस गए। तो इसलिए बगीचों में साफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिन के समय रूट बोरर मिट्टी के नीचे या झाड़ियां होंगी तो झाड़ियों में छुपे रहेंगे, लेकिन रात के समय ये अटैक करते हैं, रात्रि चल रहे हैं ये। तो आपके बगीचे अगर बिल्कुल साफ हों, उसमें झाड़ियाँ ना हों, मिट्टी भी अच्छी तरह ढेले के रूप में ना हो, तो एक तो ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, लेकिन आपको डिफरेंट 3-4 तरीके एकीकृत नियंत्रण जिसको हम कहते हैं उससे इसको कंट्रोल करें। और रात के समय अगर आपके बगीचों में लाइट ज़्यादा होगी सब बरसातों में खा तो ये फिर बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये जंगल में भी होते हैं, बांध के जो पेड़ हैं उन पे भी चले जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा लाइट बरसातों में ना जलाएं, वैसे सारा साल जलाएं, क्योंकि ये आकर्षित होते हैं लाइट पे, और लाइट से फिर जहाँ आपके तौलिया है वहाँ अंडे दे देंगे, इनके जो फिर सूंडियाँ हैं वो धीरे धीरे 4 इंच तक चली जाती हैं। तो जब तौलिए बना रहे होते हैं सर्दियों में तो थोड़ा सा देखें कि अगर ये आपको सूंडियाँ मिलती हैं तो उनको निकाल के रखते जाएँ, कीटनाशक ना डालें उन सूंडियों पर, उनको बाहर निकाल के रखते जाएँ, और इनके पक्षी जो उठा लेते हैं कौवे या चिड़िया वगैरह, इवन आपके ये कुत्ता और बिल्ली इसको खाते हैं, तो कोशिश करें कि बाहर ये तसले पे रखते जाएं और ये थोड़ी देर में देखना इनको पक्षी और ये सब जो है खा लेते हैं।
1: डॉक्टर सुषमा भारद्वाज, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान और बागवान भाई बहनों को बहुत अच्छी जानकारी दी, तो ये सब जानकारी देने के लिए डॉक्टर सुषमा भारद्वाज आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान भाइयों, अभी आपने सुनी जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण, विषय था सेब के बागीचों में रोग व कीट प्रबंधन। बातचीत में भाग ले रहे थे डॉक्टर सुषमा भारद्वाज और उनके साथ बातचीत कर रहे थे कुलदीप।
3: तो किसान श्रोताओं, अब समय हो गया है किसानवाणी कार्यक्रम समाप्त करने का, अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।
4: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
5: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर।

0: experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbag as standard.
1: Hurry, limited stock available.
0: Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 7:45 होने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
4: सहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा,
5: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल,
4: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सबर रहे,
5: पंचायत सिफारिश साथ लाए, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं,
4: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में करीब 48 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं के किए लोकार्पण व शिलान्यास। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राजेंद्र राणा का आरोप, करोड़ों का कर्ज लेने के बावजूद चुनावी गारंटियां पूरी नहीं कर पाई सुक्खू सरकार। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की भेंट, हिमाचल से जुड़ी विभिन्न सड़क परियोजनाओं पर विस्तार से की चर्चा। और केंद्र व राज्य सरकार के विभागों की अंतर मीडिया प्रचार समन्वय समिति ने सरकार की योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर दिया बल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में 48 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन किए। इस अवसर पर मशोबरा में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं के आज उद्घाटन व शिलान्यास किए गए हैं, उनसे पूरे विधानसभा क्षेत्र में विकास को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को स्वच्छ व आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि इसी के तहत यहां से पंचायतों को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से ई वाहन प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में आने वाले समय में 700 पंचायतों को ये ई वाहन दिए जाएंगे और अभी महज पायलट प्रोजेक्ट के तहत 4.5 करोड़ रुपये की लागत से 133 ई वाहन पंचायतों को दिए जाएंगे।
1: हमारा लक्ष्य है कि हिमालय और पर्यावरण की रक्षा करते हुए हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और सबसे समृद्धशाली राज्य बनाए। इसी दृष्टिकोण से अभी हमने यहाँ ई व्हीकल जो पंचायतों को दी है स्वच्छता के लिए, उसका अभी शुभारंभ किया। पूरे प्रदेश में आने वाले समय में 700 पंचायत में इस ई व्हीकल का वितरण किया जाएगा। अभी महज पायलट प्रोजेक्ट के तहत 4.5 करोड़ की लागत से 133 ई व्हीकल पंचायत को दी जाएगी और जो पंचायत है वो उसका संचालन करेगी, वो उसमें ई व्हीकल के लिए अपना ही ड्राइवर रखेगी और पंचायत का जो फंड हम उनको उपलब्ध करवाएंगे उससे उसकी सैलरी भी उनको उपलब्ध करवाएगी।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज नगर निगम शिमला के ग्रीन शिमला अवर शिमला अभियान के अंतर्गत अपने सरकारी निवास ओकओवर परिसर में पौधा लगाकर सप्ताह भर चलने वाले पौधारोपण सप्ताह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों से अधिक पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने नगर निगम शिमला के पार्षदों को बान और देवदार के पौधे भी वितरित किए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान के दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री भी विभिन्न पौधारोपण कार्यक्रमों में भाग लेंगे और जन भागीदारी को बढ़ावा देंगे। इस अवसर पर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में विकास कार्य पूरी तरह ठप हैं और पूर्व भाजपा सरकार द्वारा जनहित में खोले गए करीब 2000 संस्थानों को सुक्खू सरकार ने बंद कर दिया है। आज शिमला में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने झूठी गारंटियों के सहारे सत्ता हासिल की और लोग आज उन गारंटियों के पूरा होने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रखने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के बड़े बड़े दावे और 83 लाख रुपए की नई मशीनें लगाने के बावजूद गरीब मरीजों को निजी क्लिनिकों में हजारों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। जयराम ठाकुर ने भाजपा में गुटबाजी के दावों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और संगठन ही भूमिकाएं तय करता है, जबकि कांग्रेस के अनगिनत गुट हैं।

0: प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि करोड़ों का कर्ज लेने के बावजूद सुक्खू सरकार चुनाव के समय लोगों को दी गई गारंटियां भी पूरी नहीं कर पाई। आज शिमला में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हितों की बजाय एक सिंडिकेट की तरह काम कर रही है। राजेंद्र राणा ने कहा कि वर्ष 1971 से 2022 तक विभिन्न सरकारों ने कुल 68,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, जबकि वर्तमान सरकार ने अपने 4 साल के कार्यकाल में ही लगभग 44,600 करोड़ रुपये का कर्ज ले लिया है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार की नीतियों और वादा खिलाफी से प्रदेश का हर वर्ग त्रस्त है।
1: हिमाचल प्रदेश में लोगों की चुनी हुई सरकार ना चल के बल्कि एक मित्रों की सिंडिकेट सरकार के रूप में काम कर रही है और इसने जगह जगह भ्रष्टाचार की फैक्ट्रियां खोल के रखी हैं। आज प्रदेश की जनता इस बात को पूछ रही है कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने 4.25 साल में जो 44,600 करोड़ रुपया कर्जा लिया, अगर इनकी नीयत साफ होती तो प्रदेश में सरकार बनाने से पहले जो उन्होंने गारंटियां दी थी वो गारंटियां पूरी होती, क्योंकि बहुत भरकम रकम जो है 44,600 करोड़ रुपए जो कर्जा लिया है उसे गारंटियां पूरी करते। आज प्रदेश की महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि कब उनको 1500 मिलेगा, नौजवान इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको नौकरी मिलेगी, और इसके अलावा जो 300 यूनिट बिजली की गारंटी इन्होंने दी थी कि फ्री देंगे, उल्टा इन्होंने बिजली के बिल जो है 2 से 2.5 गुना बढ़ा दिए, इसलिए आज प्रदेश की जनता त्रस्त है।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्सेंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने हिमाचल प्रदेश से जुड़ी विभिन्न सड़क परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग 305 के तहत सैंज लूहरी बंजार ऑट मार्ग पर बंजार से ऑट तक सड़क के सुधार और टायरिंग के लिए 25 करोड़ 11 लाख रुपए की राशि जारी करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से जलोड़ी सुरंग परियोजना के लिए 1,775 करोड़ रुपये की स्वीकृति की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह भी किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने मंत्रालय के अधिकारियों को स्वीकृति प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा विक्रमादित्य सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग 303 पर नगरोटा बगवां रानीताल सड़क के लिए 395 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने के आग्रह पर केंद्रीय मंत्री ने सैद्धांतिक सहमति भी प्रदान कर दी है। नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश को सड़क अवसंरचना के विकास के लिए हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। नगर व ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि जन शिकायतों का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वे आज बिलासपुर में आयोजित जिला स्तरीय जन शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। धर्माणी ने कहा कि जनता से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभाग शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। बैठक में विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों ने जिले से जुड़े जनहित के कई मुद्दे उठाए, जिन पर राजेश धर्माणी ने संबंधित विभागों को आवश्यक व समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने आज हमीरपुर जिला की जटेहड़ी पंचायत के पंतेहड़ी गांव का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने गांव को सड़क से जोड़ने संबंधी संभावना का जायजा लिया और सड़क में आने वाली वन विभाग की भूमि को लेकर सभी औपचारिकताएं पूरा करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। सुनील शर्मा बिट्टू ने गांव के लोगों की समस्याओं को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष रखने का भरोसा दिया। केंद्र व राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की अंतर मीडिया प्रचार समन्वय समिति की बैठक आज आकाशवाणी शिमला में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली, उपलब्धियों और उनके द्वारा विभिन्न योजनाओं को लेकर किए गए कार्यों की चर्चा की गई। दूरदर्शन समाचार शिमला की प्रमुख नंदनी मित्तल ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए सूचना व प्रसारण मंत्रालय और केंद्र व राज्य सरकार के विभागों की विभिन्न इकाइयों के बीच अंतर मीडिया संबंधों को मजबूत करने पर बल दिया। पीआईबी की सहायक निदेशक संजीव शर्मा ने जनता के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के मीडिया संगठनों और उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अधिक उपयोग करने पर जोर दिया। बैठक में आकाशवाणी शिमला के कार्यक्रम प्रमुख अनिल वर्मा और सहायक निदेशक समाचार रितेश कपूर सहित 50 से अधिक विभागों के अधिकारी व प्रतिनिधि मौजूद रहे। प्राथमिक शिक्षक संघ ने न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम को लेकर सरकार और शिक्षा विभाग के खिलाफ आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। आज शिमला में पत्रकार वार्ता में संघ के

0: प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा ने कहा कि 11 जुलाई से शुरू हुए आंदोलन में प्राथमिक शिक्षकों सहित कई शिक्षक संगठनों ने इस व्यवस्था का विरोध किया और इसे न्यू जुगाड़ तंत्र करार दिया है। उन्होंने कहा कि अगर 5 सितंबर तक सरकार ने न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा।
1: जो प्राथमिक शिक्षक संघ का 11 जुलाई से आंदोलन पद यात्रा के रूप में चला, 25 जुलाई को शिमला में पद यात्रा पहुंची थी और 25 जुलाई को ही हिमाचल सरकार की ओर से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सचिवालय में 25 जुलाई को बैठक हुई थी। उसी बैठक के अंदर यह निर्णय हुआ था कि एक कमेटी जो है गठित की जाएगी। जो हमारा पूर्व का आरोप रहा है कि न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं, यह एक न्यू जुगाड़ तंत्र है, वह कल की बैठक में सिद्ध हुआ। सब संगठनों ने न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम को न्यू जुगाड़ तंत्र का नाम, हमें 5 सितंबर तक का समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिया गया है। अगर 5 सितंबर तक इस विषय में सही निर्णय नहीं लिया जाता है तो आंदोलन के और स्वरूप भी आपको देखने को मिलेंगे।
0: प्रदेश के कई इलाकों में आज हल्की से मध्यम वर्षा जबकि 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा हुई है। वर्षा के कारण प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन से कई सड़क मार्ग बाधित हैं, जिन्हें बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर, शिमला, सोलन व सिरमौर जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में करीब 48 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं के किए लोकार्पण व शिलान्यास। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राजेंद्र राणा का आरोप, करोड़ों का कर्ज लेने के बावजूद चुनावी गारंटियां पूरी नहीं कर पाई सुक्खू सरकार। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की भेंट। हिमाचल से जुड़ी विभिन्न सड़क परियोजनाओं पर विस्तार से की चर्चा। और केंद्र व राज्य सरकार के विभागों की अंतर मीडिया प्रचार समन्वय समिति ने सरकार की योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर दिया बल। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले,
3: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले, सुरक्षा संरक्षण,
2: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
3: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: प्रादेशिक समाचार आप हमारे हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों से भी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं, रोजगार समाचार सुनिए। कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी कुमार सेन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार बाल विकास परियोजना कुमार सेन के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं के रिक्त पदों को भरने हेतु आंगनबाड़ी क्षेत्र की सामान्य निवासी महिला जिनका नाम दिनांक 1 जनवरी 2026 को संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र की फिजिंग यानी सर्वे सूची में दर्ज हो के उम्मीदवारों से दिनांक 22 अगस्त 2026 फीडिंग एरिया और पंचायत स्तर के आधार पर सार्वजनिक सूचना के माध्यम से पात्र आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 10,500 रुपये मानदेय दिया जाएगा और आंगनवाड़ी सहायिका को 5,800 रुपये मानदेय दिया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी सहायिका के पद के लिए केवल महिला पात्र ही प्रार्थी हैं। प्रार्थी उस गांव या संबंधित गांव की सामान्य निवासी होनी चाहिए जिस आंगनवाड़ी केंद्र में रिक्त पद भरा जाना है। यदि आंगनवाड़ी केंद्र के लाभान्वित गाँव में पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं पाया जाता तो उसी पंचायत के अंतर्गत इच्छुक पात्र उम्मीदवार अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। यदि पंचायत में भी पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, उसी पंचायत के साथ लगती पंचायत से भी इच्छुक पात्र उम्मीदवार अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, जिसकी अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी। प्रार्थी का नाम दिनांक 1 जनवरी 2026 को उस आंगनवाड़ी केंद्र के परिवारों की फिजिंग सूची में दर्ज होना चाहिए। प्रार्थी कम से कम 10+2 पास होनी चाहिए। प्रार्थी की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। प्रार्थी के परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

0: आय प्रमाण पत्र अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। साक्षात्कार हेतु 24 अगस्त 2026 को कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी कुमार सेन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, प्रातः 10 बजे उपस्थित होना अनिवार्य है। रोजगार समाचार अभी आपने सुने। हम आकाशवाणी
1: का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8 बजने को ही कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से संसद समीक्षा रैली की जाएगी।

कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में विपक्षी सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर आज भी अड़े रहे। इस कारण जिसके तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में खर्च हुई अतिरिक्त राशि के लिए संसद से मंजूरी मांगी है। इस दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन भी किया। इससे पहले पूर्वान 11 बजे सभापति सीपी राधाकृष्णन ने बैठक शुरू होने पर शून्यकाल की कार्यवाही को शुरू करना चाहा, लेकिन कांग्रेस तथा कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच कुछ सदस्य अपनी सीटों से बाहर आ गए। हालांकि सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से उनकी सीटों पर लौटने का कई बार आग्रह किया। हंगामे के बीच ही शून्यकाल के दौरान भाजपा के राघव चड्ढा ने डॉक्टरों को डायग्नोस्टिक केंद्रों द्वारा कथित तौर पर कमीशन राशि दिए जाने का मुद्दा उठाते हुए इस पर रोक लगाने और मरीजों के हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव बीडा ने सरकारी विभागों में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 27% आरक्षण का प्रावधान होने के बावजूद केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में इस वर्ग का प्रतिनिधित्व अपेक्षित स्तर तक पहुंच नहीं पाया है। भारतीय जनता पार्टी के सदानंद महालू शेठ तानवड़े ने कहा कि गोवा में वर्ष 2012 में खनन गतिविधियां बंद होने के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ ही हजारों परिवारों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने केंद्र से खनन क्षेत्र को स्थायी और पारदर्शी तरीके से पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य गृहमंत्री के बयान की मांग करते हुए लगातार हंगामा करते रहे। सभापति ने उनसे अपने स्थानों पर लौट जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के लगातार विरोध प्रदर्शन पर आपत्ति जताई। श्री रिजिजू ने यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हर दिन कुछ लिखकर लाते हैं और सदन में उसे पढ़ते हैं। इस पर कांग्रेस सदस्यों ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति देने की मांग की। जब सभापति ने श्री खड़गे को बोलने की अनुमति दी तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे दोबारा बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर फिर हंगामा शुरू कर दिया। इन सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष को बोलने की अनुमति देने की मांग की। सभापति ने कहा कि विपक्षी सदस्य शांत रहेंगे तो वो पूरक प्रश्नों के बाद नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात रखने की अनुमति देंगे। सदस्यों के शांत होने के बाद सभापति ने नेता प्रतिपक्ष खड़गे से अपनी बात रखने को कहा। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक

भी हुई। विपक्ष अपनी इस मांग पर अड़ा रहा कि गृहमंत्री अमित शाह सदन में आकर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर अपना वक्तव्य दें। श्री खरगे ने संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहा कि सदन में अपनी बात रखना उनका अधिकार है। उन्होंने कहा कि कब बोलना है, क्या बोलना है, ये तय करना उनका अपना अधिकार है और इसके बारे में उन्हें अब क्या संसदीय कार्य मंत्री से पूछना होगा। नेता प्रतिपक्ष ने आसन से कहा कि गृहमंत्री को सदन में आने और स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जाए। उन्होंने कहा कि हम चर्चा चाहते हैं। इस पर सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से गृहमंत्री को विपक्ष की भावनाओं से अवगत कराने को कहा। हंगामे के बीच सभापति ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया लेकिन शोरगुल के कारण उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। दोपहर 2:15 पर बैठक पुनः शुरू होने पर सदन में विपक्षी सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को दोहराया। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया। उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि एक महत्वपूर्ण विधेयक को पेश किया जाना है, इसलिए सदन में व्यवस्था बनाए रखें। लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण उन्होंने 1 मिनट के भीतर ही बैठक को दोपहर 2:45 तक के लिए स्थगित कर दिया। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:45 पर राज्यसभा की बैठक शुरू होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक पर चर्चा के लिए सदन में पेश किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान सदस्यों ने अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं को उठाया। तृणमूल कांग्रेस के बाबुल सुप्रियो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, बीजू जनता दल की सुलता देवी, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार झा, ऑल इंडिया अन्ना डीएम के सदस्य डॉ एम थंबी दुरई, तेलुगु देशम पार्टी के भाष्यम रामकृष्ण, भारतीय जनता पार्टी के डॉ सिकंदर कुमार, महेंद्र भट्ट, डॉ अनिल सुखदेव राव बोंडे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, डीएम डीए के सदस्य एल के सुधीश और मनोनीत सदस्य सतनाम सिंह संधू ने भी हिस्सा लिया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार ये अनुदान की अनुपूरक मांगे 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष में अतिरिक्त खर्च के लिए लाई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस अतिरिक्त बजट को लोक लेखा समिति की सिफारिश पर लाई है और पीएसी की अध्यक्षता विपक्ष के नेता के पास है। विधेयक का उद्देश्य भारत की संचित निधि से उन खर्चों के लिए धन निकालने की खातिर मंजूरी देना है जो व्यय 31 मार्च 2023 को खत्म हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ खास सेवाओं पर और उस साल के लिए मंजूर रकम से अधिक किए गए थे। वित्त मंत्री के जवाब के बाद सदन ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोकहित के विभिन्न मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद पीठासीन अधिकारी घनश्याम तिवाड़ी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। सदन की बैठक कल 11 बजे होगी। और लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारालू हक। लोकसभा ने आज कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा न हो सकी। विधेयक का उद्देश्य विश्वसनीय नीतिगत व्यवस्था और प्रक्रियागत निश्चितता उपलब्ध कराकर अधिक से अधिक विदेशी पूंजी को आकर्षित करना तथा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित कई विपक्षी दलों ने पिछले कई दिनों की तरह आज भी सदन में हंगामा जारी रखा, जिससे लोकसभा की कार्यवाही

एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही सदन में एक भी दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके हैं। सदन की कार्यवाही सवेरे 11 बजे शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने की वर्षगांठ का उल्लेख किया और फिर सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विपक्षी सदस्य सदन में हंगामा करने लगे। समाजवादी पार्टी के सदस्य जहां अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा प्रमुखता से उठा रहे थे, वहीं कांग्रेस सदस्य दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग को दोहराते हुए हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सदन को चलना चाहिए, सदन में चर्चा और संवाद होना चाहिए। अध्यक्ष ने कहा कि रोजाना नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना सदन की गरिमा को गिराता है, ये अच्छी परंपराएं नहीं है। उन्होंने कहा कि देश आपके आचरण को देख रहा है। शोर शराबा न थमने पर अध्यक्ष ने 11:03 पर बैठक अपराह्न 2 तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 2 फिर शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्य आसन के सामने आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा उसे पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रख दिया। पीठासीन अध्यक्ष संध्या रॉय ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने और कार्रवाई चलाने में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि आपका ये व्यवहार उचित नहीं है, ये सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। हंगामा न थमने पर पीठासीन अध्यक्ष ने बैठक शुक्रवार सुबह 11 तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। विपक्ष के हंगामे के कारण कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा न हो सकी। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के आरएसपी सदस्य एनके प्रेमचंद्रन के सांविधिक संकल्प को खारिज कर दिया। सदन ने के राधाकृष्णन, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और प्रेमचंद्रन सहित कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। इसके बाद ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया गया। इस विधेयक में फंड मैनेजरों के भारत आने को आसान बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जबकि विदेशी निवेश को भारत में कारोबार में लगा पैसा नहीं माना जाएगा। ये विधेयक सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से होने वाले भुगतान पर शुल्क लगाने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार देता है। इस विधेयक का उद्देश्य वर्तमान कानूनी प्रावधान को हटाना है, जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR को लागू करने से रोकता है। RTGS और NEFT के जरिए होने वाले रियल टाइम भुगतान के लिए सेवा शुल्क देना पड़ता है। हालांकि UPI लेन देन को ऐसे शुल्क से अभी छूट प्राप्त है। संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम में प्रस्तावित बदलाव कराधान से जुड़े एक बड़े कानून का हिस्सा है। कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर कम शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं तथा भुगतान अवसंरचना कंपनियों के लिए एक टिकाऊ राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है, जो डिजिटल भुगतान व्यवस्था को संचालित करती हैं। विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 10A बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पर शुल्क लगाने से रोकती है। वहीं आयकर अधिनियम की धारा 269SU के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाले बड़े व्यवसायों के लिए रुपे डेबिट कार्ड और भीम UPI QR कोड सहित कुछ निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान स्वीकार करना अनिवार्य है। वर्तमान में कोई भी बैंक या भुगतान प्रणाली प्रदाता आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269SU के निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के तरीकों का

इस्तेमाल करने के लिए किसी पर भी सीधे या परोक्ष रूप से कोई शुल्क नहीं लगा सकता। इसके बाद अध्यक्ष और सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। इन हमलों में तत्काल 1,00,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी, जबकि लाखों लोग गंभीर रूप से घायल और विकिरण के शिकार हुए थे। राष्ट्रीय स्तर पर स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन की निगरानी मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति द्वारा की जाती थी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्रवाई की समीक्षा सुन रहे थे।

0: केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9 रिले किए जाएंगे।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 144 16 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 144 16 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ। और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
3: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
2: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि परियोजना से यात्रा समय घटकर आधा हो जाएगा।
3: आज का दूसरा बड़ा फैसला है, असम में एक हाईवे पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ये है बायता चेरियाली, यानी गुवाहाटी से जस्ट बाहर निकलने के बाद में वहां से लेके तेजपुर तक। ये 4 लेन हाईवे 135 किलोमीटर का है और करीब 8,970 करोड़ रुपीज का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। आगे जाके ब्रह्मपुत्र टनल को भी ये जोड़ेगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोदी ने कहा कि ये योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। किसानों, सहकारी समितियों, लघु और मध्यम उद्यमों, महिला उद्यमियों तथा ग्रामीण उद्यमों को इसका लाभ मिलेगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023

0: इसके दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। जम्मू कश्मीर के संबंध में सदस्यों की चिंताओं पर वित्त मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि 2019 में अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान की है।
1: आर्टिकल 370 गेटिंग अब्रोगेटेड।
2: अनुच्छेद 370 का निरसन इस बात को सिद्ध करता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जिसमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जिन पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इसलिए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरा सहयोग और संरक्षण मिले, क्योंकि हम सभी एक ही देश का हिस्सा है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही में कई बार व्यवधान आया।
3: लोकसभा की कार्यवाही 2 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 3 बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के कारण लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका, जबकि राज्यसभा में इन्हें कुछ समय के लिए ही संचालित किया जा सका। हंगामे के बीच लोकसभा ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। इस विधेयक में संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 तथा वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन का प्रावधान है। उधर राज्यसभा ने चर्चा के बाद विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 को पारित कर लोकसभा को लौटा दिया। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांग की थी। यह राशि मुख्य रूप से ऋण के पुनर्भुगतान पर खर्च की जाएगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने आज फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इजराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग हैं और इन्हें एक नहीं समझना चाहिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही।
4: 19 लाख हाउसहोल्ड्स आर रिसीविंग जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल।
5: 19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है। सौर ऊर्जा संयंत्रों को लगाने से महज 9 महीनों में लगभग 3.25 गुना की वृद्धि हुई है।
4: मोर देन 3.2 टाइम्स इन जस्ट 9 मंथ्स।
0: ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हुई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस बैठक में शामिल हो रहे हैं।
6: ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें 9 देश मिलकर दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं, जो हम सब अपने अपने देशों के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से अच्छी नीतियों के साथ विश्व भर में प्रगति हो सके उसकी चिंता करते हैं।
0: 2 दिन का ब्रिक्स वेब्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। यह रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
7: सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री चंचल कुमार ने आज कहा कि ब्रिक्स वेब बाजार का उद्देश्य वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए एक ऐसा मंच बनाना है जहां परियोजनाओं, भागीदारी तथा को प्रोडक्शन के नए मार्ग उजागर हों। इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, एआई मंत्री एडवोकेट

0: शेलार ने कहा कि ब्रिक्स हुए बाजार वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के भविष्य को आकार देने के लिए प्रभावी साबित होगा। ईशारानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। झारखंड और केरलम में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में मॉनसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में झारखंड विधानसभा में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं।
2: छात्रों का आंदोलन अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सरकार की ओर से गतिरोध समाप्त करने की गंभीर कवायद शुरू की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर चार मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसके जवाब में छात्रों की तरफ से वार्ता के लिए 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की घोषणा की गई है, जो सीधे सरकार के मंत्रियों के समक्ष अपनी बातें रखेंगे। इस मुद्दे पर विपक्ष ने आज झारखंड विधानसभा के भीतर और बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के विधायकों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: उधर केरलम के तिरुवनंतपुरम में भाजपा युवा मोर्चा ने सचिवालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में शामिल होने के बावजूद पिछले 2 वर्ष से नियुक्ति पत्र न पाने वाले उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग की। बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपने कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया, जो पीड़िता को दिया जाएगा। सरकार ने आज बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने मेजबान सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र वापस लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि अभियान ने 5 सफल वर्ष पूरे कर लिए हैं और ये एक जन आंदोलन में बदल गया है। ये राष्ट्रीय एकता और गौरव की भावना को दर्शाता है। हर घर तिरंगा अभियान इस महीने की 9 से 17 तारीख तक चलाया जाएगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 374 अंक बढ़कर 78,955 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11 अंक की मामूली बढ़त लेकर 24,636 दर्ज हुआ। और अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 95.22 रुपए पर बंद हुआ।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई से मानवाधिकारों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। पिछले एक दशक में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जबरन गायब किए जाने, अत्यधिक बल प्रयोग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक और कब्जे वाले क्षेत्र में जवाबदेही की कमी पर बार बार चिंता व्यक्त की है। 27 जुलाई को पीओजेके में तथाकथित विधायी चुनावों के पहले दिन रावलकोट में हिंसक झड़प हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णामूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में तन्वी ने श्रेयांशी बलिशेट्टी को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्निचार बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिया और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, this is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves Gobardhan scheme to boost clean energy and rural economy. Also gives nod to four-lane highway project between Guwahati and Tezpur to enhance connectivity in Assam. Lok Sabha clears legislation providing tax relief measures to support economy and boost foreign investment. Prime Minister Narendra Modi and his Israeli counterpart Benjamin Netanyahu reaffirm commitment to deepen bilateral ties. India successfully test fires medium-range Agni-4 ballistic missile in Odisha. Centre rejects claims of ethanol blending in aviation turbine fuel. Student protests over recruitment exam issues intensify in Jharkhand and Kerala. And in badminton, Tanvi Sharma, Ashmita Chaliha and Rakshita Ramraj enter women's singles quarterfinals at Korea Masters. And now the news in detail. The Union Cabinet today approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees to boost clean energy and rural economy. Briefing media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the scheme will be implemented from 2026-27 to 2035-36 and establish compressed biogas as a major pillar of India's future energy mix.
5: भारत की जो नेचुरल गैस का कंजम्पशन है,
6: इंडिया करंटली इंपोर्ट्स नियरली 50% ऑफ इट्स नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट्स एंड द गवर्नमेंट इज टेकिंग कंटिन्यूअस स्टेप्स टू रिड्यूस दिस डिपेंडेंस। अंडर द स्कीम द प्रोडक्शन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस इज टारगेटेड टू इंक्रीज टेनफोल्ड ओवर द नेक्स्ट डेकेड। फ्रॉम एन एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव द इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बाय अप्रोक्सीमेटली 40 मिलियन टन्स। इकोनॉमिकली इट इज प्रोजेक्टेड टू कंट्रीब्यूट अराउंड 75,000 करोड़ रुपीज टू the national GDP and generate nearly 1.5 lakh employment opportunities across the country.
5: About 1.5 lakh jobs will be created by this program.
4: Mr. Vaishnaw said the Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved the construction of four-lane highway from Guwahati to Tezpur along the National Highway 15 in Assam.
6: Today's second major decision is related to an important highway project in Assam. It is the Baihata-Chariali-Tezpur four-lane highway, stretching from Baihata-Chariali, located just outside Guwahati, to Tezpur. The highway will be 135 kilometers long with an investment of approximately 8,970 crore rupees. It will also be connected to the Brahmaputra tunnel in the future.
4: On Cabinet's approval of Gobardhan scheme, Prime Minister Narendra Modi in a social media post said the decision is a vital step towards clean energy, rural prosperity and realizing the country's collective dream of becoming a self-reliant nation. Further, the Prime Minister highlighted the Guwahati-Tezpur corridor project in Assam will reduce travel time, improve road safety and ease congestion through major bypasses at various locations. The Parliament has passed the Appropriation No. 3 Bill 2026, with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after a discussion. The Lok Sabha had already passed the bill when the House assembled at 2:45 p.m. After the second adjournment, Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bill for consideration and return. Replying to the debate, Finance Minister Sitharaman said the government has sought approval for excess expenditure incurred during the financial year 2023. Referring to concerns raised by members regarding Jammu and Kashmir, Ms. Sitharaman assured the House that the government has extended substantial financial and administrative support to the Union Territory after the abrogation of Article 370 in 2019.
7: Article 370 getting abrogated also proves the point, since JNK is an integral part of India, inclusive of those which are occupied by Pakistan illegally. We will ensure that the people of JNK are supported and taken care of, because we are all part of one country.
4: After completing the business, the Rajya Sabha was adjourned.

0: Chaliha and Rakshita Ramraj enter women's singles quarterfinals at Korea Masters. That is all in the news at 9. Good night.
1: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं एक ही अभिनेता के क्रम में अभिनेता अरबाज खान की फिल्मों के गीत।

अरबाज खान एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में काम करते हैं। इसके अलावा तेलुगू, उर्दू और मलयालम सिनेमा में भी वे काम करते हैं।

0: Step into the world of Nexa.
1: Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
0: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
1: Presenting the bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
0: Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags.
1: And now it's yours at an effective price of just 5.79 lakh rupees.
0: Yes, rupees 5.79 lakh. Valid till 31st August.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the bold Baleno today.
0: Hurry, offer still stocks last. TNC apply.
2: Nexa.
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम में एक ही अभिनेता के क्रम में अभिनेता अरबाज खान की फिल्मों के गीत। श्रोताओं, 1996 में अपने डेब्यू के बाद से उन्होंने कई मुख्य और सहायक भूमिकाएं निभाई। उन्होंने अरबाज खान प्रोडक्शन के साथ बॉलीवुड फिल्म उद्योग में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा और 2010 में दबंग लॉन्च की, जिसमें उन्होंने अपने असली भाई सलमान खान के छोटे भाई की भूमिका निभाई। ये फिल्म सर्वकालिक सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक बन गई। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। उन्होंने सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले रियलिटी शो पावर कपल की मेज़बानी भी की और 2019 में खान ने क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ पाइजन से डिजिटल डेब्यू किया।

कार्यक्रम में अभिनेता अरबाज खान की फिल्मों के गीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9:30 हो चुके हैं और अब समय है कार्यक्रम रंगे गजल का। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में गाई ये गजल।

श्रोताओं, अभी आपने सुनी गुलाम अली की आवाज़ में गाई ये गज़ल। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं पंकज उधास की आवाज़ में गाई ये गज़ल।

0: श्रोताओं, इसी की गजल के साथ आज का रंगे गजल कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10 बजने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रिले किया जाएगा।
1: आकाशवाणी है आज के प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम के प्रथम भाग में आज प्रस्तुत है भैरवी काले का मराठी सुगम गायन। संगत कलाकार हैं हारमोनियम पर अजय हेड़ाऊ, तबले पर निखिल मड़ावी तथा वायोलिन संगत निशिकांत देशमुख। इनकी

0: This is Akashvani. In tonight's national program of regional folk and light music, we bring to you Marathi Sugam Sangeet. The artist is Bhairavi Kale. The accompanists are Ajay Hedau on harmonium, Nikhil Madavi on tabla, and violin artist is Nishikant Deshmukh.
1: Bhairavi Kale ne apne pita Vikas Kale tatha Sushri Mangal Deshmukh इनसे संगीत की शिक्षा प्राप्त की है। आप आकाशवाणी नागपुर की सुगम संगीत में ए ग्रेड प्राप्त कलाकार हैं। आपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में संगीत अलंकार तथा पीएचडी प्राप्त की है। मधुर स्वर की धनी भैरवी काले ने राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संगीत प्रतियोगिताओं में सहभाग लिया है तथा वह एक दंत चिकित्सक भी हैं।
0: Bhairavi Kale received her musical training from her father, Vikas Kale, and Miss Mangal Deshmukh. She is an A-grade artist in light music from Akashvani Nagpur. She holds the Sangeet Alankar and PhD in Hindustani classical music. Possessing a melodious voice, Bhairavi Kale has participated in various music competitions at the state and national levels. She is also a dentist by profession.
1: आज की पहली पेशकश है वसंत वैभव दहा दिशान्ना पसरे। ये शब्द है कवियत्री सरोज देशमुख के। इस गीत को संगीतबद्ध किया है अजय हेड़ाऊ ने।
0: हियर इज द फर्स्ट गीत वसंत वैभव दहा दिशान्ना पसरे, संग बाय भैरवी काले। द पोएटिस इज सरोज देशमुख एंड इज कंपोज्ड बाय अजय हेड़ाऊ।

0: इस गीत के बाद अब भैरवी काले प्रस्तुत कर रही हैं गीत धरा आणी मेघांचे हे ये जुड़ुनी नाते। रचना है सरोज देशमुख की, इसे संगीतबद्ध किया है अजय हेड़ाऊ ने।
1: भैरवी काले नावरेंडर्स द नेक्स्ट गीत धरा आणी मेघांचे हे ये जुड़ुनी नाते, पेंड बाय पोएटस सरोज देशमुख एंड इज कंपोज्ड बाय अजय हेड़ाऊ।

0: भैरवी काले की इस प्रस्तुति के बाद अब सुनते हैं सुरेश भट्ट की रचना। शब्द है माझी उदास गीते तू एक दोस कारे, और गा रही हैं भैरवी काले। संगीतकार हैं अजय हेड़ाऊ।
1: नेक्स्ट कॉम्पोजिशन माझी उदास गीते तू ऐकतोस कारे इज पेंड बाय सुरेश भट्ट, कंपोज्ड बाय अजय हेड़ाऊ एंड सिंगर इज भैरवी काले।

0: रामदास कुहिटे का लिखा ये गीत। भैरवी काले ने गाए इस गीत को, संगीतबद्ध किया है अजय हेड़ाऊ ने। इस गीत के बोल हैं, गणतंत्र भारताचा स्वातंत्र्य दीप देवो।
1: भैरवी काले कंक्लूड्स हर रिसाइटल विथ गीत गणतंत्र भारताचा स्वातंत्र्य दीप देवो। द पोएट इज रामदास कुहिटे एंड इज कंपोज्ड बाय अजय हेड़ाऊ।

0: इस गीत के साथ ही आज के प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के इस भाग का समापन होता है। कलाकार थी भैरवी काले, संगत कलाकार थे हारमोनियम पर अजय हेड़ाऊ, तबले पर निखिल मड़ावी और वायोलिन संगत निशिकांत देशमुख इनकी थी।
1: विद दिस मराठी गीत बाय भैरवी काले वी कम टू द एंड ऑफ दिस पार्ट ऑफ द नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक। द अकंपनिस्ट वेर अजय हेड़ाऊ ऑन हारमोनियम, निखिल मड़ावी ऑन तबला एंड वायोलिन आर्टिस्ट वॉज निशिकांत देशमुख।
0: यह ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी नागपुर के स्टूडियो में किया गया। आज का प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम जारी है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला भाग।
1: दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड इन द स्टूडियो ऑफ आकाशवाणी नागपुर। द प्रोग्राम कंटिन्यूज, लेट अस लिसन टू द नेक्स्ट सेगमेंट।
2: ये आकाशवाणी है, क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे सुखविंदर सिंह द्वारा पंजाबी सूफी व लोकगीत।
3: दिस इज आकाशवाणी। इन दिस पार्ट ऑफ द नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक यू विल लिसन टू पंजाबी सूफी एंड फोक सॉन्ग्स बाय सुखविंदर सिंह।
2: सुखविंदर सिंह, जिन्हें उनके मंचीय नाम दलेर अली के नाम से भी जाना जाता है, पंजाब के एक प्रतिष्ठित सूफी एवं लोक गायक हैं। संगीत के क्षेत्र में 2 दशकों के अनुभव के साथ उन्होंने पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक एवं संगीत परंपरा के संरक्षण और प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पिछले 20 वर्षों के दौरान उन्होंने अनेक कव्वाली कार्यक्रमों, सांस्कृतिक समारोहों, धार्मिक आयोजनों तथा विभिन्न प्रतिष्ठित सामाजिक एवं सांस्कृतिक मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। उनकी सूफियाना एवं लोक गायकी को देश विदेश के श्रोताओं द्वारा सराहा गया है। एक सफल कलाकार होने के साथ साथ वे एक समर्पित संगीत गुरु भी हैं। उन्होंने अनेक विद्यार्थियों को संगीत की शिक्षा प्रदान की है। वे आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं।
3: सुखविंदर सिंह, ऑल्सो नोन बाय हिज स्टेज नेम दलेर अली, इज अ रेनाउंड सूफी एंड फोक सिंगर ऑफ पंजाब। विद 2 decades ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, ही हैज मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ पंजाब्स रिच कल्चरल एंड म्यूजिकल हेरिटेज। ओवर द पास्ट 20 years, he has performed at numerous live qawwali concerts, cultural festivals and religious events, as well as on various prestigious social and cultural platforms. His Sufi and folk singing has been acclaimed by audience both in India and abroad. In addition to being a successful artist, he is also a dedicated music mentor. He has imparted musical training to numerous students, many of whom are now successfully pursuing career in their respective fields. He is an A-grade artist of Akashvani.
2: आज रात के कार्यक्रम में सुखविंदर सिंह सबसे पहले प्रस्तुत करेंगे काफी शाह हुसैन, नीमाए मेनू खेड़िया दी गल ना आख। इस काफी की प्रस्तुति का मुख्य विषय ईश्वरीय प्रेम, अटूट भक्ति और आध्यात्मिक मिलन है। हीर का खेड़ों को स्वीकार करने से इनकार करना, आत्मा द्वारा सांसारिक मोह माया को ठुकराने और अपने प्रियतम जो ईश्वर का प्रतीक है के प्रति पूरी तरह समर्पित होने का प्रतीक है।
3: The central theme of this काफी revolves around

0: सुखविंदर सिंह अब प्रस्तुत करेंगे काफी बाबा बुले शाह। मैं गल उठे दी करदा हां। ये बुले शाह की एक बेहद रहस्यमयी रचना है जो अनिश्चितता, आत्मखोज और ईश्वर के प्रति समर्पण के जरिए साधक की आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाती है। कवि एक ऐसी सच्चाई की बात करते हैं जो भौतिक दुनिया से परे है, एक ऐसा आध्यात्मिक सत्य जिसे आम भाषा में बयां करना बहुत मुश्किल है। वह ईश्वरीय प्रेम और आंतरिक जागृति के अपने अनुभव को साझा तो करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही अपनी झिझक और डर को भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि ऐसे सत्य को केवल तर्क या बुद्धि के जरिए पूरी तरह नहीं समझा जा सकता।
1: दिस वन इज अ डीप मिस्टिकल कॉम्पोजिशन बाय बाबा बुले शाह दैट एक्सप्लोर्स द सीकर्स स्पिरिचुअल जर्नी थ्रू अनसर्टेनिटी, सेल्फ डिस्कवरी एंड सरेंडर टू द डिवाइन। While the poet wishes to share his experience of divine love and inner awakening, he admits his hesitation and fear because such truths cannot be fully understood through reason.

0: सुखविंदर सिंह अब प्रस्तुत करेंगे काफी बाबा गुलाम फरीद, सोनिया रमजा तेरियां पौंदियां। बाबा गुलाम फरीद की ये सूफी रचना दिव्य प्रेम की अनोखी सुंदरता और आध्यात्मिक आकर्षण का जश्न मनाती है। असल में कवि प्रिय की मनमोहक खूबियों के बारे में बताता है। मन मोहने वाली आंखें, सुंदर बौहें, लहराते बाल, आकर्षक हाव भाव। हालांकि सूफी परंपरा में ये शारीरिक खूबियां दिव्य सुंदरता के उन रूपों की निशानी हैं, जो साधक के दिल को आध्यात्मिक जागृति की ओर खींचती हैं।
1: This is a mystical Sufi composition attributed to Baba Ghulam Farid that celebrates the irresistible beauty and spiritual attraction of the divine beloved. In the Sufi tradition, the physical attributes symbolize the manifestation of the divine that draws the seeker's heart towards spiritual awakening.

0: कार्यक्रम के अंत में सुखविंदर सिंह प्रस्तुत करेंगे एक गीत, रात अद्धी रात तो लंग गई अगा, पता नहीं यार किथे रह गया। देव हरियाणवी का ये गाना चाहत, इंतजार और जुदाई के दर्द से दिल को छू लेने वाला है। गाना एक ऐसे प्रेमी की भावुक हालत को दिखाता है जो पूरी रात अपने उस प्यारे के आने का इंतजार करता है जो कभी नहीं आता।
1: This song, lyricized by Dev Haryanvi, is a poignant expression of longing, anticipation and the pain of separation. The song captures the emotional state of a lover who spends the entire night waiting for the arrival of a beloved who never comes.

क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में आप अभी सुन रहे थे सुखविंदर सिंह द्वारा पंजाबी सूफी व लोक गीत। उनके साथ संगत कर रहे थे ढोलक पर प्रदीप कुमार, तबले पर चरण, कीबोर्ड पर पंकज, सारंगी पर सुखविंदर सिंह, बांसुरी पर गुरदीप सिंह तथा मैंडोलिन एवं गिटार पर चरणजीत ढिल्लो।

0: कार्यक्रम का ये भाग आकाशवाणी जालंधर की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू द पंजाबी सूफी एंड फोक सॉन्ग्स संग बाय सुखविंदर। ही वॉज अकम्पनीड ऑन ढोलक बाय प्रदीप कुमार, तबला चरण सरंगी सुखविंदर सिंह, कीबोर्ड पंकज, फ्लूट गुरदीप सिंह एंड मैंडोलिन एंड गिटार बाय चरणजीत ढिल्लो। दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम was a presentation by Akashwani Jalandhar.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि की 11 बजने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदकर बुनकरों और कारीगरों का समर्थन करने का आग्रह किया।
3: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, जन जन जुड़ गया। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
2: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में

0: एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चरियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे चार लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ये योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी। इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। सरकार ने बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र भारत लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल बनाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। दो दिन का ब्रिक्स वेव्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। वहीं ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हो गई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। झारखंड में विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विधानसभा में राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब और दिल्ली में संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय टैक्स सपोर्ट धोखाधड़ी और जबरन वसूली करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चलिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। The Union Cabinet today approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees to boost clean energy and rural economy. Briefing media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the scheme will be implemented from 2026-27 to 2035-36 and establish compressed biogas as a major pillar of India's future energy mix.
2: भारत की जो नेचुरल गैस का कंजम्पशन है,
3: इंडिया करंटली इंपोर्ट्स नियरली 50% ऑफ इट्स नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट्स एंड द गवर्नमेंट इज टेकिंग कंटिन्यूअस स्टेप्स टू रिड्यूस दिस डिपेंडेंस। अंडर द स्कीम द प्रोडक्शन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस इज टारगेटेड टू इंक्रीज टेनफोल्ड ओवर द नेक्स्ट डेकेड। फ्रॉम एन एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव द इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बाय अप्रोक्सीमेटली 40 मिलियन टन्स। इकोनॉमिकली इट इज प्रोजेक्टेड टू कंट्रीब्यूट अराउंड 75,000 करोड़ रुपीज टू द National